सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 51 सेकंड हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: ये समाचार।
1: समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
2: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये संसार तो वैसे भी यहाँ तो स्वार्थ से ही भरा हुआ है, और स्वार्थ लालसा लिप्सा इसकी सार, इन सब के आकर्षण में ये चक्र एक ऐसा है कि जिसमें हम सब उलझ के रह जाते हैं प्रभु। और यहाँ चाहे रिश्ता हो, कुछ भी हो, भाव हो, प्रेम हो, इसमें कहीं न कहीं स्वार्थ और लाभ प्राणी अपना देखता है। और अगर आप किसी के काम के नहीं, तो अमूमन तो यही होता है कि आप की तरफ वो उपेक्षा का भाव, उपेक्षा की दृष्टि रहती है, वो चाहे फिर आसपास का हो या अपना हो। और इस अपनेपन के भाव में अक्सर छले भी जाते हैं, जो निश्चल हृदय के लोग होते हैं वो ठगे भी जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जब सब ठुकरा देते हैं, आप किसी काम के नहीं हैं, चाहे आप कितने भी विकट स्थिति में हो, जब बहुत जरूरत हो, और ऐसे में जब संसार ठुकरा देता है, तो प्रभु एक तुम्हारे दर के अलावा भला कौन सा दूसरा ऐसा दर होगा जो सहारा देगा, शरण देगा। आप ही तो हैं करुणा भक्त वत्सल में। एक बार कोई करुण पुकार से आपको आर्तनाद से पुकारे तो थोड़े चले जाते हैं, आप ही तो आशा की किरण हैं।

आप सुन रहे थे अभी संवेद स्वरों में देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में भक्ति परक रचनाएं आपने सुनी वे गायक स्वर थे पंडित जसराज और साथी हरिओम शरण और पीनाज मसानी के। आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। चिंतन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज विवेक की सच्ची धार्मिकता से संबंधित विचार। आलेख पंडित श्री राम शर्मा का है और स्वर पूनम नामदेव का है। दृष्टि स्थान तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि उस पर बुद्धिमान मल्लाह नियुक्त हो और चलाने के लिए उपकरण डांड पतवार सभी सुनियोजित रूप से काम करें। यही बात मानव जीवन रूपी जहाज के बारे में भी लागू होती है। विवेक का मल्लाह उसका संचालक नियत रहना चाहिए। इस संसार में अनेक विचार, अनेक आदर्श, अनेक प्रलोभन और अनेक भ्रम भरे पड़े हैं। इनमें से अनुपयुक्त चीजें यदि चुन ली जाएं, तो उसका दुष्परिणाम अपने को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए विवेक पूर्वक प्रत्येक बात पर सावधानी के साथ सोचना चाहिए और जो उपयुक्त हो उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरों का अनुकरण करने की नीति उपहासास्पद है। लोग असंख्य दिशाओं में चल रहे हैं और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सफल असफल हो रहे हैं। अनुकरण किस किस का किया जाए? इसी प्रकार सीख भी अनेक तरह की मिलती है। सलाह मांगने पर इतने प्रकार के सुझाव मिल सकते हैं जिनमें परस्पर कोई तारतम्य नहीं होता। यह सलाहकार भले और विद्वान भी हो सकते हैं, फिर किसकी बातें माने किसकी ना माने इसका अंतिम निर्णय अंततः अपने को ही करना पड़ता है। इसी प्रकार अनुकरण करने के लिए भी इतने भिन्न प्रमाण मिल सकते हैं जिनका अपनाया जाना एक व्यक्ति के लिए कदापि संभव नहीं हो सकता। इस संदर्भ में भी मनुष्य का अपना विवेक ही काम करता है। अंतिम फैसला करने की जिम्मेदारी अंततः अपनी ही आती है। जीवन की सफलता के लिए यह नितांत आवश्यक है कि हम विवेकशील और दूरदर्शी बने। तुरंत के लाभ एवं क्षणिक आकर्षण की अपेक्षा चिरस्थायी और दूरगामी लाभों को महत्व देना सीखें। विवेकशीलता की यही कसौटी है। अविवेकी वे हैं जो एक क्षण के लोभ पर चिरस्थायी लाभ को नष्ट कर डालते हैं। विवेकशील व्यक्ति उचित अनुचित पर विचार करता है और अनुचित को किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं करता। भले ही बहुत लोग वैसा करते सोचते या कहते हों, पर उसके लिए यह बेकार की बातें कुछ महत्व नहीं रखती। इस संसार में सब ओर से अपने ढंग की सीख दी जाती है। हमें उन्हें सुनना तो जरूर चाहिए, पर निर्णय अपनी विवेक बुद्धि से ही करना चाहिए। उचित को अपनाने में ही हमारा कल्याण है। औचित्य का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्मवान बनने का विशुद्ध अर्थ बुद्धिमान, दूरदर्शी, विवेकशील एवं सुरुचि संपन्न बनना ही है। कोई प्रलोभन, भय या संकोच उन्हें अनुचित को, निष्कृष्ट को अपनाने के लिए विवश नहीं कर सकता। हम उत्कृष्ट को ही ग्रहण करें ताकि अन्य लक्ष्यविहीन लोगों की तरह अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जिंदगी जीने का पश्चाताप ना करना पड़े। दौलत जरूरी नहीं, शांति जरूरी है। मानव जीवन की सफलता का श्रेय जिस महानता पर निर्भर है उसे एक शब्द में धार्मिकता कह सकते हैं। जिसने इस विभूति को पाया और अपनाया उसने वह सब कुछ प्राप्त कर लिया जिसके लिए मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ था।

चिंतन बिंदु क्रम में अभी आप सुन रहे थे विवेक की सच्ची धार्मिकता से संबंधित ये विचार आलेख पंडित श्रीराम शर्मा और स्वर पूनम नामदेव का था। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम, पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाईं ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर वाणी जयराम के और संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का था।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा, मिट्टी पानी की जांच जरूरी है और जल को संरक्षण करें विषय पर डॉक्टर श्याम सिंह की वार्ता सुनिएगा। विषय रहेगा प्रमुख सब्जियों में पौध संरक्षण के उपाय। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे दीपक गोस्वामी की डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत से ली गई भेंटवार्ता। विषय होगा बदलते मौसम कृषि प्रबंधन। संध्या 6:45 पर सुनिएगा भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा क्रम में कवि राम खिलाड़ी स्वदेशी का काव्य पाठ। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी सुनिएगा शाम 7:31 पर। और श्रोताओं के ही व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12 बजे भी। रात्रि 8 बजे सुनिएगा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ख्याल गायन, प्रस्तुत करेंगे अजय चक्रवर्ती।

संध्या 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चर्चा विश्व साइकिल दिवस, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सघनता विषय पर चर्चा। प्रिया दीक्षित इसी कार्यक्रम में कहानी प्रस्तुत करेंगे, शीर्षक होगा सपने सच हुए। साथ ही फिल्म संगीत भी इसी कार्यक्रम में श्रोता सुन सकेंगे। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। बहनें कार्यक्रम सुनेंगी वनिता लोक दिन में 1:15 पर। आज इस कार्यक्रम में सुधा अरोड़ा प्रस्तुत करेंगी काव्य पाठ।

दोपहर 12:30 का समय रहेगा कार्यक्रम ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में सुंदरी और उनकी सखियां प्रस्तुत करेंगी कुछ ब्रज लोकगीत। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण समय रहेगा पूर्वाह्न 11 का। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का समय रहेगा सुबह 10 का और कार्यक्रम आबोहवा सुबह 9:25 पर प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर एल के दधीच जानकारी देंगे श्रेष्ठ पृथ्वी विषय से संबंधित। सुबह 9 आप सुनेंगे डॉक्टर रेणुका डेंग से ली गई ओपी सिंह की भेंटवार्ता और इस कार्यक्रम का विषय रहेगा पोषण और स्वास्थ्य। ब्रजमाधुरी कार्यक्रम में प्रातः 7:31

मिनट पर आज आप सुनेंगे ब्रज की माटी तोहे प्रणाम। आज इस कार्यक्रम में मदन मोहन मंदिर वृंदावन के बारे में जानकारी देंगी रश्मि शर्मा। और पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

0: कार्यों पर चर्चा करेंगे। वर्षा ऋतु में नए बगीचे लगाने हेतु रेखांकन कर गड्ढों की खुदाई का काम करें। बलुई भूमि में पौधों की बढ़वार तथा फैलाव कम रहता है, अतः पौधों की दूरी कम रखें। इसी प्रकार दोमट और उपजाऊ भूमि तथा अनुकूल जलवायु वाले स्थानों पर पौधों की दूरी किस प्रकार रखनी है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेर के लिए गड्ढों का आकार जो आप बनाएंगे वो होगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 ही मीटर गहरा, तथा लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रहेगी 6 से 8। इसके अलावा आंवला अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसमें गड्ढे जो खोदने होंगे उसका आकार रहेगा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 ही मीटर गहरा। साथ ही साथ लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे आप 8 मीटर। इसके अलावा अमरूद, अनार, नींबू, मौसमी, करौंदा और लसोड़ा के बाग भी आप लगा सकते हैं। 75 यानी 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर गहरा गड्ढा आप खोदिए। अमरूद के लिए लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 6 मीटर। इसी प्रकार अनार के लिए 5-5 मीटर के अंतराल पर आप पौधे लगा सकते हैं। नींबू के लिए लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे 6 मीटर। तो ये तो बात हुई रेखांकन की। क्षारीय व लवणीय भूमि में नींबू वर्गीय पौधे नहीं लगाने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। जिन किसान भाइयों को पपीते की खेती करनी है तो उसके लिए बता दें कि नए बगीचे लगाने हेतु नर्सरी में पौध तैयार करें। पौध तैयार करने के लिए पौधशाला की अच्छी खुदाई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। मिट्टी को 4-8-10 g दवाई से उपचारित करें। दवाई की मात्रा रहेगी 4-5 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालकर आप उपचारित कर सकते हैं। इसके बाद 1 मीटर चौड़ी तथा 8-10 मीटर लंबी उठी हुई क्यारियां बना लें। नर्सरी तैयार करने से पूर्व भूमि में सड़ी हुई गोबर की खाद लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अवश्य डालनी चाहिए। बीज को 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूर कतारों में 1-1.5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई करें। बुवाई से पूर्व बीजों को 2-3 ग्राम कैप्टन या थायराम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। एक हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 250 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। पपीते की उन्नत किस्में जैसे पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टिक, कुर्ग हनीड्यू, सीओ 2, सूर्या या पूसा डॉर्फ या पूसा नन्ना, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पपीते की पौध हाई टेक नर्सरी में तैयार करना लाभदायक होता है क्योंकि पौध जल्दी तैयार हो जाती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। किसान भाइयों, नींबू के छोटे छोटे फल आपके बगीचों में लगे होंगे। 1 सप्ताह के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई करें, अन्यथा फल फटने तथा झड़ने की समस्या आ सकती है। इस माह 5 वर्ष या अधिक आयु के पौधों में 325 ग्राम यूरिया प्रति पौधा देकर सिंचाई करें। जिन किसान भाइयों के बगीचे में अमरूद के पौधे लगे हैं वो अगर शरद ऋतु की फसल लेना चाहते हैं तो प्रति पेड़ के हिसाब से उर्वरक देना चाहिए तथा सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपके खेत में अमरूद के वृक्ष हैं और वो 1-3 वर्ष पुराने हैं तो उसमें 10-20 किलो आप गोबर की खाद डालेंगे, 50-100 ग्राम यूरिया प्रति पेड़ के हिसाब से तथा सुपर फास्फेट लगभग 0.5 किलो से 1.5 किलो तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश 200-400 ग्राम ये उर्वरक देकर उसके बाद सिंचाई करें। अगर अमरूद के वृक्ष 4-6 वर्ष पुराने हैं तो उसमें 25-40 किलोग्राम गोबर की खाद और 150-300 ग्राम यूरिया तथा 1.5 किलो से 2 किलो सुपर फास्फेट और 400-800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश आप डालकर सिंचाई कर सकते हैं।
1: आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो बस अब से कुछ ही देर में।

फिल्म जहां प्यार मिलेगा ये गीत। हसरत जयपुरी साहब की इस रचना को संगीतबद्ध किया था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आपने सुना अभी मुकेश की आवाज में फिल्म पुष्पांजलि के इस गीत को, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये अभी आप खूबसूरत सा गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश और साथियों की आवाज़ में। फिल्म थी पतंग और शब्दकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीत चित्र गुप्त का था। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की

0: विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। CBSE के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
3: आगे आने वाले

0: चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
1: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने दो दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
2: यह गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की इंटरलॉक सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर सचिवालय RRC सेंटर लैब लाइब्रेरी ऐसे बहुत से कार्य करे गए। सरकार को बहुत धन्यवाद।
1: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉ. राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
3: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों

0: भाषाओं के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

श्रोता साथियों, आप सब कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे ही होंगे। देखो, हम तो अपने राधे रानी तो यही कामना करें हैं कि हमारे सब सुनने वाले श्रोता साथी जो हैं राजी खुशी रहें, स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। और देखो, अब मौसम तो आप देख ही रहे हैं ना, कभू तो घनन घनन घनन घनन गरजत भय बदरा आवें और बरसात बरस जाए खूब जोरन दे, और कभू जो है बहुत तेज से जो है गर्मी पड़न लगे है ना। तो कभू मौसम कैसो हो जाए, कभू कैसो है जाए, कभू गर्म है जाए तो कहूँ बढ़िया सो जो है सुहावनो है जाए, है ना। जब बरसा है जाए है, बूंद पड़ जाए हैं तो नेक तरावटो आ जाए है, अच्छो लगे है। लेकिन ये जो आँख में चोली को जो मौसम है, तो पल पल में जो या को रंग बदले हुए, तो या मैं देखो शरीर जो है हम लोगों को वो मिजाज ना या को समझ पावे है कि भैया कैसे हम अपने आप को कौन से मौसम में ढालें, है ना। तो मतलब जो है कहवे को कि भाई देखो, हमें अपने स्वास्थ्य को जैसे पल पल मौसम बदले है, ऐसे ही हमें अपने स्वास्थ्य को हर पल जो है ध्यान रखना है, है ना। खाए बेचते पी बेचते और अपने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है व्यायाम कर ले जाए तो बहुत ही बढ़िया रहे, है ना। तो शरीर जो है जब स्वस्थ रहे, अगर तेज़ गर्मी है तो ज़रूरी ना आने कि बहुत ज़्यादा आप व्यायाम करें, लेकिन अगर ठीक ठाक मौसम है, बढ़िया है, तो अपने शरीर के ताई जो थोड़ी बहुत हलचल जरूर रखें। और देखो, हाँ, एक बात साथी हम हमें याद आ गई है कि आज है विश्व साइकिल दिवस। तो देखो, वैसे तो देखो साइकिल तो बहुत बढ़िया है ना। अगर देखी जाए तो साइकिल से अपने जो है पर्यावरण प्रदूषण जो है ये दूर रहे हैं, पर्यावरण बढ़िया रहे हैं, क्योंकि धुआं ना उठे पेट्रोल को, है ना। और एक संग जो है जब

गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल उठे है या ये धुआं उठे है, तो फिर पर्यावरण तो देखो प्रभावित तो जरूर होवे है, क्योंकि वो जो धुआं है वो पूरे वातावरण में जब फैल जाए है तो वाको जो है जहरीलोपन कहूँ न कहूँ हम सबन की श्वास के जरिए शरीर में आ जाए है, तो शरीर अस्वस्थ हो जाए जब प्रकृति अस्वस्थ है। तो साइकिल जो है ऐसे बढ़िया, देखो व्यायाम को व्यायाम है ना, अपने साइकिल जो है शरीर को स्वस्थ रखे, दुरुस्त रखे, हलचल रहे पैरन में, और वैसे वो अपने हाथन को, और यहाँ से बढ़िया तो कोई बातें ना नहीं कि काम को काम और अपना शरीर को शरीर बढ़िया स्वस्थ रहे। तो ऐसी एक बात तो है कि पर्यावरण जो स्वस्थ रहे तो यहाँ में साइकिल की भूमिका बहुत बढ़िया रहे है, और यहाँ में देखो हम सब उनकी जागरूकता की आवश्यकता है। तो बहरहाल अगर जैसे ही आप लोग उनको समय मिले अवसर मिले तो साइकिल तो अपने जीवन को हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत चलावें पर चलावें जरूर, हलचल रहे, शरीर स्वस्थ रहे, बढ़िया हड्डी सही रहे है ना, इनकी सक्रियता बनी रहे। अब वैसे जब हड्डी नाएँ सक्रिय होंगी, शरीर की नस नाएँ सक्रिय होंगी तो देखो जोड़ में अकड़न में सब में दर्द ही दर्द और तरह की बीमारी। तो अगर बचनो है स्वस्थ रहनो है तो अपने खान पान के संग अपनी थोड़ी बहुत जो है साइकिल पर जो ध्यान रखें। और भले ही हालांकि बात अटपटी लग रही होगी कि आजकल देखो कहाँ मतलब जब जवानों जो है गाड़ियों को है दोपहिया वाहन चौपहिया वाहन वगैरह वगैरह, तो लेकिन साइकिल को देखो कहे ना कि रहीमन देख बड़ेन को और लघु न दीजिए डार, और जहाँ काम आवे सोई तो कहाँ करे तरवार। तो देखो अपने जो है हर चीज़ को अपना महत्व होवे है, हम जो ना कहें कि सर मोटर गाड़ी को महत्व ना इन्हें, कबो कहूँ बहुत जल्दी होवे तो वहाँ इनकी भी जरूरत पड़े है। तो जब जहाँ जैसी जा की जरूरत होए हमें अपने जीवन में वाकई वातरियातें प्रयोग करना चाहिए और संतुलन बना के रखना चाहिए। बहरहाल अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, और ब्रज की माटी तो ही प्रणाम में आज आओ जानकारी ने रश्मि शर्मा थे मदन मोहन मंदिर वृंदावन के बारे में।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन को क्षेत्र महाभारत जैसे महाकाव्यन में भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में अंकित है। इन स्थानन पर भगवान के बचपन से लेकर अब तक के अनगिनत चमत्कार भये हैं, जिन्हें देख के दैत्य और दानव हमेशा के काजल विस्मित है गए। जबकि वृंदावन को वन क्षेत्र कछु वर्ग किलोमीटर तक सिमट के रह गयो, लेकिन यह स्थान पे आध्यात्मिक वातावरण और धार्मिक आस्था से जुड़े भये लोग अबऊ हैं, क्योंकि यह वृंदावन धाम में असंख्य मंदिर हैं, जो सभी भक्तन को अपनी ओर खींच ले हैं। वृंदावन मंदिरन को शहर है और यहाँ हर कोने में भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर हैं। और यही संदर्भ में आज हम आपको जानकारी देने जा रही हैं मदन मोहन मंदिर के संदर्भ में।

मदन मोहन मंदिर वृंदावन के सबसे प्राचीन मंदिरन में से एक है और वृंदावन के सप्त देवालयन में से भी ये सबसे प्राचीन है। औरंगजेब के शासन काल के दौरान यहाँ के जो भक्तजन है बिन्हने भगवान कृष्ण की मूल मूर्ति को राजस्थान के करौली में निर्वासित कर दियो। मान्यता ये है कि मदन मोहन जी को जन्म यमुना जी ते भयो। सुबह के समय मथुरा की एक चौबे की पत्नी यमुना में स्नान करवे जायो करती। एक दिना चौबे की पत्नी को मदन मोहन पानी में खेलते भय मिले। बिनने कई आवाज लगाई लेकिन बिन की आवाज सुन के कोई नहीं आयो। तब चौबे की पत्नी मदन मोहन को अपनी गोद में लेके अपने घर ले आई। मदन मोहन ने चौबे की पत्नी से वचन लियो कि मैं तुम्हारे संग तो जा रहे हूँ लेकिन जा दिन तुमने मुए घर से निकलवे की कही वही दिन मैं घर से चलो जाऊंगो। बड़े हुए के मदन मोहन ने मथुरा के लोगन को परेशान करना शुरू कर दियो। कबऊ काऊ को माखन चुराए लाते तो कबऊ काई की मिश्री चुराए लाते। मदन मोहन के या कृत्य को देख के मथुरा के लोग परेशान है गए और मदन मोहन की शिकायत चौबे जी की पत्नी से कर दीनी। शिकायत के बाद वह बहुत तेज गुस्सा भई और मदन मोहन को डांट के बोली कि तुम यहाँ से चले जाओ। वह समय सनातन गोस्वामी वहाँ से गुजर रहे तो मदन मोहन ने सनातन गोस्वामी को रोक के कही कि बाबा मुझे आपके संग चलना है। या के बाद में वे सनातन गोस्वामी के संग चले गए। रास्ते में सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन से वचन लिए जैसो मैं खवाऊंगो वैसो खाओगे, जैसो मैं रखूंगो वैसे रहोगे। तो मदन मोहन ने वचन देते भाई कही कि आप जैसो खवाओगे मैं वैसो खाऊंगो, जैसो रखोगे मैं वैसो रहूंगो। इतना कह के सनातन गोस्वामी मदन मोहन को अपने संग वृंदावन लिवाए लाए। वृंदावन के टीले में वह रहने लगे। वृंदावन से वह आटा मांग के लाते और वह आटे में यमुना जल में गूंथ के वह की बाटी बनाते। सनातन गोस्वामी पहले मदन मोहन को भोग लगाते और वह के बाद में खुद खाते। काफी लंबे समय तक ऐसो ही चलतो रहो। एक दिन मदन मोहन ने कही कि मैं अरोनी बाटी नहीं खाऊंगो तो सनातन ने मदन मोहन से कही मैंने तो आपसे वचन लियो मैं जैसो आपको खवाऊंगो वैसो ही आप खाएंगे और जैसे ध्यान रखूंगो वैसे ही आप रहेंगे। तब बालक ने कही कि यदि मैं भोग की व्यवस्था कर लूं तो कैसो रहे। तभी की घटना है कि पंजाब के रहवे वाले एक व्यापारी रामदास जो कि सेंधो नमक और फल को व्यापार करते वे दिल्ली से आगरा तक अपना व्यापार करते। कछु दिना बाद जब वह दिल्ली से चल के आगरा के लइयां जा रहे तो बिन की नाव बिन को जहाज फल और सेंधे नमक के भरो भयो हो। जैसे ही उनको जहाज वृंदावन पहुंचो तो उनको जहाज एक टीले पे अटक गयो और कई घंटा के बाद वह वहां से नहीं निकल पायो। व्यापारी रामदास ने टीले पे थे बच्चा की आवाज सुनी तो व्यापारी जहाज से उतर के व बालक के पास गए। वहाँ सनातन गोस्वामी बैठे भये और बालक यमुना में खेल रहे हो। सनातन गोस्वामी ने व्यापारी रामदास से अपने संग भई घटना के विषय में बतायो तो सनातन गोस्वामी ने कही कि आपकी जो समस्या है वह को निदान यमुना के तीर में खेल रहे हो यह बालक कर सके है। आप वा के पास जाओ और बातें बात करो। व्यापारी रामदास मदन मोहन के पास गए और उनसे अपनी सब घटना के विषय में बतायो। मदन मोहन ने कही कि तुम्हारे जहाज में कहा भरो हुआ है तो बिनने बताई कि मेरे जहाज में सेंधो नमक और फल भरे हुए हैं। मदन मोहन ने कही कि तुम्हारो जहाज तो निकल जाएगो लेकिन बाकी बदले में मुए कहाँ मिलेगो। व्यापारी ने मदन मोहन से कही कि मेरे जहाज में सेंधो नमक और फल भरो भयो हो जो कि पानी से खड़ा

0: अभय चुप है, मैं आपको क्या दूंगो। व्यापारी ने मदन मोहन से कही कि आप अपने जहाज के पास जाओ, आपको जहाज ठीक है और सामान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचो है। व्यापारी जब अपने जहाज के पास गयो तो देखो कि जहाज में सेंधो नमक और फल की जगह हीरा जवाहरात पन्ना सोना चांदी भरे गए हैं। यह देख के व्यापारी रामदास लौट के वह बालक के पास गए और विनती कही, प्रभु आप जैसो आदेश करें मैं वैसो करूंगो। बतायो जाए है कि या के बाद वह व्यापारी ने भगवान मदन मोहन को मंदिर बनवायो। व्यापारी द्वारा बनवायो गयो मंदिर आज विश्व में अपनी ख्याति बिखेर रहे है। यह मंदिर के निर्माण से पहले मदनेश्वर महादेव मंदिर, सूर्य मंदिर, सूर्य घाट, शीतला माता मंदिर और बिनके संग चार कुटिया भी वह व्यापारी ने बनवाई हती। आपको यह मंदिर में आए के पौराणिक युग की झलक दिखलाई देगी। मंदिर की शांति और चारों ओर बहते हुए शांत मंत्र आपको पूरी तरह से भाव विभोर होए को मजबूर कर देंगे। हर मंदिर आध्यात्मिकता और भक्ति से भरपूर है, लेकिन वृंदावन को राधा मदन मोहन मंदिर सभी मंदिरन को सार समेटे भय है और आपको यहाँ आवे की लिया प्रेरित करे है। मंदिर की हर इंच पे की गई जो जटिल नक्काशी है वो सभी आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर दे है। उनमें से प्रत्येक को हाथ से तराशो गयो है जो आपको यह और अधिक निहारने और प्रशंसा करने के काजे मजबूर कर देगो। नागर शैली में मंदिर में आम तौर पर पक्की चार दीवारी या संरचनात्मक प्रवेश द्वार नाए हुए हैं, वे सभी ओर से खुले भये हुए हैं।
1: ये जो है ये इस मंदिर का प्रवेश द्वार था किसी समय। प्रवेश द्वार की एक विशेषता, आप लोग, ये मंदिर वृंदावन का सबसे प्रथम मंदिर है और इस द्वार को जो आप अभी देखेंगे, इस द्वार में आप देख सकते हैं ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं ट्रू आर्च। भारतीय जो कला और संस्कृति है उसमें ट्रू आर्च और ट्रू ड्रोम बहुत बाद में है, लेकिन आप देख सकते हैं हमारा सनातन धर्म क्या है। हमारा सनातन धर्म इस ट्रू आर्च देख सकते हैं आप, जो बाद में मुगल एम्परर जो शाहजहां अकबर इन्होंने भी बाद में अपनाया था। छः प्रमुख गोस्वामी हुए हैं, उसमें से एक थे सनातन गोस्वामी जी महाराज। तो सनातन गोस्वामी जी महाराज जो थे ये 24 में से 22 घंटे भजन करते थे, 22 घंटे। और इनका नियम था कि एक बार मात्र, क्योंकि उस टाइम वृंदावन में कोई गृहस्थ नहीं था, केवल संत रहते थे। तो सनातन गोस्वामी जी भिक्षावृत्ति के लिए मथुरा जाते थे और मथुरा जाकर के भिक्षावृत्ति करके और उसको भी ला करके जमुना जी के जल में धोके और मिट्टी में गाड़ दिया करते थे। बाद में जब भी उनको भूख लगती है तो ठाकुर जी को भोग लगा के और वो पाते थे। तो ऐसा सनातन गोस्वामी जी एक बार वो जब मथुरा में जब अपने भिक्षावृत्ति के लिए गए तो एक के घर में उनको मदन मोहन जी के दर्शन हुए। तो उन्होंने कहा, मैया ये बोले ये हमारे ठाकुर जी, उन्होंने कहा ये हमको दे दे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बाबा। तो स्वप्न में उस मैया को दर्शन दिए कि इस बाबा को हमको दे दे। तो वो मैया ने मदन मोहन जी बाबा को दे दिए सनातन गोस्वामी जी को। वो लेकर के जब वो आए तो भगवान के बड़े ठाट थे, भगवान को अच्छे एक से एक तरह के व्यंजन चाहिए और बाबा तो केवल रोटी को धोकर के और पा लेते। तो वो उनने बोला कि अरे बाबा रोटी बना, भोग लगा। तो उन्होंने रोटी बनाई उनके लिए और फिर इसमें तो नमक डाल, तो नमक भी दिया। फिर क्या थोड़ा और मीठा और चाहिए। तो उनने क्या किया यार, सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी को बोला कि देखो भैया हम तो साधु हैं, हमारी जैसी टूटी फूटी सेवा है आप स्वीकार करो, क्योंकि अगर मैं ये सब आपकी व्यवस्था करूँगा भोजन की और ये सब नमक की और मीठे की तो मैं भजन कब करूँगा, और भजन के लिए तो ये शरीर मैंने दिया है पूरा, ये संन्यास धर्म को ग्रहण करा है, तो मैं भजन कब करूँगा। तो फिर उन्हीं की भगवान बहुत प्रसन्न हुए और हंसे, बोले बाबा इसलिए तो मैं देखो बहुत प्रिय हूँ। प्रत्यक्ष ठाकुर जी उनको दर्शन देते थे और उनके साथ लीलाएँ करते थे, जैसे हम लोग जनमानस में अपने किसी बच्चे को या छोटे बच्चे को खिलाते हैं, उस तरीके से वो भगवान को खिलाया करते थे सनातन गोस्वामी जी महाराज ठाकुर जी को। तो ये इसकी महिमा है। और इस मंदिर के विषय की अगर बात करें तो एक समय जमुना जी पास से ही बहती थी, अभी भी पास ही है लेकिन उस समय बहुत पास से बहती थी। तो जो ठाकुर जी हैं वो बोले कि बाबा आप बोलो तो हम हमारी व्यवस्था स्वयं कर लें भोजन पानी की। तो उन्होंने बोला ठीक है कर लो। तो एक भगत था लाहौर का, वो नमक लेकर के आ रहा था आगरा, उस समय बहुत बड़ी मंडी थी। तो वो नमक का व्यापारी जो है वो आगरा जा रहा था अपने नमक को लेकर, तो रेती में उसकी जो जहाज था वो फंस गया। तो जब फंसा तो उन्होंने बड़ा व्यथित हुआ कि अब कैसे पहुँचूंगा मैं। तो उस समय उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, एक बताया उनको छोटे बच्चे ने कि एक काम करो, यहाँ इस पे टीले पे, आदित्य टीले पे बाबा भजन करते हैं, यदि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो तुम्हारा ये रथ निकल जाएगा और तुम पहुँच जाओगे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आए। तो उन्होंने कहा जिस ही सनातन गोस्वामी जी के पास आए, सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि ये कृष्ण ने भेजे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, बोला कि फिर उन्होंने उसका जो काम हुआ और उसने फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि उसका जो उसका जहाज था जिसमें नमक भरा हुआ था, वो दर्शन करने के बाद जब वापस गया तो वो कपूर में बदल गया, और कपूर का भाव नमक से कई गुना अधिक होता है। तो इसीलिए ये मंदिर देख सकते हैं आप, ये प्राचीन जो लाल पत्थर से बना हुआ है, वृंदावन का प्रथम मंदिर है ये।
0: मंदिर में साल भर में कई त्योहार आए।

0: समझ गए कि ये कृष्ण नहीं भेजे, तो उन्होंने बोला अच्छा, बोला कि फिर उन्होंने उसका जो काम हुआ और उसने फिर ये मंदिर का निर्माण करवाया था लाहौर। और एक और आश्चर्य की बात यह है कि उसका जो उसका जहाज था जिसमें नमक भरा हुआ था, वो दर्शन करने के बाद जब वापस गया तो वो कपूर में बदल गया, और कपूर का भाव नमक से कई गुना अधिक होता है। तो इसीलिए ये मंदिर देख सकते हैं आप, ये प्राचीन जो लाल पत्थर से बना हुआ है, वृंदावन का प्रथम मंदिर है ये।
1: मंदिर में साल भर में कई त्योहार आयोजित किए जाए हैं, जिनमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आमे हैं। कार्तिक माह में शरद पूर्णिमा, गोवर्धन पूजा, शील प्रभुपाद तिरुभाव, गोपाष्टमी, देवोत्थान एकादशी, श्री राधा रानी चरण दर्शन, कार्तिक महाराज पूर्णिमा, वंजुली महाद्वादशी, शील जीव स्वामी तिरुभाव महोत्सव, श्री राधा दामोदर प्राकट्य उत्सव, बिनमते कछु हैं। 50 फीट की ऊंचाई पे स्थित मदन मोहन मंदिर की खूबसूरती देखते ही बने हैं। मंदिर में भजन कुटीर और सनातन गोस्वामी की समाधि स्थल भी हैं।
2: सनातन गोस्वामी ये जो स्थान को भजन करता है, ये है दादो साधिष्ट टीला। ये टीला पर सनातन गोस्वामी बैठ को कुटिया बान को भजन करता है। तो बालक रूम में दर्शन दिया है 5 बत्सर को बालक, तो 6 साल में भजता है बालक रूम में। तो देखा है ये टीला पर धूम उठता है, तो धूम अनुसरण करने को आया है। देखा है एक बाबा अंगा बाटी बनाता है, तो बाबा को बोला है बाबा हम तो जहाज छोड़ेगा नहीं, तो कुछ व्यवस्था करो। तो बाबा बोला है हम क्या व्यवस्था करेगा, बोल बाबा हम तो बाबा लोग हैं, तो जहाज में देखो किया रहेगा बाबा। बोले नेमक है फल है। तो बाबा बुझता है ये मदन मोहन को खेला है। तो बोलो वो यमुना किनार के जाओ, देखो एक बालक खेला करता है, तो बालक को पूछो, वो बालक जो व्यवस्था करेगा। विराजमान है राधा मदन मोहन, राधा जी और ललिता सखी और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। और बनाया था रामदास कपूर जो व्यवसायी और बनिक है, वो बनिक बनाता है। अच्छा। तो ये है वृंदावन से सबसे पहले ये मंदिर। वृंदावन परित्यज्यं शरणं मामेकं भज, हम वृंदावन छोड़कर कोई नहीं जाएगी।
1: मदन मोहन मंदिर को चटोरे मदन मोहन मंदिर के नाम से जाना जाए है, या मंदिर को चटोरे के नाम से याद या जानो जाए है, क्योंकि मदन मोहन हर दिन नई नई व्यंजन खाएवे के काजे लालायित रहवे है, और हर दिन सनातन गोस्वामी ते कछु नयो बनाने के काजे कहवे है। यही कारण बिनको नाम चटोरे मदन मोहन पड़ गयो। बतायो जाए है कि बालक मदन मोहन ने अपनो अभिषेक करवे के काजे जैसे ही कही, और जैसे ही बालक को अभिषेक भयो तो वह प्रस्तर में बदल गयो। मानो जाए है कि मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हते। मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर में और मंदिरन में मंगला आरती हर दिन हुई है, लेकिन मदन मोहन मंदिर में मंगला आरती केवल कार्तिक के महीना में हुई है, जो कि अक्टूबर और नवंबर के बीच आए रहे है। यहाँ आए के आसपास की शांति के बीच आपको या मंदिर में आए के पौराणिक युग की झलक दिखलाई देगी। मंदिर की शांति और चारों ओर बहते हुए शांत मंत्र आपको पूरी तरह से भाव विभोर होए को मजबूर कर देंगे। हर मंदिर आध्यात्मिकता और भक्ति से भरपूर है, लेकिन वृंदावन को राधा मदन मोहन मंदिर सभी मंदिरन को सार समेटे भय है, और आपको यहाँ आवे के लिए प्रेरित करे है।

तो श्रोता साथियों, अभी जो है आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज की माटी तो है प्रणाम। और इस कार्यक्रम में आज जानकारी दे रही थी रश्मि शर्मा मदन मोहन मंदिर वृंदावन के बारे में, और यहाँ के प्रस्तुत करते थे विजय सिंह नौलखा। तो अब साथियों आगे बढ़े कार्यक्रम में, आओ एक लोकगीत सुन लियो जाए।

तो साथियों, ब्रज बिहारी आनंद की आवाज़ में आप सुन रहे थे लोकगीत को, और आज का ब्रजमादरी कार्यक्रम में ही वे शामिल है। तो आप सबन को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रजमाधुरी।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज

0: से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना। पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रुपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं है। नवन्नों में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को

0: लोटे ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहाँ से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। वे देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्चस्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के

0: फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें ना विचारधारा की चिंता रहती है और ना ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। वेनेजुएलाज एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज टू बी ऑन अ 5-डे विजिट टू इंडिया बिगिनिंग टुडे। सीनियर कांग्रेस लीडर डीके शिवकुमार टू बी स्वॉन इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका दिस आफ्टरनून। West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari to launch Annapurna Yojana to provide 3,000 rupees every month to eligible women in the state today. Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman elected President of 81st Session of UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar congratulates him. Germany removes airport transit visa requirement for Indian nationals beginning today. New Delhi says the move will further enhance people-to-people ties between India and Germany. And in women's cricket, hosts England beat India by 6 wickets in

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोता साथियों, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कुमार शानू अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में आपने सुना भी साथियों सड़क फिल्म के गीत को। समीर के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार नदीम श्रवण।

जी हाँ साथियों, साइकिल तो साइकिल होती है, चाहे वो चांदी की हो या फिर लोहे की, कैसी भी हो। इस साइकिल का साथियों अपने जीवन में बड़ा महत्व है। ना सिर्फ ये पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करती है, हमारे जीवन को भी संतुलित और सुव्यवस्थित भी रखती है। साइकिल की बहुत भूमिका है, खास हमारे और प्रकृति दोनों के जीवन में। आज आपको बता दें, आज है विश्व साइकिल दिवस। तो साथियों, साइकिल के महत्व को समझना होगा हम सभी को। हम लोग चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, तरक्की करना एक अलग बात है, लेकिन जो चीज़ें हमारे लिए सदा ही लाभकारी हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हम सभी के जीवन के लिए, प्रकृति के जीवन के लिए, तो वह चीज़ या वस्तु या कुछ भी, वो हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि आजकल इस आधुनिक युग में अगर देखा जाए तो मशीनी युग में हम सब पूरी तरह से मशीनों पर लगभग निर्भर होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन और शारीरिक जो श्रम है वह कम होता जा रहा है। हम लोग कहीं भी अगर कहीं आना जाना है, मान लो कहीं अगर बहुत समय है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम साइकिल को नज़रअंदाज करेंगे और फटाफट बस दोपहिया वाहन उठाएंगे या चौपहिया और चल देंगे, है ना। तो अपने ऐसा नहीं है, अगर कोशिश ही करें कि अगर आपके पास समय है, और मैं समझती हूँ 24 घंटे में कम से कम एक बार तो साइकिल सभी को चलानी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों, स्त्री हों, पुरुष हों। एक मतलब शरीर सही रहेगा, संतुलित रहेगा, हड्डियाँ सही रहेंगी, सब कुछ सही रहेगा, नसें सही रहेंगी, नसों में खून का संचार होता रहेगा। लेकिन ऐसा चीज, ऐसा कोई साधन जो हमको बिल्कुल जड़वत कर दे, है ना, हमारी निष्क्रियता को बढ़ा दे, तो वह स्वास्थ्य के लिए कहाँ अच्छा है। तो साइकिल कहीं ना कहीं आज भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहरहाल तो हम इसके महत्व को समझें साथियों, और इसका प्रयोग ज़रूर करें, कोशिश करें कि ठीक है, जहाँ बहुत जल्दी है, अत्यंत जल्दी है, जहाँ इमरजेंसी है, आपातकाल की अगर स्थिति है, मान लो भाई हमको तत्काल पहुँचना है और साइकिल से समय लगेगा, तो वहाँ हमें अपने जो है और जो साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं हमारे पास समय है, तो हमें साइकिल का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सबकी अपनी अपनी भूमिकाएं होती हैं, है ना, महत्व तो होता है, लेकिन किस समय किसका महत्व तो है, ये फैसला करना हम लोगों के बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। बहरहाल तो इस जो आज साइकिल दिवस है, तो हम क्यों ना इस बात पर गौर करें, इसके महत्व को समझें और इसके अपने जीवन में फॉलो भी करें।

0: जाना चाहती हूँ, तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो

जयपुरी की इस रचना को आवाज़ें दी थीं नितिन मुकेश, अनुराधा पौडवाल और साथियों ने। भाभी फिल्म के इस गीत को धुन से संवारा था संगीतकार अनु मलिक ने। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

शैलेंद्र के इन खूबसूरत बोलों को धुन से समारा था संगीतकार शंकर जयकिशन ने और आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। फिल्म राजकुमार का आपने सुना अभी ये गीत, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

चित्रा सिंह की आवाज़ में आपने सुना इस खूबसूरत सी गज़ल को। फिल्म थी साथ साथ, जावेद अख्तर ने शब्दों में ढाला था और कुलदीप सिंह ने धुन से इस गज़ल को संवारा था। आज का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए साथियों, प्रस्तुत है ये भेंट वार्ता। मुद्दे की बात क्रम में पोषण और स्वास्थ्य, इस विषय पर डॉक्टर रेणुका डंग से OP सिंह की ली गई ये भेंट वार्ता, आइए सुनते हैं।

0: मुद्दे की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारी लाख नियामत के बराबर होता है, और स्वस्थ रहने के लिए जीवन में हमें एक दिनचर्या, हमारा आहार विहार, हमारी जीवन शैली कैसी है, ये जो मुद्दे हैं बहुत मायने रखते हैं। अगर हम ठीक से रहना चाहते हैं, अगर अपने भोजन पर ध्यान देते हैं, अपनी जीवन शैली पर ध्यान देते हैं, तो फिर काफ़ी कुछ बात हमारी बन जाती है। एक अच्छी डाइट, एक अच्छा भोजन और एक अच्छी आहार जो जीवन में हो वो कैसे बन सकता है, उसको लेने का तरीका क्या होना चाहिए, उसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे साथ हैं आज श्रीमती रेनू डेंग साहब, जो डाइटिशियन है। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है जी। नमस्कार
1: थैंक यू, शुक्रिया बहुत
0: जी।
1: बहुत।
0: तो आजकल का जैसा जीवन शैली है, भागदौड़ का जीवन है, तनाव भरा जीवन है, हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त है, और ऐसे में कई बार वो जो जीवन के लिए आवश्यक है, जो उसका भोजन है, उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाता, और कई बार जब ध्यान देता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक तो देरी ना हो, हम थोड़ा सा अपने आप को देख करके चलें। तो एक आदमी की जो डाइट है, क्योंकि आप न्यूट्रिशियन हैं, आप उस चीज़ को देखती हैं, पढ़ती हैं, समझती हैं, लोगों को बताती हैं, काउंसलिंग करती हैं, तो उसमें एक डाइट जो है आदमी के लिए कितनी आवश्यक है और उसमें किन किन चीज़ों का समावेश होना चाहिए, यहाँ से मैं चर्चा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए।
1: हाँ बिल्कुल, आपने पते की बात करी। जब तक अपना स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं होगा, मैंने देखा अक्सर लोगों में चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर आपने देखा अखुंदक खा के बात करते हैं, मज़ा नहीं आता बात करने में। तो मैं उनको ज़रूर कहती हूँ कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए। कहीं पे कोई आपको डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिशन आपका अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और भाग दौड़ की ठीक का आपने ज़िंदगी में, माताएं भी काम करने लग गई हैं आजकल, ठीक है वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, बट यू नो इन दैट केस हम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं खुद बहुत व्यस्त रहती हूँ, व्यस्त महिलाओं पर, जब सुबह घर छोड़ती हूँ पूरे दिन का खाना प्लान करके ही छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है एक तरफ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, दूसरी तरफ कम हो जाना।
0: जी।
1: आपके पास पैसा आ गया, आपके पास नाम शोहरत आ गई, लेकिन आपकी सेहत गिर गई। तो मैं इस तरह के जीवन को कोई जीवन नहीं मानती। देर हैज़ टू बी अ बैलेंस एवरीवेयर। मैं अक्सर अपनी टॉक्स में माताओं को ये बोलती हूँ, देखो आप जितना टाइम बचा रहे हैं किचन में घुसने से, आपने सुबह का आधा घंटा बचा लिया कि मैं किचन में नहीं जा रही हूँ, मुझे उतना ही टाइम आप डॉक्टर पे फिर 1 घंटा बच्चे को लेके स्पेंड करेंगे।
0: तो कहीं मतलब जो
1: बैलेंस हो जाता है कहीं ना कहीं, वो निकलता है। माएँ सुबह चिप्स डाल रही हैं या जंक फूड या फ्रायम्स और ये और वो, कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी टीचर की जॉब है, मुझे भी 6:30 बजे निकलना है, या मेरी दूसरी जॉब है 8 बजे निकलना है, मैं बच्चे को कैसे नाश्ता बना कर दूँ, या पति के लिए क्या बना कर छोड़ूँ, पति ने भी फ्रिज से 2 ब्रेड निकाली, बटर और चीज़ डाल के उसको खा के चले गए। तो देखिए कहीं पर आप गेन कर रहे हैं तो यू आर लूजिंग समवेयर, ऐसा नहीं होना चाहिए।
0: जी। तो कहीं प्लानिंग में, जैसे आपने कहा कि जीवन चूंकि निरंतरता है, चलते रहने वाला बात है, जिस शाम हम सोते हैं उसकी प्लानिंग अगर सुबह ही कर लें तो शायद कुछ व्यवहार में अच्छा ही हो जाती है। तो आपने कहा कि सुबह की जो व्यस्तता है, उस समय जब हम प्लान नहीं कर सकते, तो उसकी प्लानिंग अगर शाम को हो जाए तो हमको कुछ राहत मिल जाएगी। तो ये जो प्लानिंग वाली बात है, शाम को हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि जो सुबह जब बच्चा स्कूल जा रहा है, पति ऑफिस जा रहे होते हैं, आपको खुद भी निकलना होता है और सबका टाइम एक ही होता है, तो जो शाम को आपको वक्त देना है, आपको अपनी किचन में देखना है, आपको अपने फ्रिज में देखना है, नहीं है तो उसको ला के रखना है, तो वो कहाँ कहाँ प्लानिंग हो सकती है, जिससे अपन आपका हमारा एक जो जो जिसको कहते हैं ना बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन जिसको हम कहते हैं हिंदी में, तो वो एक संतुलित डाइट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का हमारे भोजन में होना समावेशी रूप में आवश्यक है
1: मैं
0: इसमें।
1: हमेशा बोलती हूँ, जो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। आपको अगर सक्सेसफुल होना है, आपको हर स्फीयर में सक्सेसफुल होना है, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ
0: जी
1: यू नो डॉटर इन लॉ, एज अ डॉटर, आपको हर तरह से सक्सेसफुल होना है। एक फील्ड में सक्सेस, दूसरे फील्ड में अनसक्सेस, मैं उस इंसान को सक्सेसफुल नहीं मानती। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं आगरा से आती हूँ,
0: जी
1: रोज़
0: जी
1: सुबह 10:30 पहुँच जाती हूँ। तो आप देखिए, रात को ही किचन में गई, देखा कौन कौन सा फ्रूट है, कौन सा मुझे लेके जाना है, कौन सा मेरे हस्बैंड को लेके जाना है, बच्चों के लिए मैं क्या छोड़ के जा रही हूँ। अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दी कि सुबह मैं तो उठ के अपना जल्दी निकलूंगी, तो अब देखिए आप मेरा अगर बैग चेक करेंगे गाड़ी में, उसमें एक ऑरेंज जूस का पूरा मेरा जार है, थोड़ा पपीता भी मैंने एक छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ है, और उसके बाद क्योंकि मुझे पता है मेरी ओपीडी है, मैं 4 बजे खाली होंगी, तो मैंने उसके अंदर एक सैंडविच रख लिया, लेकिन सैंडविच के अंदर भी मैं खीरे टमाटर डाल के लाई, मैंने कुछ जंक नहीं डाला
0: जी
1: कि
0: जी
1: ताज़ा खीरा मेरे अंदर जाएगा। खीरे में बहुत एंटासिड

0: होते हैं। आप मानेंगे कि खीरा, अगर आप पूरे दिन दो चार खीरे खा लेंगे तो कभी आपको एसिडिटी की शिकायत नहीं होगी। मतलब एक छोटी सी बात है, रॉ फूड्स, टमाटर है, तो मैंने सोचा कि पूरा दिन मेरा लॉन्ग गैप हो जाएगा, तो मैं अपना सैंडविच आज खीरे टमाटर का लेकर चलती हूँ। और चलते चलते मेरी मेड ने मेरे को बोला, मैडम नींबू पानी भी ले जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिटी या लॉन्ग गैप्स अगर होते हैं, जैसे 1 घंटा 2 घंटे आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा नींबू पानी पी के 15 मिनट पेट को दे के फिर कुछ खाइए। आपको भूख लग रही है, सुबह से आप भूखे बैठे, हमने खाना डाल लिया, फटाफट 4 परांठे डाले,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: नहीं करना है। स्मॉल स्मॉल गैप्स के लिए अपनी तैयारी करके घर से निकले, अपने घर वालों के लिए तैयारी करके जाएं कि मेरे हस्बैंड जाएंगे नाश्ते में ये वाली चीज खानी, जरूरी नहीं आप बना रहे हैं, आपके पास हेल्प है, आजकल सबके पास हेल्प
1: जी जी
0: होती है,
1: बिल्कुल
0: किसके
1: बिल्कुल,
0: पास नहीं
1: जो
0: है।
1: सुविधा है, जो साधन है, उनका हम
0: बिल्कुल
1: उपयोग कर सकते हैं, लेकिन प्लानिंग उसके लिए बहुत
0: बिल्कुल
1: आवश्यक। जरूरी नहीं कि जब हमको भूख लगे और तब हम देखें कि भाई अब हमें क्या है, जो मिला वो खा लिया
0: वो तो
1: हमने,
0: फिर गलत
1: तो
0: ही खाएंगे
1: फिर
0: आप।
1: हम ये नहीं कह सकते कि व्यस्त हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास जो उपलब्ध है वही तो खा सकते हैं। तो आपने
0: देखिए
1: जो कहा कि प्लानिंग बहुत आवश्यक है।
0: देखिए ब्रेन में एक ऑर्गन होता है एपिस्टैट, वो आपकी न्यूट्रिशन नापता है। ठीक है, अगर आपने आज एक बर्गर खाया, बर्गर के अंदर आपको न्यूट्रिशन नहीं मिला, कैलोरीज मिली पर
1: जी जी
0: न्यूट्रिशन नहीं मिला आपको, तो उस एपिस्टैट जो है वो हंग्री रहेगा, तो वो बार बार थोड़ी देर में फिर खाना मांगेगा। अब आप मेरी बात नोट करिएगा, जिस दिन आप जंक खाएंगे, जैसे आपने शुरुआती जंक फूड से करी, जिस दिन आपने बर्गर पिज्ज़ा टाइप का जंक फूड खा लिया, आप देखिए आपको थोड़ी देर में फिर भूख लग जाएगी। लेकिन आप जिस दिन आप अपना कन्वेंशनल मील करेंगे, दाल चावल सब्जी सलाद, उस दिन देखिएगा आपको 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपके जो ब्रेन को न्यूट्रिशन मिल गया, आपका ब्रेन को एक सेटिस्फैक्शन मिल गया कि मेरे पास उतना खाना आ गया है जितनी मुझे आवश्यकता है, लेकिन जंक में वो मिला ही नहीं। तो हर घंटे बाद फिर बोलते ना बच्चे को, अभी तो देखो ये खाने को दिया था, इसको बहुत भूख लगती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच
1: यानी
0: रहा।
1: जो माँ के बनाए और घर के बनाए खाने से जो तृप्ति मिलती है, जिसको आप कह रही हैं कि जो एक अंदर वो चलता रहता है, खा तो हमने लिया, पेट भर लिया, लेकिन उसको जो तृप्ति नहीं हुई मन की, इसीलिए वो कहीं ना कहीं बार बार खा के उसको ढूंढना चाहता है, करना चाहता है, और इसमें हमारा उल्टा नुकसान होता जाता है। तो जो बेसिक न्यूट्रिशन की मैं बात थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि जो एक तात्विक रूप में, क्योंकि आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि एक बैलेंस डाइट का, एक संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए। वो जो हमारा परंपरागत भोजन है वह खाते, लेकिन आज के उसमें कुछ चीज़ें और भी एडिशन के तौर पे मांगते। तो एक जो न्यूट्रिशन वाली बात है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर को आवश्यक है, और उनकी सामान्य आपूर्ति हम कहाँ से कर सकते हैं? जैसे आपने कहा हीरा है, फल है, समसामयिक जो चीज़ें हैं, आप दाल चावल रोटी हम खाते हैं, दही खाते हैं, दूध लेते हैं, तो क्या इन सबसे वो चीज़ पूरी हो जाती है? और नहीं हो जाती तो किन किन चीज़ों को हमको अपने उस खाने में और डालना चाहिए इसमें?
0: देखिए भगवान की बनाई बहुत बड़ी सृष्टि है, जिसके अंदर जानवर हैं, पेड़ हैं, लिविंग पानी
1: जी जी
0: के एनिमल्स हैं, हर तरह की सृष्टि में लिविंग चीज़ें हैं। लिविंग एक हमारी ह्यूमन बीइंग्स ऐसी स्पीशीज है
1: जी
0: जो लालची है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, फिर माँ अगर बच्चे को दूध पिलाना छोड़ देती है, वो कहती है आ जाइए भैंस जी, अब आप मेरे बच्चे को फीड करिए। लेकिन अगर आप वैसे सृष्टि में देखेंगे, गाय और भैंस बच्चे को दूध पिलाती हैं, वो बच्चा छोड़ के अपनी घास पर आ जाता है, गेहूं पर आ जाता है। तो
1: जी
0: हमें लालच नहीं करना है, सृष्टि के हिसाब से चलना है। मैं तो कहती हूँ जितना क्लोज जाएंगे आप नेचर कुदरत के, उतना आप सेहत पाएंगे। हमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं ना, हम तो इतने अच्छी कंट्री में रहते हैं। देखिए मैं अब्रॉड गई,
1: जी
0: वहाँ पे बहुत ठंड थी, मुझे पता ही नहीं वेदर, ठंड में कौन सा मुझे फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो 50 फ्रूट पड़े हैं। लेकिन मैं इंडिया में होती हूँ, मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, अब फल से आ गए,
1: हर ऋतु का अपना एक फल और
0: अपना आ
1: सब्जियां
0: जाता है।
1: हैं। जी
0: आप तो देखिए हमारा इंडियंस का बहुत, जैसे वेदास में या जैन में फूड स्टडी कर रही थी, जैन्स भी देखिए कितनी पुरानी साइंस है, 7 बजे के बाद वो खाना नहीं खाते, जमीन की चीज नहीं खाते, आलू वगैरह, क्योंकि वो कहते हैं उसके अंदर से पूरा फल निकला है फिर हम खाएंगे, जमीन के अंदर मतलब उसको अभी उगना है।
1: उगना है जी
0: आप देखिए हमारे तो इतना रिच हेरिटेज और इतना रिच कल्चर है, मैं तो सिर्फ वही पढ़ती रहती हूँ, मैं हर जैनिज्म उठा लेती हूँ, हिंदुज्म उठा लेती हूँ, मैं देखती हूँ कैसे व्रत करते थे हमारे ऋषि मुनि, क्या उसका साइंटिफिक रीजन था। ये चीजें फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, हम अपनी तरफ से हट कर, अपने इंडियन जो हमको इंडियन साइंस ने दिया, हट के हम बाहर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं कि नहीं, उन्होंने ये रिसर्च में ये बोला है, आप अपनी रिसर्च पे जाइए, पीछे जाइए, आपको कुदरत दे रहा है, मेरे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तरबूज आया गर्मी में, देखिए जो भी कुदरत

0: की चीज होती है उसे जीने का हक होता है।
1: हम्म,
0: आज तरबूज फूटा है उसको जीने का हक है, लेकिन वो तपती रेत में पड़ा है। अब तपती रेत में आप कोई भी फल डालेंगे वो मर जाएगा, तो आप बताइए तरबूज कैसे अपने आप को बचाता है?
1: सर्वाइव कर
0: वो
1: रहे हैं।
0: इतना पानी बना लेता है अपने अंदर, इतनी थिक स्किन बना लेता है कि उसका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसको हमने रेत में डाल
1: जी
0: दिया।
1: जी जी
0: अगर
1: जी
0: वो ही तरबूज हम खा लेंगे तो मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या हम नहीं बच पाएंगे इस गर्मी की
1: उससे
0: लू
1: बिल्कुल
0: से?
1: सही कह रही है। तो
0: बच
1: इसका
0: पाए
1: मतलब जो नेचर दे रही है वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए
0: बिल्कुल
1: दे रही है,
0: बिल्कुल
1: मौसम के हिसाब से दे। शायद इसमें कहीं ये हुआ कि हमने अपनी चीज़ों को उतनी तवज्जो नहीं दी, उनकी जानकारी हमने नहीं रखी, और एक जो व्यवहार में पहले लोगों ने डाला था, चाहे उसको अंधविश्वास मान के छोड़ दिया हमने, चाहे व्रत के पीछे का साइंस हो, चाहे खान पान के पीछे का साइंस हो। इसीलिए हमारे यहाँ तो जो पूरा आयुर्वेद है वो आहार विहार को भी एक वही मान करके चलता है। तो कहीं इसमें थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है उसमें।
0: बिल्कुल, हम चकाचौंध की दुनिया में खो गए, हम एड वर्ल्ड में खो गए।
1: जी
0: हमारी गलती नहीं है, जो हमें दिखाया जाता है हम उसी को मान लेते हैं, और ऐसे ढंग से दिखाया जाता है कि मैं नहीं कहती वो कुछ गलत है या कुछ उसमें गड़बड़ है,
1: जी
0: लेकिन जितना हम नेचर के साथ रहेंगे, जितना हम कुदरत के साथ रहेंगे, उतने ही हम हेल्दी रहेंगे।
1: जी। तो ये तो बात आपने कही कि नेचर से हमें सामंजस्य बिठाना है, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाना है, जो जैसी ऋतु है, जो जैसा कल्चर है, उसके हिसाब से ही आहार विहार अपना निश्चित करना है। थोड़ा सा मैं लौट के फिर वहीं आऊँगा कि हेल्दी बनाना है हमें अपने खाने को, हमें अपने खाने को संतुलित बनाना है। तो मेरे घर में जो है, अब ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मट्ठे से मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रखी है, मेरे पास फरात है, तो उसके लिए मैं कहीं जूस और वो ले रहा हूँ। तो एक सामान्य आदमी की जो सोच है कि भाई बाजार से जाएं, कुछ खरीद के लाएं, तब हम स्वस्थ रहने लायक एक अच्छा खाना बना सकते हैं। तो मैं वो टिप्स आपसे ये जानना चाहूँगा तकरीबन
0: बिल्कुल,
1: बस।
0: आपने ठीक कहा। बस मैं ये इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे ही आप मार्केट में निकलें, आप कुदरत की चीज देखें कि अरे
1: जी
0: वाह फालसा आ गया, फालसा खाइए, फालसे का शरबत पीजिए, अंबी आ गई देखिए, अंबी का पन्ना लीजिए, बेल आ गया, बेल का शरबत लीजिए, नींबू बढ़िया मिल रहा है, पूरे दिन नींबू पानी पीजिए, देखिए आपको कितनी ग्लोरियस हेल्थ मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं आंवले का मुरब्बा इस टाइम खाऊं,
1: जी
0: तो
1: जी
0: ये
1: जी
0: वक्त आंवला खाने वक्त था, जनवरी फरवरी, जब पेड़
1: हाँ
0: लद गए थे आंवले से,
1: जी
0: हमने खूब आंवला, वाइटामिन सी हमने अपनी बॉडी के अंदर चुकंदर के साथ जूस बना के पंप कर लिया। बट दिस इज द टाइम टू हैव फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। कुदरत ने अपने आप लौकी भेज दी, तोरई भेज दी, तो जो कुदरत आपको घंटी दे रही है, जो आप देखे नई चीज मौसम के हिसाब से आई है, अगेन आई वुड से वी आर ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन अ कंट्री विच हैड अ वेरी वेरी ग्लोरियस पास्ट। और
1: जी
0: पुराने अपने मम्मी पापा दादा दादी से पूछिए कैसे मौसम में आप कैसे सत्तू लेते थे, क्यों लेते थे, तो आपको मटके का पानी क्यों पीते थे। तो यू मेरा प्रॉमिस है आपसे, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल हेल्थ मिलेगी।
1: निश्चित तौर पर श्रोता बंधुओं, आज हमारे साथ थी श्रीमती रेणुका डेंग साहब डल में, और जानकारी जो दे रही थी बहुत लंबा विषय हो सकता है, लेकिन बात जो निकल के आई वो यही है कि हम सौभाग्यशाली हैं उस देश में जहाँ की संस्कृति, जहाँ की पद्धति, जहाँ के रहन-सहन का एक एक जीवंत तो उदाहरण है। तो उसी में से हमें देखना है जिन चीज़ों को हम भूल चुके हैं, जिन चीज़ों को हम छोड़ चुके आप
0: हैं,
1: अभी सुन रहे थे तो
0: मुद्दे की
1: आज
0: बात क्रम में
1: अंधविश्वास
0: जानकारी
1: बांट करके
0: पोषण और
1: आया हूँ।
0: स्वास्थ्य संबंधी
1: मैं
0: डॉक्टर
1: भी
0: रेणुका
1: आपको
0: डंग से
1: यानी कि नसों में
0: ओपी
1: दर्द
0: सिंह की ली गई
1: जिसको
0: भेंट
1: कहते
0: वार्ता
1: हैं
0: के
1: कि
0: माध्यम
1: जीवन
0: से, और
1: शैली
0: समय हो
1: कैसे
0: चुका
1: बदल
0: है
1: सकते हैं,
0: जिले की
1: मैं
0: हलचल
1: आपको
0: का, तो
1: बताऊंगा
0: बस अब से कुछ ही
1: अपनी
0: देर
1: और
0: में।
1: जानकारी।
0: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल, आलेख और स्वर है मुमताज अली का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मई 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया, जिनमें से लखनऊ भी एक था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा,
3: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूँ मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय सामाजिक न्याय, अधिकारिता, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने 300 से अधिक उम्मीदवारों को सरकारी सेवा की सौगात दी, जिनमें से 198 उम्मीदवार भारतीय रेलवे का हिस्सा बने। श्री वर्मा ने कहा कि रोजगार मेला आरम्भ किए जाने के बाद देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियाँ दी गयी हैं। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 मई को 2 दिवसीय

0: लखनऊ दौरे पर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। 6 मई की रात को उन्होंने लखनऊ के निजी होटल में फल निर्यातकों के साथ निर्यात को बढ़ाने पर चर्चा की। अगले दिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत आने वाले केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा में उन्होंने फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। श्री चौहान ने साफ कहा कि अब केवल ज्यादा उत्पादन से बात नहीं बनेगी, बल्कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। उन्होंने जोर दिया कि खेती को खेत तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अब उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, बाजार और निर्यात तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करना समय की मांग है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री चौहान ने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के साथ भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर ML जाट भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 मई 2026 को लखनऊ वासियों को विकास की सौगात दी। उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में 413 करोड़ की 342 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ, सुंदर, समर्थ लखनऊ पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान लघु फिल्म भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने सभी 17 नगर निगमों के महापौर, 200 नगर पालिका परिषद, 545 नगर पंचायतों के चेयरमैन और लगभग 14,000 पार्षदों को 3 वर्ष का कार्यकाल संपन्न होने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता का पैसा जनहित में खर्च होगा। उन्होंने कहा लखनऊ को स्वच्छता रैंकिंग में 3रा स्थान मिला है, अब इसे पहले स्थान पर लाना है। श्री योगी ने कहा
1: 25 करोड़ की आबादी ही हमारा परिवार है और नगर निगम लखनऊ ने कहा कि पूरा नगर निगम ही हमारा परिवार है, इसलिए बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाना है।
0: जनगणना 2027 के तहत स्वगणना का काम लखनऊ में 7 मई 2026 से शुरू हुआ और 21 मई 2026 तक चला। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों ने स्वगणना में भाग लिया। अब जनगणना के प्रथम चरण के तहत प्रगणक घर घर जाकर मकान की गणना कर रहे हैं। 22 मई को शुरू हुआ यह कार्य 20 जून 2026 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी और निदेशक शीतल वर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि मकान की गणना के पहले दिन 1 करोड़ से अधिक मकान को सूचीबद्ध किया गया है। लखनऊ में जेठ के बड़े मंगलों की धूम मची हुई है। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर से शुरू हुई यह परंपरा अब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में प्रत्येक बड़े मंगल पर हनुमान जी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन के साथ भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। अब तक हजारों भंडारे आयोजित हो चुके हैं। इस बार अधिमास लगने के कारण 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 मई को ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। 30 मई तक चले बकरीद पर्व पर लोगों ने कुर्बानी की परंपरा का निर्वहन किया। लखनऊ स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरीद के लिए 12 बिंदुओं की एडवाइजरी जारी की थी। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL 2026 के संस्करण में 7 मुकाबले लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए, जिनका लुत्फ शहरवासियों के साथ साथ अन्य राज्यों और शहरों से आए लोगों ने भी उठाया। अब इकाना स्टेडियम में 17 जून 2026 को भारत और अफगानिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला जाएगा।
2: लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजियाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज शर्मा का।
3: भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के साथ साथ समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के भी सपने पूरे हो रहे हैं। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग को सरकार द्वारा चलाए जा रही योजनाओं का लाभ मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे गरीबों को रहने के लिए अपना छत मिली है जो किराए पर रहते थे। गाजियाबाद के रहने वाले पवन कौशिक ने बताया कि पहले वो किराए के मकान में रहते थे और हर एक 2-4 साल में उनको मकान बदलना पड़ता था, जिससे उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गाजियाबाद की बापूधाम योजना में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपना मकान लेने का सपना देखा, जो कि पूरा भी हुआ। लाभार्थी पवन कौशिक ने बताया,
4: मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू जो है वो GDA में फ्लैट आवंटन के लिए योजना निकाली गई है, तो मैंने उसमें 2020 में आवेदन किया था। अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले मेरी रजिस्ट्री हुई है, साथ के साथ कब्जा भी हो गया। सरकार ने बहुत अच्छा किया।
3: वहीं गाजियाबाद के अभिषेक कुमार कहते हैं कि एक मकान हर इंसान का सपना होता है। भारत सरकार ने मकान देकर निम्न वर्ग के सपने को पूरा किया। उन्होंने सरकार की भागीदारी से कम कीमत में उपलब्ध हुए मकान के लिए सरकार का आभार भी जताया। वहीं GDA उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आवासीय योजनाओं के बारे में बताया। सरकार समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को हर वो सुविधा देना चाहती है जिससे वह अपने आप को सक्षम महसूस कर सके। मकान हर किसी का एक बहुत बड़ा सपना होता है। उस मकान

0: को सरकार गरीबों के लिए भी आसानी से उपलब्ध करा रही है। उन्होंने जनपद गाजियाबाद में चल रही अन्य आवासीय योजनाओं के बारे में बताया और ईडब्ल्यूएस के तहत भविष्य में आने वाली योजनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया,
1: सरकार की भी नीति है कि गरीब लोग अधिकतम से अधिकतम इसमें लाभान्वित हो। जो हमारे प्राधिकरण की खुद की योजनाएं हैं उसमें भी हम छोटे साइज के 40 स्क्वायर मीटर के, 60 स्क्वायर मीटर के, 90 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स जो कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सुलभ होते हैं उसको हम लॉटरी के माध्यम से अधिक जनता को उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं।
0: गाजियाबाद के सिकंदरपुर में बने हिंडन एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर तैयारी तेज कर दी गई है। हवाई अड्डे का विस्तार 14 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसमें से 6.8 एकड़ जमीन की खरीद को लेकर किसानों ने सहमति बनाने का जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। शेष 7.2 एकड़ जमीन की खरीद के लिए सिकंदरपुर गांव के किसानों से अब जिला प्रशासन द्वारा वार्ता शुरू कर दी गई है। ऐसे में हिंडन हवाई अड्डे की उड़ान बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ जैसे सीमित शहरों तक नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक होगी। इससे गाजियाबाद के विकास को पंख लगेंगे और आसपास के जिलों के लोगों के लिए भी एयर कनेक्टिविटी की सुविधा बेहतर होगी। शासन के निर्देश पर जनपद की 67,000 ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के लिए उनको सिलाई कढ़ाई से लेकर मोबाइल रिपेयरिंग, खेती करने, बैंकिंग कार्य करने सहित अन्य कार्य करने के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। प्रशिक्षण देने के बाद सरकार की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह को कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक रूप से सहायता भी दी जाती है। कम ब्याज पर बैंक से लोन दिलाया जाता है। वर्तमान में 2400 महिला स्वयं सहायता समूह हैं। वित्तीय वर्ष 26-27 में सरकार ने जिले में 6,700 नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के निर्देश दिए हैं। एक महिला स्वयं सहायता समूह में न्यूनतम 10 महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे 67,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6,700 महिला स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार की एक जिला एक उत्पाद और एक जिला एक खेल की सफलता के बाद अब ODOC एक जनपद एक व्यंजन योजना शुरू की गई है। इसमें स्थानीय खान पान और स्वाद को ध्यान में रखते हुए इसे प्रदेश द्वारा और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना आवश्यक है। इसी क्रम में गाजियाबाद को सोया चाप के बाद हरी मिर्च के अचार को भी इस योजना के लिए चिन्हित किया गया है। जनपद में सोया चाप के कारोबार से 10,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। वहीं हरी मिर्च से तैयार अचार को भी एक जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल किया गया है। इस अचार के निर्माण और व्यापार से 2500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत। ये जानकारी LK दधीची से। विषय है श्रेष्ठ पृथ्वी।
4: जन घटते हुए वन और बढ़ते हुए वाहन, साथ ही साथ बढ़ते उद्योग और बढ़ता प्रदूषण, ये सब लिंक होते हैं आपस में एक दूसरे से और इस बात का संकेत के साथ में होते हैं कि हमको क्या अपने विकास के लिए इन सब की आवश्यकता के साथ साथ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। यदि विकास हम चाहते हैं तो उस विकास का आनंद हम तभी ले पाएंगे जब हम सब स्वस्थ होंगे। तीन चीजें हैं जिन्हें आप अपने तरीके से बहुत बढ़िया कर सकते हैं और वो है, आप अपना चरित्र बना सकते हैं, अपना स्वास्थ्य बना सकते हैं और अपना करियर, जिसको आप जीविका का साधन मानते हैं, वो आप स्वयं बना सकते हैं। उसमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस समय आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्ति के साथ मिट्टी, पानी और हवा को बनाने की कोशिश कर सकते हैं, तो शायद आपके लिए और हम सबके लिए ये एक कपोल कल्पना ही साबित होगी। शायद पर्यावरण भी पर्यावरणीय आतंकवाद के एक निशाने के रूप में हम सबके सामने हो सकता है। इस बात को समझने का, एक छोटा सा प्रयास इस रूप में कि

आज हमें हर चीज फ्री उपलब्ध हो रही है, मिट्टी फ्री है, जल फ्री है, मुफ्त में हमें हवा प्राप्त हो रही है। लेकिन आप थोड़ी सी ये कल्पना कर लें कि जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, क्या पीठ पे सिलेंडर लेकर हम घूम पाएंगे? और उसके बाद फिर ऑक्सीजन का सिलेंडर, ये सब यदि हम लेकर चलेंगे तो हम अपने आप को धरती पर एस्ट्रोनॉट नहीं बल्कि धरती पर एक ऐसे प्राणी के रूप में अपने को तैयार कर पाएंगे कि शायद हम इस कृत्रिम हवा में अपना सांस लेकर कितने समय तक जी पाने की स्थिति में होंगे। यही संकेत है हमारी स्वस्थ पृथ्वी और खुशहाल सभ्यता के माध्यम से दिए जाने वाले आज के इस वक्तव्य का, जिसमें हम ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन, जैव विविधता, धरती के भीतर और बाहर मौजूद जल, खनिज, वनस्पति, वायु, आकाश, वह सब कुछ तो उसकी पकड़ में संभव है। दरअसल नए तरीके का विकास भोग आधारित विकास है। यदि यह बढ़ेगा तो भोग बढ़ेगा, दोहन बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, ग्रीन गैसें बढ़ेंगी, तापमान बढ़ेगा, साथ ही बढ़ेगा प्राकृतिक वार और प्रहार। घटेगी तो सिर्फ पृथ्वी की खूबसूरती, समृद्धि। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि विकास, भोग, दोहन, उत्सर्जन, तापमान सब कुछ बढ़ाने वाले खुद सीमा में आ जाएंगे। पुनः मूषक भवः, कि ये पृथ्वी जो हमें स्वस्थ रख रही है, ये पृथ्वी जो हमारी सभ्यता के साथ निरंतर हमारी परंपराओं को, हमारे वृक्ष पूजन को और नदी जल के साथ परिवर्तित होते हुए हमारे शुद्ध स्वास्थ्य की कामना के साथ निरंतर आगे बढ़ाती हमारी पृथ्वी, हम किस प्रकार से इस जल, थल और नभ को प्रदूषित कर अपने जीवन को अब आगे बढ़ा पाएंगे, ये एक विचारणीय बिंदु है, एक विचारणीय प्रश्न है, जिसे हर व्यक्ति को स्वयं से करना होगा। और संभवतः तभी हमारी पुरानी सभ्यता के साथ जुड़कर हम आज के इस धरती को स्वस्थ बना सकने की परिकल्पना में एक अध्याय इस रूप में जोड़ पाएंगे कि अब और नहीं।

आप सुन रहे थे अभी तक कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत। ये जानकारी श्रेष्ठ पृथ्वी, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर LK दधीची।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण। आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं जितेंद्र सिंह।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार।
0: संयोजक हैं ओपी सिंह।
1: भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे और सकारात्मक विचार के साथ करते हैं, तो मित्रों आज का हमारा विचार है कि स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना है जरूरी। मित्रों, अगर आप ये सोचते हो कि स्वस्थ रहने के लिए केवल अच्छा भोजन, नियमित व्यायाम या अच्छी एक्सरसाइज, खानपान ही जरूरी है, तो ये ही पर्याप्त नहीं है। जबकि सच ये है कि स्वस्थ रहने के लिए मानसिक खुशी भी उतनी ही जरूरी है। जब हम खुश रहते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खुशी तनाव को कम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और हमें कई बीमारियों से बचाने में

में मदद करती है, और दूसरी ओर लगातार चिंता, तनाव और उदासी हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अपनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहते हैं तो इसका फ़ायदा सीधा आपकी सेहत को होता है, और खुश रहने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। अगर एक बीमार व्यक्ति खुश है तो उसकी बीमारी उसके जीवन पर हावी नहीं हो सकती। खुशी सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हमारे जीव जंतु भी महसूस करते हैं। इंसान अगर अपने जीवन में खुश रहता है तो जीवन के कामकाज के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है वो भी सकारात्मक रहता है, और हम चाहें तो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ सकते हैं। जैसे कभी कभी एक बच्चे की प्यारी सी हंसी भी हमें खुशी दे जाती है, और कभी कभी हमारे मित्रों के साथ छोटी मोटी गपशप भी हमें खुशी देती है, और कभी कभी हमारे बॉस द्वारा ऑफिस में हमारे काम की तारीफ भी हमें खुशी देती है। इसलिए जीवन में जो पल भी ऐसे मिलें उनको खुशी से अपनाएं और प्रयास करें कि हम हमेशा खुश रहें, क्योंकि जो पल हमें खुशी दे वही हमारी ज़िंदगी है।

0: श्रोताओं, जो लोग स्वरोजगार कर स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो सरकार भी उनके साथ है और इस दिशा में विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं जो कि आम लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी। तो आज हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम ब्रज दर्पण के अंतर्गत हार्दिक स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंद्रभान सिंह, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केंद्र मथुरा। मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं और जनपद मथुरा के सभी निवासियों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जिसपे मैं जो सरकार की स्वरोजगार स्थापित करने के महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो हम अपने श्रोताओं तक पहुँचा सकें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सबसे फ्लैगशिप और महत्वाकांक्षी योजना है सीएम युवा योजना, जिसको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि योजना ना होके एक अभियान है जिसमें हमें अधिक से अधिक अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को, अपने युवा साथियों को रोजगार से जोड़ना है। ये एक ऐसी योजना है जिस योजना में आपको बिना ब्याज का, मतलब ब्याज रहित और कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा और साथ में ही आपको 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। इसमें जो हम लोगों का, उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष और 10 वर्ष में 10 लाख युवकों को हमको रोजगार से जोड़ना है। इस योजना के जो मुख्य आकर्षण है, जो मुख्य बिंदु है कि न्यूनतम कक्षा 8 पास हमारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग होना चाहिए। इसमें आपको 5 लाख रुपए तक का कोई भी उद्योग या सेवा, उद्योग मतलब आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, सेवा मतलब सर्विस इंडस्ट्री, जैसे होटल हो गए, ब्यूटी पार्लर हो गए या किसी भी तरीके की सर्विसेज, इसमें 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं पे आपको 100% ब्याज मुक्त, मतलब आपका जो ब्याज है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और कोई भी कोलेट्रल या गारंटी नहीं लगेगी। बैंक द्वारा आपसे किसी भी तरीके की कोई गारंटी या कोई कोलेट्रल की मांग नहीं की जाएगी, 100% ब्याज मुक्त होगा। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको इस पे 10% की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये योजना इस तरीके की है कि आप बस केवल अपना विजन बनाइए, अपने मन में कुछ काम करने का प्लान करिए और जिला उद्योग केंद्र में आप एक बार विजिट करिए या ऑनलाइन वेबसाइट पे देख सकते हैं और वहां से इस योजना के बारे में सारी आपको जानकारियां, पात्रता, प्रक्रिया सब कुछ पता चल जाएगी। इसी के साथ जो हमारे विभाग में अन्य योजनाएं हैं, जैसे कि आप लोग सभी अवगत ही होंगे कि ODOP, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इसके अंतर्गत जनपद मथुरा में ठाकुर जी की पोशाक, चूंकि ब्रज की नगरी है तो ठाकुर जी की पोशाक यहाँ पे ODOP है, इसी के साथ स्वच्छता संबंधी उपकरण ये भी यहाँ का ODOP है। इस योजना में आपको अगर अपना रोजगार शुरू करना है तो आपको सब्सिडी वाला ऋण भी मिलेगा। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो इसमें टूलकिट और ट्रेनिंग योजना भी चलती है जिसमें आपको 10 दिवसीय ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के उपरांत आपको मानदेय दिया जाएगा और काम करने के लिए उस विधा से संबंधित मशीनरी भी दी जाएगी। और अगर आगे अपना बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो आप किसी न किसी योजना से आप लाभ लेके अपना एक बड़ा उद्यम स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे परंपरागत कारीगर हैं, जैसे हमारे नाई हो गए, बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, इनके लिए एक अलग स्कीम चलाई हुई है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इस योजना के अंतर्गत हमारे परंपरागत कारीगर जो किसी भी विधा से, वो चाहे दर्जी हों, चाहे वो मोची हों, चाहे वो हमारे लोहार साथी हों, चाहे हमारे वो नाई हों, हलवाई हों, ऐसे बहुत सारी ट्रेडें हैं, इन ट्रेडों में उन्हें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ उन्हें मानदेय के रूप में एक धनराशि मिलेगी और उस विधा में काम करने के लिए उनको वो सारी मशीनरी मिलेंगी जिससे वो प्रतिदिन अपनी आजीविका का कुछ न कुछ उनकी आजीविका की व्यवस्था होगी। और अगर उसको बड़े स्केल पे ले जाना चाह रहे हैं तो उनको हम बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी वाला ऋण भी दिला सकते हैं, ब्याज फ्री वाला ऋण भी दिला सकते हैं। तो ये योजनाएं हमारी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अगर कुछ हमारे युवा साथी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ 25 लाख, 50 लाख तक की भी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है जिसमें 25% की सब्सिडी होती है और वो कोई भी अपना बड़ा उद्यम, वो चाहे सेवा क्षेत्र का हो या मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का हो, वो आराम से इसमें स्थापित कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि जो कई बार देखा जाता था कि बैंकों से समस्याएं आ रही हैं, अब इन योजनाओं की समीक्षा हर एक स्तर पे, जिला स्तर पे जिलाधिकारी महोदय द्वारा, मंडल स्तर पे आयुक्त महोदय द्वारा, और इसी तरीके से एक प्रक्रिया बनी हुई है, शासन स्तर पे इसकी समीक्षा होती है जिसमें फास्ट ट्रैक माध्यम

0: से प्रयास रहता है कि 15 दिन से एक महीने के अंदर हम लोग उनका ऋण हर हालत में डिसबर्स करा ले जाएं।
1: अभी जो आपने प्रशिक्षण का जिक्र किया, ये बताएं कि जिला उद्योग केंद्र मथुरा के माध्यम से किस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं?
0: हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण योजनाएं, दो योजनाएं हैं हमारे पास। एक योजना हमारी है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, जिसमें हमारे परंपरागत कारीगर जैसे दर्जी, मोची भाई हो गए, लोहार साथी हो गए, हमारे राजमिस्त्री हो गए, टोकरी बुनकर हो गए, सुनार हो गए, ऐसे वो सारी ट्रेडें जो हमारे परंपरागत काम से जुड़ी हुई हैं वो इसमें हैं, जिसमें आप किसी भी जनसेवा केंद्र से, आप अपने मोबाइल से या हमारे कार्यालय में संपर्क करके आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 10 दिवसीय प्रशिक्षण मिलेगा और प्रशिक्षण में आपको 10 दिवस का रहना खाना सारी व्यवस्थाएं रहेंगी जो सरकार की तरफ से निःशुल्क रहेंगी, और इसी के साथ आपको 10 दिवस का मानदेय भी मिलेगा, लगभग 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रहता है, 4,500 रुपये। और इसके बाद जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो अगर हमारे कोई दर्जी साथी हैं तो उनको सिलाई मशीन, वो दर्जी में काम करने वाले वो सारे इंस्ट्रूमेंट सारी मशीनरी मिलेगी। कोई हमारे अगर धोबी साथी हैं तो उनको धोबी का काम करने के लिए उस विधा के लिए उनको बहुत सारा सामान और उसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। जो दूसरी हमारी प्रशिक्षण योजना है वो ODOP प्रशिक्षण योजना है। इस योजना के अंतर्गत उनको, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे ठाकुर जी की पोशाक और प्लम्बर मतलब स्वच्छता संबंधी उपकरण दो ट्रेडें हैं ODOP के रूप में, तो इन दोनों ट्रेडों में आपको ठाकुर जी की पोशाक का प्रशिक्षण भी मिलेगा, प्रशिक्षण के रूप में मानदेय भी मिलेगा, और जब आपका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपको काम करने के लिए अच्छी उन्नत किस्म की हाईटेक सिलाई मशीनें मिलेंगी, और फिर आगे अगर आप उस काम को और बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे ब्याज मुक्त ऋण सब्सिडी वाली योजनाओं से आप जुड़ सकते हैं।
1: तो इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा या सबसे पहले यहाँ जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में संपर्क करना होगा?
0: बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र जा सकते हैं और हमारी योजनाएं इतनी लोकप्रिय योजनाएं हैं कि आप वहां पे जाके जनसेवा केंद्र संचालक से कह सकते हैं कि हमको जो है CM युवा योजना में आवेदन करना है, या हमको प्रशिक्षण की योजना में आवेदन करना है, या हमको विश्वकर्मा योजना में आवेदन करना है, तो वो आपका आवेदन कर देगा। बहुत नॉमिनल सी फीस वो लेता है, हमारे आवेदन की कोई फीस नहीं है। इसके बाद हमारे युवा साथी, चूंकि अब मोबाइल और इनमें इंटरनेट पर सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, तो वो मोबाइल के माध्यम से भी अपने घर से अप्लाई कर सकता है। हमारी वेबसाइट है msme.up.gov.in। अगर उसको कोई और समस्या आ रही है या नहीं समझ पा रहा है तो हमारा कार्यालय जिला उद्योग केंद्र मोहली रोड पे है, आप यहाँ भी संपर्क कर सकते हैं, हम यहाँ से भी आपका आवेदन करा देंगे।
1: आवेदन करने के बाद क्या कोई यहाँ कार्यालय में कोई उनका यहाँ साक्षात्कार लिया जाता है, किस तरह से जो उनका ऋण है वो पास होता है?
0: जब आपका आवेदन हो जाता है, आवेदन के पश्चात फिर एक साक्षात्कार की प्रक्रिया है जिसमें हम लोग स्क्रूटनी करते हैं कि हम आपने जो आवेदक है उसकी इच्छा और उसकी विधा का चयन करते हैं, तत्पश्चात उसको सेंसिटाइज करते हैं कि हमारी ये योजना है, इसमें इतने दिन का प्रशिक्षण है, आपको आना होगा। तत्पश्चात जब उसका चयन हो जाता है, चयन हो जाने के पश्चात प्रशिक्षणदायी संस्थाएं हैं जो शासन द्वारा नामित होती हैं, हम उनके पास आपका आवेदन भेज देते हैं और आपका प्रशिक्षण वहां से प्रारंभ हो जाता है।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र मथुरा के उपायुक्त उद्योग श्री चंद्रभान सिंह जी। और जैसा कि स्वावलंबन और स्वरोजगार की दिशा में चल रही विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो जो भी ऐसे लोग हैं, युवा हैं, जो सेवा क्षेत्र में या विनिर्माण क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, स्वावलंबी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो आपने हमारे श्रोताओं तक और विशेष रूप से युवाओं तक इन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं पुनः आपसे अपील करूंगा कि एक जज्बा और एक उम्मीद और एक प्लान बनाइए, और बस आपका केवल एक ध्येय ये होना चाहिए कि हमें अपना उद्यम स्थापित करना है और हमें 4 और लोगों को नौकरी देना है। अगर आप इस ध्येय के साथ हमारे कार्यालय विजिट करते हैं तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपका हर संभव मदद करेंगे, और आपके आवेदन कराने से लेके प्रशिक्षण कराने और ऋण वितरण तक जो भी यथासंभव सहयोग होगा हम करेंगे। और केवल आपका यहीं तक सहयोग नहीं रहेगा, जब आपका एक बार उद्यम स्थापित हो जाएगा तो आपके लिए मार्केट, विभिन्न मेले इत्यादि के माध्यम से हम आपके लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग, मार्केटिंग इत्यादि का भी काम करेंगे। तो मैं आकाशवाणी का और साथी संचालक का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट msme.up.gov.in इस पे आप विजिट कर सकते हैं और सारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। किसी भी जानकारी या कोई कंफ्यूजन होने पे आप जिला उद्योग केंद्र आ सकते हैं।

यहाँ पे हमारी टीम है जो आपको हर संभव मदद करेगी। बस हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

साथियों, अब हम अपने कार्यक्रम के अगले सेगमेंट क्या करें क्या ना करें में आपसे ये अपील करना चाहेंगे कि स्वच्छता को अपनी आदत बनाएं, क्योंकि स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और ये हमारे जीवन की प्राथमिकता भी है। स्वच्छता का अर्थ है कि साफ सफाई से रहने की एक ऐसी आदत जिससे न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अपने घर में, अपने आसपास और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम अनेकों बीमारियों से दूर रहेंगे, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित रूप से हम विकास के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। अपने घर के आसपास और सार्वजनिक स्थान को स्वच्छ बनाए रखना और इसके प्रति अन्य लोगों को जागरूक करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहते हैं तो हम सीधा अपने राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जन जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और उन्हें प्रेरित किया। महात्मा

गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता का अर्थ केवल अपने घर में साफ सफाई रखना ही नहीं, बल्कि अपने आसपास के पर्यावरण, अपने गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे खुले में कूड़ा कचरा और गंदगी नहीं फैलाएं, क्योंकि इससे हैजा, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, और अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं तो इन बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। और स्वच्छ वातावरण न केवल हमें स्वस्थ रखता है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ज़रूरी है। साफ सुथरा वातावरण हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हमारा जो जनपद मथुरा है, ये भगवान

और महत्वपूर्ण बात, जैसे कि हमारा जो जनपद मथुरा है, ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी लीला स्थली है, इसलिए यहाँ बहुत संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और अब जो अधिक मास चल रहा है, तो काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं। तो एक स्वच्छ शहर या देश पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। अगर हम अपने शहर में स्वच्छता बनाए रखते हैं, तो हमारे शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक स्वच्छता केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, इसलिए ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं, इसे आदत बनाएं और इसे बनाए रखें।

स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को होगी। जनपद के 16 केंद्रों पर परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक चलेगी। हर पाली में 6,240 अभ्यर्थी शामिल होंगे। और साथियों, इसी के साथ हम बात कर लेते हैं आज के दिन विशेष की। तो आज की तिथि 3 जून इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1947 में भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के बंटवारे की योजना का ऐलान किया था, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और आज ही के दिन सन 1965 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एड वाइट ने जेमिनी 4 मिशन के दौरान अंतरिक्ष में चहलकदमी की। ऐसा करने वाले वे पहले अमेरिकी बने। और आज ही के दिन सन 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हिंदी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। और आज ही के दिन हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। सन 2018 में पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार विश्व साइकिल दिवस मनाया। साइकिल के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। और साथियों, साइकिल हमारे स्वास्थ्य को भी सही रखती है और इसी के साथ साथ इससे हमारा जो पर्यावरण है वो भी अच्छा रहता है। और जब हम साइकिल का उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा लाभ हमारी सेहत को मिलता है और इससे हमारा व्यायाम भी होता है। इसलिए हो सके तो साइकिल को भी अपने दिनचर्या में थोड़ा स्थान दें। और इसी के साथ अब कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

और साथ ही उसी के साथ अब एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। आज की खबरों में है, आगरा में 31 से 2 जून तक आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में मथुरा की महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता के पहले दिन मथुरा की महिला पहलवान स्वाति ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में अपने सभी मुकाबले जीतकर

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण। प्रस्तुति जितेंद्र सिंह की और संयोजक ओपी सिंह थे।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी एवं सीआईटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं, और यही मानव संबंध की विडंबना है।
3: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, अरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
3: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध

0: शीत मरुस्थलों की।
1: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोबी का मरुस्थल। तो अजीत जी चर्चा को विस्तार दीजिए।
0: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है।
1: जी,
0: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर।
1: जी
0: विमलेश जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओ, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोबी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है। केवल 5% भाग ही रेतीला है।
0: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहां तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है।
1: जी
0: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है।
1: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी।
0: जी
1: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोबी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
0: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले।
1: जी
0: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
1: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
0: जी हाँ, जरूर।
1: श्रोताओ, गोबी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोबी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं,
1: जी
0: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं।
1: जी
0: घुड़सवारी यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये 2 तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात यह है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओ, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं?
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी,
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।

0: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
1: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
2: कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ तो। हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं। अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
3: अरे वो देखो बंदर।
4: ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
2: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
2: क्या करेंगे? देखेंगे, जब जानवर आएगा तब।
1: अचानक
4: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
2: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
2: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
1: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
2: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
1: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओह, अब मैं क्या करूं? मैं
1: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर ले जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
1: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघे। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के डर रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
1: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए। लगता है रीच चला गया।
1: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
2: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
1: और अपने साथी से जाकर पूछा,
2: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
4: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम ना आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
5: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम अकादमिक समन्वय, डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाता। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
3: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
5: मारो, मारो, ठीक से निकाल लो।
6: नहीं लगी।
7: अरे नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
6: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो। अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
7: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो
6: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
8: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
6: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
7: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
3: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
4: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
3: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया।

0: उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
2: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
3: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
2: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
1: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
2: आप तो काम करती है ना?
1: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
2: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
1: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरा माँ,
2: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहाँ से आ रही हो?
4: गौरा माँ, वो लोग आ रहे हैं।
2: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहाँ आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरा माँ,
2: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
2: क्या?
4: हाँ गौरा माँ, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
2: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
1: बिल्कुल,
2: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हम सब तैयार हैं।
6: नहीं कटने।

0: देंगे,
1: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
2: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
1: ये है जंगल के उपकार,
3: मिट्टी पानी और बयान,
1: मिट्टी पानी और बयान।
4: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे क्या कर रहे हो?
6: मेरा मुंह के ताक रहे हो? चलो शुरू।
5: अरे भाई कौन है? रुको, इस पर जाएंगे पेड़ से।
1: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
6: सुनो, आगे बढ़ो।
5: अरे कहां से?
6: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेश की थी है, पेश की इस काम के लिए।
1: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
7: नहीं लगाने देंगे।
1: बहनों आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
5: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
6: तो वहाँ चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
4: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
6: तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
2: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
4: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
2: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
4: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
1: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
2: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया।

0: इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कब के बिछड़े।
1: आपने सुना था अभी आशा भोसले अनवर की आवाजों में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के इस गीत को, और अब आज सुनते हैं आइए इस गीत को।

लावारिस फिल्म में इस गीत को आवाज़ें दी थीं किशोर कुमार आशा भोसले ने, और शब्दों में इस गीत को ढाला था शायर गीतकार जनाब साहिर लुधियानवी ने, और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

आपने सुना अभी लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म फरिश्ता या कातिल फिल्म के इस गीत को। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

सुरेश वाडेकर, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म क्रोधी के इस गीत को। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

उषा उत्थुप और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे प्यारा दुश्मन फिल्म के गीत को। लिखा था अनजान ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी ने। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: आप सुन रहे थे अभी जसविंदर नरूला और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों में फिल्म प्यार की धुन का ये गीत जावेद अख्तर ने लिखा था, शांतनु मोहित्रा का संगीत था और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है साथियों। और अब वक्त हो चुका है हमारे फोन इन कार्यक्रम यानी हेलो आकाशवाणी का। तो आज इस कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं संजय सारस्वत।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। श्रोताओं, अगर आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपनी फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, तो हमें इस कार्यक्रम में फोन करें। इसकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सवेरे 10:30 से, और इस कार्यक्रम का प्रसारण हमारे केंद्र से होता है रविवार से शुक्रवार तक सवेरे 11:00 से 11:30 तक। अगर आप अपने फोन रिकॉर्ड कराना चाहते हैं तो हमें फोन अवश्य कीजिए। हमारा फोन नंबर है 2530135। मथुरा से बाहर के श्रोता हमें 0565 कोड लगाकर फोन करें। फोन कॉल्स आने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर, मैं तिरमिरी कुरासिया कावेरी जी कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह जी का।
0: स्वागत है इंद्रभान जी कार्यक्रम में आपका।
1: ठीक है सर, मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी अच्छे हैं। ड्यूटी परेड में हूँ सर। कल पानी आंधी तूफान खूब आया सर कल।
0: अच्छा,
1: जी सर,
0: तो मौसम अच्छा हो गया होगा अब तो।
1: अभी तो

0: सर बुक किया है और ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, नर्सरी के बीच में हूँ सर, जंगली नर्सरी के बीच में ऊपर मैं खड़ा हूँ, हवा
1: अच्छा,
0: ठंडा ठंडा चल रहा है सर।
1: बड़ी अच्छी
0: तो
1: बात है
0: जी सर, आज मैं अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है नास्तिक,
1: जी।
0: अमिताभ बच्चन जी का फिल्म का गाना है। हे आज का दिन बन जाएगा कल, पीछे न मुड़ के देख प्यारे आगे चल, गाय किशोर कुमार। सबसे पहले गीत आपको, किन नितेश साहब को, पूरे भारत श्रोता को, आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, हेलो एक्टर रेडियो में जुड़े श्रोता को दी रहे हैं सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका फोन करने के लिए। आइए
0: कौन शामिल किए सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुनते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

ए बाबू आगे चल, आज का ये दिन कल बन जाएगा कल, पीछे मुड़के ना देख।

0: हेलो
1: हेलो हेलो सर, नमस्कार
0: नमस्कार।
1: सर। मैं कान्हा बोल रहा हूँ, मंडी चौराहे से। हाँ
0: कान्हा,
1: सर,
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कान्हा जी,
1: आपका सारी टीम बढ़िया है सर।
0: हाँ बहुत बढ़िया है। आप बताएं, आप कैसे हैं, क्या करते हैं आप,
1: बढ़िया है, हम भी अच्छे हैं
0: पढ़ाई करते हैं,
1: सर। पढ़ाई करते
0: कौन
1: हैं,
0: सी क्लास में हैं आप?
1: 5th क्लास में हूँ सर।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। कार्यक्रम भी सुनते हैं हमारा।
1: यस सर, अभी छुट्टी है इसे मैं सुन लेता हूँ।
0: अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। होमवर्क भी मिला होगा छुट्टियों में?
1: मिला था, मैंने कर लिया पूरा
0: अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है आपको?
1: सर। अच्छा लगता है और सब भी लगाते हैं, इसलिए इस वजह से मैं भी लगाता हूँ
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आज क्या फरमाइश रहेगी कार्यक्रम में, बताइए।
1: सर। मेरे को खानदान फिल्म का गाना सुनना, बड़ी देर वही नंदलाला थे आन पड़े जाला।
0: अच्छा, नंदलाला तो आप भी कहलाएंगे, कान्हा आपका नाम है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: नमस्कार सर। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
0: नमस्कार। राधे राधे। कौन बोल रहे हैं सर?
1: मैं सर आपका ब्रज रेडियो श्रोता में त्रियाजराम बोल रहा हूँ सर।
0: आपका स्वागत है
1: उत्तम
0: यादराम जी कार्यक्रम में।
1: गायक कलाकार थी साहब सुमन कल्याणपुर ब्रज रेडियो श्रोता में, तो सब मिलकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तरफ से भी सुमन कल्याणपुर जी को बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि।
1: और सर जो है उनकी यादें नहीं भुला पाएंगे, उनके गाने और उनकी मधुर आवाज ये
0: जी,
1: हम लोगों को सबको साहब पसंद है बहुत
0: उनकी स्मृतियां उनके गीतों में हमेशा हमें उनकी
1: जी।
0: याद दिलाती रहेंगी, हमारे हृदय में बसी रहेंगी।
1: जी सर।
0: जी।
1: तो सर हमें गाना तो सुनवा दो साहब उनकी आवाज में सर, अपने तरफ से। आई
0: आपको सुनवाते हैं ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन
1: क्या
0: करने के लिए।
1: नमस्कार साहब। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर। हम सचिन कुमार बोल रहे हैं, डांस वाले से। बहुत
0: आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: सुनाइए सर, आप बताएं कि नहीं सर?
0: सब बढ़िया है, आप बताएं, आपके यहाँ सब ठीक है परिवार में?
1: यस सर, सब सही है एकदम।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बताइए।
1: हम सुनना चाहेंगे भूली बिसरी एक कहानी, नगीना फिल्म का गाना।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद सर।

0: हेलो,
1: नमस्कार जी। मैं
0: नमस्कार।
1: जवाहर सिंह ग्राम शाहपुर से जिला भरतपुर राजस्थान से कर रहा हूँ।
0: जवाहर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है साहब।
0: सब ठीक चल
1: काम
0: रहा है? काम धंधा आपका
1: धंधा बढ़िया चल रहा है। हाँ
0: अच्छा? कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: हाँ कार्यक्रम लगातार सुनता हूँ।
0: जी। आज बताइए, क्या फरमाइश रहेगी जवाहर सिंह जी?
1: आज फरमाया साहब, एक पुरानी यादों की बारात,
0: जी,
1: कोई
0: कोई सा भी गीत सुनना चाहेंगे उसका,
1: हाँ कोई सा भी गीत आप जमा में। आपको धन्यवाद।
0: आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं जवाहर सिंह जी।
1: हाँ
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति संजय सारस्वत की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था पत्थर के फूल। शब्द रचना रविंद्र रावल की थी, संगीत दिया था राम लक्ष्मण ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म पड़ोसन से। इस गीत को स्वर दिए हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों ने। बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत आर डी वर्मन का है।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म आशिक का ये गाना। बोल लिखे थे समीर ने, संगीत दिया था संजय दर्शन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म बाजीगर का ये गाना। इस गाने को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। संगीत अनु मलिक का है।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म आंखें का ये गाना, और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे विश्व साइकिल दिवस के विषय पर, क्योंकि आज विश्व साइकिल दिवस है। श्रोताओं, पूरी दुनिया में 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए साइकिल चलाना सबसे आसान तरीका है, और एक्सरसाइज करने के लिए साइकिल सबसे ही बेस्ट मानी जाती है। रोज़ सिर्फ आधे घंटे साइकिल चलाने से एक दो नहीं बल्कि अनेकों फ़ायदे होते हैं। तो श्रोताओं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं साइकिल चलाने के, और आपने भी अपने बचपन में साइकिल चलाई है, तो इस विषय पर आप भी हम अपने जो है विचार हमसे साझा करें अपने SMS के माध्यम से, और सुनें अपनी फरमाइश के गीत। और जो सबसे पहले अभी हमें संदेश लिख भेजा है, वो लिख भेजा है अररिया बिहार से निकलने वाले हमारे श्रोता हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा, प्रवीण। अगला संदेश हमारे पास आया है सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली, सुरेश नारंग का। ये संदेश हमें लिख भेजा है दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा ने। अगली फरमाइश रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल और तन्वी बोट का। ये फरमाइश हमारे पास आई है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता की। ये संदेश हमें लिख भेजा है पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा, अविका, साइशा सोनवने ने। ये संदेश छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, पहलाद, राजेंद्र वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपिल की। ये फरमाइश

0: ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी मीनाकारी पुंजराज आकृति आकर्षण जयश्री और इनके सभी संगीत साथियों की। ये संदेश हमारे पास आया है अकोला से के शरद पाचपोर श्रीमती शोभा पाचपोर वैदेही विहान रश्मि अक्षय अभिनय पाचपोर का। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू लक्ष्य मल्होत्रा कोयल मल्होत्रा नानक चंद मल्होत्रा पीयूष सिक्का कोयल और डुगू भाविका सिक्का। ये फरमाइश आई है झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया रीता रजत और मयंक भाटिया की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद आलिया और आयान बाबू। अगला संदेश लिख भेजा है राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी कल्पित और गवेवी गर्मी ने। ये फरमाइश आई है पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन उषा टिल्लू नायक और मधु नायक की। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास करुणा आयुष विवेक आयुषी श्रीवास। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ फिल्म शहनाई का ये गाना।
1: न झटको ज़ुल्फ़ से

और जो अगला संदेश हमारे पास आया है वो आया है मोताला महाराष्ट्र से, लिखने वाले हमारे श्रोता विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी। इन्होंने भी साइकिल के बारे में बताया है कि साइकिल

चलाना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का बेहतरीन, आसान और क्रम प्रभाव वाला व्यायाम है। यह न केवल आपको शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि तनाव कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी मदद करता है। जी हाँ श्रोताओं, जो आपने बताया है वो वाकई बिल्कुल सच बात है। और अगला संदेश हमें लिख भेजा है राजनगर बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, जय, वीरू, कपलेश्वर प्रसाद, भूलिया रानी, संगीता और इनके सभी संगीत साथियों ने। इन्होंने भी लिखा है साइकिल चलाने से शरीर में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। ये फरमाइश हमारे पास आई है जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से लिखने वाले श्रोता रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रिहान। इन्होंने साइकिल के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन साइकिल के ऊपर एक गीत जरूर बताया है जिसकी इन्होंने फरमाइश की है। तो ये फरमाइश हम इनकी ज़रूर पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं और अपने साथियों के संदेश जिन्होंने साइकिल के बारे में और सारी जानकारी हमसे साझा की है। ये आया है संदेश दरियापुर भावली महाराष्ट्र से, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, सुशील, शेरी वर्णे रकोला से, अरुणा बलदेव दामोदर, आदित्य दामोदर। इन्होंने लिखा है साइकिल चलाना शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक बेहतरीन आसान तरीका है। ये तनाव को कम करता है। ये संदेश हमारे पास अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह, जयपाल, विनोदपुरी का। इन्होंने लिखा है कि मैं बचपन से लेकर अब तक साइकिल चला रहा हूँ, बाइक का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ और मेरी आयु 63 साल की है। साइकिल चलाने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे जो है घुटने हैं वो भी ठीक है। तो श्रोताओं, इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात बताई कि इनकी उम्र 63 साल है और इस उम्र पर भी ये साइकिल चला रहे हैं लगातार। तो श्रोताओं, साइकिल चलाने से जो है हमारा शरीर तंदुरुस्त बना रहता है, सही बना रहता है, हमारे घुटने सही काम करते हैं, हमारा पूरे शरीर का जो व्यायाम है वो साइकिल चलाने से पूरा हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा आजकल ज़रूरी है वो है ईंधन की बचत होती है साइकिल चलाने से। अगर आप थोड़ी दूरी पर कहीं जा रहे हैं तो आप बाइक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कार बिल्कुल ना चलाएं बिल्कुल, और साइकिल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकेंगे। तो इसीलिए साइकिल का जो है इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है और अक्सर आप लोग साइकिल का ही इस्तेमाल करें अगर थोड़ी दूरी पर जा रहे हैं तो। और ये संदेश हमें लिख भेजा है बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से लिखने वाले श्रोता मोदी, महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके सभी संगीत साथी। इन्होंने भी लिखा है कि बचपन में साइकिल हमने खूब चलाई है और कई बार गिरे भी हैं, चोटें भी खाई हैं, लेकिन साइकिल चलाना इन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा क्योंकि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य जो है बिल्कुल सही बना रहता है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होती है साइकिल चलाना। अगला संदेश हमारे पास आया है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का। इन्होंने लिखा है साइकिल आज भी सर्वोपरि है क्योंकि इसको चलाने से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है जो हमें बेशुमार बीमारियों से दूर रखती है। अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपको किसी और अभ्यास या योगा की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो हमें किसी और अतिरिक्त योग करने की और किसी अतिरिक्त व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हमारे जो पैरों की नाड़ियाँ होती हैं वो मजबूत बनी रहती हैं जिससे कि पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईंधन की भी बचत होती है श्रोताओं। और आइए अब सुनते हैं ये गीत आप सबकी फरमाइश पर जिसे हमने लिया है फिल्म भाभी से, स्वर नितिन मुकेश, अनुराधा पोडवाल और साथियों के हैं।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी करके तो देखो,
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो।

ये संदेश हमारे पास आया है बुंदेलखंड से लिखने वाले श्रोता बहादुर चक्रवर्ती, राजकुमार अनिरुद्ध और इनके सभी संगी साथी। इन्होंने भी साइकिल के बारे में लिखा है कि साइकिल चलाने के बहुत फ़ायदे हैं, इसमें जितना काम बताएं उतना ही हम कर सकते हैं और इसमें ईंधन की जो है बचत वो बहुत ज़्यादा होती है। और ये संदेश दिल्ली से लिखने वाले श्रोता तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य राजा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशव, रिदान खुराना, इन्होंने लिखा है कि साइकिल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, साइकिल चलाने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये संदेश हमारे पास आया है आदिनाथ वाघ पाटिल बोराला खुर्द से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं और इन्होंने साइकिल के बारे में लिखा है, साइकिल एक हमारी बचपन की यादगार पल हैं। हम बचपन में किराए से लेते थे और पसीना आने तक साइकिल घुमाते थे। साइकिल दुकान वाले से पूछते थे हमारा कितना समय बचा है, अगर 10 मिनट हैं तो हम 2 राउंड और लगा लेते थे साइकिल के। बिल्कुल सही कहा, बचपन की यादें अब आपकी ताज़ा हो रही हैं और सबसे ज़्यादा साइकिल चलाने से जो है हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, ईंधन की बचत होती है, इसलिए साइकिल चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, साइकिल चलाते रहें, आप स्वस्थ बने रहेंगे। और ये संदेश बुंदेलखंड से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और इनके सभी परिवारीजन। इन्होंने लिखा है हमारे पापा ने बचपन में साइकिल दिलाई, हमने आज भी उसे संभाल कर रखा है, अब हमारे बच्चे उसे चलाते हैं, हमने उन्हें साइकिल खरीद के हुई दी हुई है, बहुत अच्छी बात है ये। अगला संदेश यवतमाल से लिखने वाले श्रोता जयराम सिंगड़कर, दिशांत और इनके सभी संगी साथी। इन्होंने भी ऐसा ही कोई संदेश लिखकर भेजा है कि बचपन में हम 1 रुपए में 1 घंटा साइकिल चलाने को मिला करती थी, वो साइकिल का दौर था और रेडियो भी साथ में रहता था। बहुत सही कहा आपने, वो साइकिल का दौर था और आज भी साइकिल का दौर है, आज भी रेडियो का दौर है।

आज भी हमारे पास इतने अच्छे अच्छे आप जैसे श्रोता हैं जो कि नियमित हमारा जो है रेडियो है, हमारे कार्यक्रम है, उसे सुनते हैं, सराहते हैं और अपनी पसंद हमें लिखकर भेजते हैं। ये संदेश मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख सागिर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सैयद तैमूर, शामिर खान और इनके सभी संगी साथी, इन्होंने भी लिखा है, दीदी साइकिल चलाने से हमारा मोटापा जो है कम हुआ है और हर शरीर का जोड़ तंदुरुस्त हो गया है। अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। इन्होंने लिखा है, साइकिल के बराबर कोई योग नहीं है, सारे योग का मिश्रण है साइकिलिंग। तो श्रोताओं, साइकिलिंग करते रहिए, अपने आप को निरोग रखते रहिए और आइए सुनिए ये गीत जिसे गाया है महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।

श्रोताओं, हमारे पास समय सीमित है और इस कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने वाला है, और हम अपने सभी साथियों के जो संदेश हैं उन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं जिन्होंने साइकिल के बारे में लिखा है। एक दो मैसेजों को हम देख लेते हैं। देखिए, आप सबको विश्व साइकिल दिवस की शुभकामनाएं, और साथ ही साइकिल चलाने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम निरोग रहते हैं, इसीलिए साइकिल चलाते रहें। साइकिल चलाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है, जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले ने, हर उम्र में साइकिल जैसी एक्सरसाइज नहीं है, स्वस्थ रहना है तो साइकिल ज़रूर चलानी चाहिए। और ये भी अगला संदेश है, वो भी हमें लिख भेजा है बुलंदशहर से, इन्होंने भी लिखा है कि साइकिल चलाना जो है बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही अच्छा एक योग है। और ये संदेश हमारे पास आया है टैगोर गार्डन से, इन्होंने भी लिखा है कि ननिहाल जाने की खुशी में लोग साइकिल चलाते हैं, वहाँ बहुत ही छुट्टियाँ आ जाती हैं तो सब लोग साइकिल चलाते हैं। और ये संदेश हमें लिख भेजा है जलालाबाद वेस्ट से, इन्होंने भी लिखा है, साइकिल दिवस की अनेकों अनेक शुभकामनाएं, साइकिल चलाने से घुटने ठीक रहते हैं। तो श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का गीत बात और SMS का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। अगला और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। हमारी आज की कलाकार हैं सुंदरी और सखियाँ।

0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं सुंदरी एवं सखियां।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: सुंदरी और सखियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आज आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। कई अन्य लोगों को बचा लिया गया है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों के दल बचाव और राहत कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि त्वरित कार्यवाही से प्रभावित परिसरों से कई लोगों को बचाने और सुरक्षित निकालने में मदद मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
2: मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कॉन्क्लेव में ट्राइबल डेवलपमेंट से जुड़े संस्थाओं और मानव संसाधन के विकास से लेकर के वित्तीय व्यवस्थाओं तक तथा मॉनिटरिंग से लेकर के स्किल स्कीम डिलीवरी तक अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा होगी।
1: भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरे सबसे बड़ा और ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा वैश्विक मानक स्थापित कर रही है और मजबूत नीतिगत समर्थन, नवाचार और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि को गति दे रही है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। यात्रा के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा लगभग 10 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल की पूर्व सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है और वो विभाजन के कगार पर है। टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतुव्रता बनर्जी का दावा है कि उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उनके गुट ने विधानसभा अध्यक्ष रथिंद्र बोस को पत्र लिखकर खुद को टीएमसी के रूप में मान्यता देने की मांग की है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में

0: में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। घरेलू शेयर बाजार में संविधि सूचकांक में आज 0.5% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 558 अंक की गिरावट के साथ 74,092 पर, जबकि निफ्टी 155 अंक फिसल कर 23,329 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे हमारा एक विशेष कार्यक्रम सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। इस कार्यक्रम को हम रात्रि 8 बजे प्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर महिलाओं का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें आज आप सुनेंगे स्वरचित काव्य पाठ, कवित्री होंगी सुधा अरोड़ा। संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे कहानी सपने सच हुए, कहानीकार होंगी प्रिया दीक्षित।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता, बदलते मौसम की कृषि प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, भेंट करता होंगे दीपक गोस्वामी। एक और वार्ता प्रसारित की जाएगी, प्रमुख सब्जियों में पौध संरक्षण के उपाय, जानकारी देंगे डॉक्टर श्याम सिंह।

ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य सुधा। कवि होंगे राम खिलाड़ी स्वदेशी। समय होगा संध्या 7:05।

संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुनेंगे संध्या 7:31 पर। फिल्म संगीत श्रोता रात्रि 10 बजे सुन सकेंगे।

रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आज आप सुनेंगे राग चंद्र कौस में ख्याल गायन। कलाकार होंगे अजय चक्रवर्ती।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बहनों वैसे भी इस समय मौसम में परिवर्तन प्रतिदिन दिखाई दे रहा है। कभी तो बहुत अधिक आंधी तूफान बारिश हो जाती है तो एकदम ठंडक महसूस होती है, तो कभी बहुत गर्मी का एहसास होता है। और यह सब चीज़ें मौसम में परिवर्तन हैं। मैंने मौसम का इस तरह से परिवर्तन होना है, इसकी वजह है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अर्थात पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ही यह सब परिवर्तन दिखाई देते हैं। और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। और इस संरक्षण में हम सभी महिलाएं अपना योगदान कैसे देती हैं, दे सकती हैं? बहनों सदा से ही हम सभी महिलाएं पर्यावरण के संरक्षण में हमेशा से ही योगदान देती आई हैं। आप देखें तो घर की छोटी सी शुरुआत हम दिखाते हैं कि तुलसी का जो पौधा है उसका पोषण हम सभी महिलाएं करती हैं, तरह तरह के वृक्ष लगाती हैं, केले की पूजा करती हैं, पीपल की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करती हैं। यह सभी प्रदर्शित करता है कि हम सभी महिलाएं अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हैं। मैंने सदा से ही इतिहास गवाह रहा है कि हम सभी महिलाओं ने पर्यावरण को बचाने के लिए, उसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस योगदान में न केवल प्राकृतिक संसाधनों की प्राथमिकता, उपभोक्ता और प्रबंधक रही हैं, बल्कि अपनी दूरदर्शिता और पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से भी प्रकृति के संतुलन को बनाया है। इसके हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। बहनों हम बात करें कि 1973 के जो चिपको आंदोलन था, उस आंदोलन में पेड़ काटे जा रहे थे और पेड़ों को बचाने के लिए ही गौरा देवी एक महिला थी चमेली जिले की, उनके नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर उनको कटाई से बचाया था। इसी प्रकार 18वीं सदी में भी राजस्थान की जो अमृता देवी थी, उन्होंने अन्य सभी लोगों के साथ मिलकर पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान तक दे दिया था। वैसे ही बहनों नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी मेघा पाटकर ने नर्मदा नदी पर बन रहे विशाल बांधों को और विस्थापन के खिलाफ महिलाओं को संगठित कर एक सशक्त आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बहनों इस तरीके से महिलाओं का पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वैसे भी हम देखें तो चाहे महिलाएं ग्रामीण हों चाहे शहरी हों, सभी पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। बात करें हम जब महिलाओं, ग्रामीण महिलाओं की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं ईंधन, चारे और जल का प्रबंधन करती हैं, जिससे वे प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग की सबसे बड़ी परोपकार होती हैं। बीज का संरक्षण, जैविक खाद के उपयोग, जल मृदा संरक्षण में भी

महिलाओं का पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण के अनुकूल होता है। घरेलू तौर पर हम बात करें तो आधुनिक दौर में भी महिलाएं घरों में ऊर्जा बचाकर कचरे का पुनर्चक्रण कर पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के चयन में अहम भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ वे घरों में क्यारियां बनाकर पौधे उगाकर सब्जियां लगाकर साथ ही साथ घरों में फूल पत्ते वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाकर बेलें लगाकर, तो इस तरीके से सभी महिलाएं पर्यावरण के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और इसी योगदान की वजह से उनकी जो बगिया होती है वो महकती रहती है फूलों से पत्तों से।

बहनों, गर्मी का जो मौसम है इस समय पूरे चरम पर है, लेकिन आप देखें इस अधिक मास में, इस गर्मी के मौसम में तपती धरती पर लोगों की आस्था कम नहीं रही। इस गर्मी में भी लोग परिक्रमा लगा रहे हैं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ। आप जहाँ देखें वहीं भीड़ भाड़ आपको नज़र आ रही है। चाहे आप वृंदावन की परिक्रमा देखें, चाहे आप गिरिराज जी की या फिर 84 कोस की यात्रा, लोगों की श्रद्धा भक्ति में बिल्कुल भी कमी नहीं है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस गर्मी को, इस तपन भरी गर्मी को मात देते हुए लोग पूरी श्रद्धा के साथ भक्ति में होते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। मैनु गर्मी हो या बरसात हो, यदि हमारी भक्ति सार्थक है तो ये मौसम हमारा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैनु ऐसा ही आपके लिए आज लेकर आए हैं एक काव्य पाठ, जिसे प्रस्तुत करेंगी सुधा अरोड़ा।

गर्मी के ऊपर आपको एक रचना सुनाती हूँ कि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी अपना रूप दिखा रही है, पर ये गर्मी किस तरह से पड़ रही है और क्या असर हो रहा है इसका और क्या असर होएगा। कि धरा में कटाव देखा, सिलाएं तपन लगी, पैर भी जलन लगे, आई ऐसी गर्मी। धरा में कटाव

मोड़ी खेत खलियान सूखे, सूरज आग उगले गर्मी ही गर्मी। नदियों ने धार मोड़ी खेत खलियान सूखे, सूरज आग उगले गर्मी ही गर्मी। मानव में नमी नहीं पर्यावरण।

गर्मी। अब बहनों आपके सामने एक ब्रज महिमा का रचना पढ़ने जा रही हूं कि सबसे प्यारा है ब्रज धाम जग

महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा वेद पुराण बखानी, ब्रज को कोट से कोट प्रणाम, सबसे प्यारा है ब्रज धाम, जग से न्यारा है ब्रज धाम।

वृंदावन, धन्य कुंड धन सप्त सरोवर, धन्य कुंड धन सप्त सरोवर, धन श्री

ब्रज को कोटि से कोटि प्रणाम, सबसे प्यारा है ब्रज धाम, जग से न्यारा है ब्रज धाम। मनवा चल रे ब्रज धाम तहां, यहाँ बाहर से दूर दूर से यात्री आते रहते हैं कि मनवा चल रे ब्रज धाम तहां, तुझे बिहरत श्यामा श्याम मिलेंगे, भंग तरंग में चक चका चक डूबे हुए।

ब्रज को कोटि से कोटि प्रणाम, सबसे प्यारा है ब्रज धाम, जग से न्यारा है ब्रज धाम।

अभी बहनें सुन रही थी सुधा अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत ये काव्य पाठ। मैनू हम अभी पूर्व में बात कर रहे थे कि हम महिलाएं पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार कर सकती हैं। तो मैनू पर्यावरण संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, साथ ही साथ जो ऊर्जा है उसकी हम बचत कर सकते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल डीजल की जो खपत है उसको कम कर सकते हैं, अर्थात वाहनों का उपयोग हम सभी महिलाएं भी करती हैं तो उसकी बचत कर सकती हैं। जहाँ तक हो सके आप पैदल चल सकती हैं, पैदल चलने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। छोटी छोटी दूरी के लिए आप वाहन का उपयोग न करके पैदल चलें, और यदि हो सके तो आप साइकिल का उपयोग कर सकती हैं। बहनों, साइकिल का उपयोग करने से क्या होगा कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और बहनों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 3 जून है और आज हम सभी मना रहे हैं विश्व साइकिल दिवस। बहनों, साइकिल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। मैनू साइकिल को हम इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। साइकिल परिवहन का एक किफ़ायती हिस्सा है और भरोसेमंद भी है और स्वच्छ साधन भी है। ये किसी भी प्रकार को प्रदूषण को नहीं फैलाती है।

और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहतरीन व्यायाम हमारे शरीर को कराती है। मैनू हम जीवन काल में साइकिल को हम सबसे पहला एडवेंचर मानते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते थे, बच्चे थे, तब हमें साइकिल का बहुत शौक था और साइकिल चलाते समय हम गिरते भी थे, फिर चढ़ते भी थे। और बचपन में साइकिल हम शौकिया तौर पर सीखते थे, फिर धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करने लगे, और कई लोग तो साइकिल का उपयोग अपने काम पर जाने के लिए भी करते हैं। लेकिन वक्त के साथ साइकिल की जो उपयोगिता है वह बदल गई है और इसका महत्व भी बदल गया है। क्योंकि बहनों, साइकिल जो है, साइकिल का जो दौर था वह 1960 से 1990 तक काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद समय में परिवर्तन हुआ और आज साइकिल सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर ही हम सभी प्रयोग करते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ साइकिल का जो उपयोग है एक एथलेटिक्स द्वारा भी किया जाता है। मैनू आज साइकिल दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आइए बात करते हैं। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को यह साइकिल दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था। साइकिल दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका में मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेस जोक सिविल्सकी ने याचिका दी थी, और इसके बाद सिविल्सकी और उनके साथियों ने प्रचार प्रसार किया, जिसके बाद 3 जून को साइकिल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है और इसमें पेट्रोल की खपत भी नहीं होती है। इसमें पेट्रोल की बचत होती है, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह सुरक्षित है। एक्सरसाइज करने के लिए एक बेस्ट साधन भी है। रोज साइकिल चलाने से हम फैट को कम कर सकते हैं, हमारी बॉडी फिट रहती है और हमारी जो इम्यूनिटी है वह भी बढ़ती है। साइकिल चलाने से जोड़ों के दर्द नहीं होता है और साइकिल चलाने से ब्रेन पावर बढ़ता है। तो बहनों, साइकिल के इतने सारे फायदे हैं, तो लीजिए सुनवाते हैं आपको। अब एक्सरसाइज करते से हम गीत भी सुने तो हमारा मूड भी फ्रेश रहेगा और हमारा शरीर भी।

इस गीत के साथ ही घड़ी की सुई भी हमें संकेत कर रही है कि वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की हम आपसे अनुमति लें। तो वनिता लोक कार्यक्रम समाप्त करने की अंतिम गौतम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था शुक्रिया। इस गीत को लिखा था वर्मा मलिक ने, संगीत दिया था अनु मलिक ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म सिर्फ तुमसे। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, आवाज़ें अमीन साबरी और फरीद साबरी की हैं।

अमीन साबरी और फरीद साबरी के गाए फिल्म सिर्फ तुम के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: examine Aravali definition. Senior Congress leader D.K. Shivkumar to be sworn in as Chief Minister of Karnataka this afternoon. India becomes world's second largest solar growth market, surpasses USA in annual solar capacity additions. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 60 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारत सौर ऊर्जा विकास के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बना। वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ा और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि 8 दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली के मालवीय नगर में आज सुबह करीब 9 बजे एक होटल में भीषण आग लग गई। इसके बाद दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कैट एम्बुलेंस सेवा और अन्य आपातकालीन एजेंसियों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। दिल्ली पुलिस के अनुसार अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भेजा गया है। 8 दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि बचाव और तलाश अभियान अभी भी जारी है और सभी संबंधित एजेंसियां मौके पर तैनात हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
3: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना में हुई जानमाल के हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि अधिकारी पीड़ित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह घटना बहुत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को इस दुख की घड़ी में शक्ति और साहस प्रदान करने की भी कामना की। गृहमंत्री ने बताया कि स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और प्रभावित परिवारों को सभी आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में रहने वाला जनजातीय समाज सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है और इन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक गांव और व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए।
4: जनजातीय समुदाय के अनेक गांव और बस्तियां दूर दराज के क्षेत्र में जंगलों और पहाड़ों तले इलाके में होते हैं। ऐसे इलाकों को विकास की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ना आपका कर्तव्य है। अंतिम गांव और अंतिम बस्ती के अंतिम घर तक विकास कार्यक्रम को पहुंचाना आपका उत्तरदायित्व है।

सूचना प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मिजोरम में जनता से राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में विकसित भारत पहल के तहत 2047 तक एक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में योगदान करने का आह्वान किया है। राज्य के कोलाबिस जिले में सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान श्री मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को उच्च प्राथमिकता दे रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथिन्द्र बोस को सौंपा गया है, जिसमें बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। इस गुट ने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज से विधायक अखरुजमान को मुख्य सचेतक नामित किया है। एंटाली से संदीपन साहा और कस्बा से जावेद खान को उपनेता के रूप में प्रस्तावित किया गया है। पश्चिम बंगाल की सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा योजना का आज औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। शहरी विकास, महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने नबन्ना में इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। पहले चरण में लाभार्थियों को आज से उनके बैंक खातों में 3,000 रूपये मिलने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन के अधिकारियों के अथक प्रयासों से ही योजना का संचालन तुरंत शुरू करना संभव हो पाया है। पश्चिम बंगाल में मॉनसून से पहले चलाए जा रहे नियमित सफाई अभियान के दौरान कल शाम कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में नोटों के बंडल बरामद किए गए। एक बंद कमरे में दो पुराने सूटकेसों में रखे गए ये नोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त अवस्था में मिले। भाजपा विधायक सजल घोष ने आरोप लगाया है कि यह कमरा एक स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल वो अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता था। हालांकि पार्टी सदस्यों ने इन दावों को निराधार बताया है। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता डीके शिवकुमार को आज शाम बेंगलुरु में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यपाल थावरचंद गहलोत लोकभवन में उन्हें 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री के रूप में तथा 12 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला, मजदूर, लेखक, अभिनेता, प्रमुख व्यवसायी तथा उद्योगपति शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए प्रस्तावित मानदंड पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को काफी हद तक कम कर सकते हैं और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन या अन्य गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लेख को साझा किया है, जिसमें लद्दाख में खुल रहे नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में पाई जाने वाली एक खास बेरी नवोन्मेष और अवसरों की कहानी लिख रही है। उन्होंने कहा कि यह लेख बताता है कि कैसे उद्यमिता और मूल्यवर्धन लद्दाख में समृद्धि के नए द्वार खोल रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। भारत ने सौर ऊर्जा के स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय 155 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे देश के 50% गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को समय से पहले पूरा करने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जैसी प्रमुख पहल लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। घरों पर लगे सौर पैनल से 40 लाख से अधिक परिवारों को बिजली मिल रही है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश की सौर ऊर्जा विकास गाथा

0: वैश्विक मानक स्थापित कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी पहली नीति के अंतर्गत एक प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के बीच विशेष और बहुआयामी संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए नई सरकार के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक है। ईरान ने कल बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर अमरीकी सेना के हमले के बाद हुए इस घटनाक्रम से तनाव और बढ़ गया है। इससे क्षेत्रीय स्तर पर संघर्ष विराम को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी केंद्रीय कमान के अनुसार अमरीकी सेना द्वारा ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे एक तेल टैंकर को निष्क्रिय करने के बाद यह तनाव शुरू हुआ है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलफायर मिसाइल ने जहाज के इंजन पर हमला किया। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि अमरीका ने केशम द्वीप के दक्षिण में स्थित उनके एक संचार केंद्र को निशाना बनाया था। जवाब में ईरान ने बहरीन में अमरीकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय और कुवैत में एक सैन्य हवाई अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन दागे। हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संपर्क जारी है और कूटनीति के विफल होने की खबरों को खारिज कर दिया। हालांकि मसौदा समझौते पर बातचीत अभी भी अधूरी है क्योंकि दोनों पक्षों के नेतृत्व ने अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण अस्थिर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। नीतिगत निर्णय शुक्रवार को घोषित किया जाएगा। सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का सोना बेचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांचाई इकाई ने कहा कि समाचार एजेंसी का यह दावा फर्जी है। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने सूचित किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत मतदाताओं की पूर्व मैपिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर 7 जून को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। अब तक राज्य में 90% से निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 84.62% पूर्व SIR मैपिंग हो चुकी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि लगभग 40,000 छात्रों ने सफलतापूर्वक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा कर दिए हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी समस्या के पूरी कर ली गई है। आज विश्व साइकिल दिवस है। इस साल का विषय है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिल चलाने और एक स्वस्थ तंदुरुस्त और हरित राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। साइकिलिंग केवल एक व्यायाम या एक दिन की हॉबी नहीं बल्कि स्वस्थ और सशक्त जीवन शैली की पहचान है। यह हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। जितना अधिक हम साइकिल का उपयोग करेंगे उतना ही प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल डीजल की बचत के माध्यम से देश को भी लाभ मिलेगा।
0: इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आज पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आयरलैंड के नहन गुवेन से और आयुष शेट्टी चीन के वेन होंगयांग से मुकाबला करेंगे। लक्ष्य सेन पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को आज मलेशिया के खाई शिंगकांग और आरोई ताई ने 6-11 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा का सामना जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा से होगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों ओडिशा, कोंकण, गोवा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आंधी आ सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। पश्चिम बंगाल विधानसभा से निष्कासित विधायक ऋतव्रता बनर्जी के लगभग 58 विधायकों के समर्थन का दावा करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल मची। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा के पुनर्विचार के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन

0: किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार अब से कुछ देर में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एचएस प्रणय और आयुष शेट्टी आज पुरुष सिंगल्स मैच खेलेंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म चिराग का ये गीत। इस गीत को लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, फिल्म छोटी सी मुलाकात।

हसन कमाल के लिखे इस गीत को संगीत दिया था रवि ने, स्वर महेंद्र कपूर भूपेंद्र के थे, फिल्म का नाम था दहलीज। और आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म बरसात की रात का ये गाना। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया है रोशन ने।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। इस गीत के बोल लिखे थे मजरूर सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म नया दौर का ये गाना। और इस गाने के बोल लिखे थे साहिर लुधियानी में, साहिर लुधियानवी ने, संगीत ओ पी नैयर का था। आकाय और इसी के साथ ही सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:23 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज विश्व साइकिल दिवस है। साइकिल को हम जिंदगी का सबसे पहले एडवेंचर कह सकते हैं। गिरते पड़ते हम साइकिल चलाना सीखते हैं। उम्र के अनुसार साइकिल का भी अलग अलग महत्व है। बचपन में साइकिल शौकिया तौर पर चलाते हैं, फिर धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं, तो कई लोग साइकिल से अपने काम पर जाते हैं।

लेकिन वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी बदल गई और महत्व भी बदल गया। एक वक्त था जब साइकिल को परिवार में साधन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर प्रयोग की जाती है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 तक काफ़ी अच्छा चला। इसके बाद समय परिवर्तित हो गया। आज एक्सरसाइज के साथ ही साइकिल का उपयोग एक एथलेटिक्स के द्वारा भी किया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि ये क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या खासियत है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा हर साल 3 जून को ये दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था। साइकिल दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव अमेरिका के मोंटगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लसजिक सिमलिस्की ने की थी। इसके बाद सिमलिस्की और उनके साथियों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। इसका महत्व भी बहुत है जिसको मनाने के लिए कि साइकिल सबसे सस्ता वाहन है। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण दृष्टि से देखें तो ये बहुत सुरक्षित है और एक्सरसाइज के लिए भी ये सबसे उत्तम है। साथ ही आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। साइकिल चलानों के अनेक फायदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइकिल उपयोग में लाई जाती है आजकल वो है रोज़ साइकिल चलाने से फैट जल्दी कम होता है, बॉडी फिट रहती है और लगभग 30 मिनट की साइकिलिंग से हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम अच्छा तो होता ही है, साथ ही इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाते हैं। इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। एक उम्र के बाद घुटने की समस्या ना हो इसके लिए साइकिल रोज चलानी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार के जोड़ों में जमाव नहीं हो और उसमें दर्द भी ना हो। साइकिल चलाने से दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है, ब्रेन पावर बढ़ता है और लगभग 15-20% अधिक दिमाग सक्रिय होता है। आज के दौर में यदि देखा जाए तो ये बचत की नज़र से ये काफ़ी अच्छा और सस्ता साधन है और आज के हमारे यूथ जो फिटनेस को और अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ध्यान देते हैं, उनके लिए ये एक इस समय साइकिलिंग जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए और एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि न केवल उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा रहा है बल्कि पर्यावरण को भी बहुत सहयोग कर रहा है।

0: साथियों, अगली चर्चा से पहले आइए सुन लेते हैं प्रिया दीक्षित से ये कहानी, सपने सच हुए।
1: बंसल जी के परिवार में उनकी 5 बेटियां थीं, जिसमें सबसे छोटी थी अपेक्षा। उसकी चारों बहनें उससे बड़ी थी। पिताजी की कपड़ों की दुकान थी और माता भी छोटे मोटे काम करके घर का खर्च निकालने में पिताजी की मदद करती थी। पिता को केवल एक ही दुख था कि उनका कोई बेटा नहीं है, परंतु घर की सबसे छोटी बेटी अपेक्षा सबकी लाडली थी। उसके चारों बहनें दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। अपेक्षा ने बहुत छोटेपन से ही एक सपना देखा था कि वह बड़ी होकर हवाई जहाज उड़ाएगी। एक बार उसके चाचा जी उनके घर आए तो बातों बातों में अपेक्षा ने बताया कि वह बड़ी होकर हवाई जहाज उड़ाना चाहती है। चाचा जी उसकी बात सुनकर बोले कि बेटी, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है,

0: और तुम तो पूरे समय खेलती रहती हो। चाचा जी की बात सुनकर अपेक्षा बोली, ठीक है चाचा जी, मैं बहुत पढ़ूंगी और बड़े होकर हवाई जहाज उड़ाऊंगी। शाम को चाचा जी चले गए। रात में खाने के समय वह पिताजी से बोली कि पिताजी, मैं स्कूल जाकर पढ़ना चाहती हूँ। पिताजी ने उसकी बातों को हल्के में लिया और कहा, अरे पागल, लड़कियां भी कभी स्कूल जाती हैं? तेरी बहनों को क्या तूने कभी स्कूल जाते हुए देखा है? लड़कियां तो घर का काम संभालने के लिए होती है। अगर तेरी बहन भी स्कूल चली जाती तो घर के काम कौन करता? पिताजी की बात सुनकर अपेक्षा जोर जोर से रोने लगी और बोली, नहीं, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मुझे हवाई जहाज उड़ाना है। यह कहती हुई वह खाना बिना खाए ही सोने चली गई। उसकी माँ पिताजी से बोली कि बेटी अभी छोटी है और घर की लाडली भी, इसलिए तो पढ़ने की जिद कर रही है। आप इसका दाखिला क्यों नहीं करवा देते? जब पढ़ते पढ़ते थक जाएगी तो खुद ही पढ़ने की जिद छोड़ देगी। बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पिताजी का दिल पसीज गया। वे बोले, चल आज ही तेरा दाखिला करा के आता हूँ स्कूल में। अपेक्षा ने नई फ्रॉक पहनी और उत्साह भरे कदमों के साथ पिताजी के संग चल पड़ी। उस छोटी सी बच्ची के उत्साह को देखकर विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने उसे तुरंत दाखिला दे दिया। वह अगले दिन से ही स्कूल जाने लगी। वह स्कूल में मन लगाकर पढ़ती और घर आकर बार बार अभ्यास करती। ऐसा करते करते 10-12 साल बीत गए। वह अपनी 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले को टॉप कर गई। आज उसकी पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे और उनका सर गर्व से ऊंचा था। आज उन्हें अपनी बेटी किसी के बेटे से बेटे लग रही थी। उन्हें इस बात का दुख भी था कि क्यों उन्हें पहले यह बात समझ में नहीं आई, क्यों उन्होंने अपनी सभी बेटियों को पढ़ने नहीं दिया। इधर अपेक्षा की सभी बहनों की शादी हो गई थी। अपेक्षा की कामयाबी देखकर उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा, जिससे वे भी पढ़ लिख सके। यह तो एक छोटी सी सफलता थी जिसने उसका उत्साह दुगना कर दिया था। अपेक्षा के सामने उसका सपना बड़ा स्पष्ट था। उसे अभी बहुत मेहनत करनी थी। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस सदमे से उसके पिताजी की तबीयत भी खराब हो गई। घर की सारी जिम्मेदारियां अब अपेक्षा के कंधों पर थीं। वह अभी और पढ़ना चाहती थी, जो अब संभव ना था। वह पिताजी के कपड़ों की दुकान संभालती और घर आकर अपने पिताजी की सेवा करती। वह बहुत दुखी थी कि अब उसका सपना सच नहीं हो पाएगा। दिन बीतते गए और उसके हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखना बंद कर दिया। इसी बीच अपेक्षा की सबसे बड़ी बहन अपने बेटे को लेकर घर आई। उन्होंने अपेक्षा से आगे पढ़ने के बारे में पूछा। तब अपेक्षा ने कहा, दीदी, आप तो जानती ही हैं कि पिताजी की तबीयत कितनी खराब रहती है और ऊपर से दुकान का काम। अब आप ही बताएं कि मैं कैसे पढ़ूं। दीदी अपेक्षा की मदद तो करना चाहती थी, पर वह भी ज्यादा दिनों तक पिताजी के घर नहीं रुक सकती थी। उनके ऊपर भी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां थीं। अब जब कुछ दिनों के लिए दीदी घर आई हुई थी तो वह ही घर का काम कर देती थी। अब अपेक्षा दुकान का काम निपटाती और घर आकर दीदी के बेटे को पढ़ाती। एक दिन वह रोज की तरह अपनी दीदी के बेटे को पढ़ा रही थी, तभी उसने कहा, मौसी, आज मुझे आप अब्दुल कलाम जी की कहानी पढ़ा दीजिए। अपेक्षा उसको कहानी समझाने लगी कि कलाम जी दिन में अखबार बेचा करते थे और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। बाद में वे देश के राष्ट्रपति बने। अपेक्षा का सपना फिर उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने सोचा कि जब अखबार बेचकर कोई अपना सपना पूरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अब उसने अपनी योग्यता के बूते पर विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लिया। उसने प्राइवेट पढ़ाई करी। दिन में वह दुकान संभालती और रात में पढ़ाई करती। 4 साल बाद जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो तत्काल ही उसे हवाई जहाज उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा। आज वह हवाई जहाज उड़ाती है। अगर उसने कठिनाइयों के सामने हार मान ली होती तो उसका सपना पूरा नहीं हो पाता। उसका सपना सच हो गया था।
1: सपने सच हुए। साथ ही सुन रहे थे प्रिया दीक्षित से यह कहानी। और अब मित्रों बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवर्धित ऋण सघनता के विषय में, यानी ऑगमेंटेड क्रेडिट इंटेंसिटी के विषय में, जिसका अर्थ है व्यावसायिक विस्तार, उत्पादन और विकास के लिए वित्तीय ऋणों की उपलब्धता और उपयोग में वृद्धि, जो कि ये

तरलता बढ़ाता है, जिससे उद्योग, कृषि और सेवा क्षेत्रों में निवेश व रोजगार के अवसर तेजी से पैदा होते हैं। ये अवधारणा अर्थव्यवस्था को इस प्रकार प्रभावित करती है। पर्याप्त ऋण सघनता व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और विनिर्माण को नई तकनीक, मशीनरी और बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान करती है। उपभोक्ता की मांग में भी वृद्धि करती है। कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होने से उपभोक्ता अधिक वस्तुएं, जैसे कि आप देखेंगे कि वाहन है, घर, उपकरण खरीदते हैं, जिससे बाजार में उत्पादों की बिक्री और मांग बढ़ जाती है। रोजगार और आय का सृजन होता है। जब कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों को अधिक ऋण मिलता है तो उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जो आर्थिक विकास दर को गति देती है और रोजगार उत्पन्न करती है। सरकार इस सघनता को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों और किसानों तक औपचारिक ऋण पहुंचाती है। भारत में ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख पहल और योजनाएं कार्यान्वित है, जिसमें से प्रमुख है मुद्रा लोन योजना। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है और आप इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर जाकर विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी योजना CGDF MSE छोटे व्यवसायों के बिना किसी भी कोलेटरल फ्री के 2 करोड़ तक का ऋण सुनिश्चित करती है। और सबसे प्रमुख और कारगर जो है वो है PM स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कार्यशील पूंजी और डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन करती है। PM स्वनिधि भारत की अनाधिकारिक शहरी अर्थव्यवस्था में काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को सहायता देने वाली एक बड़ी पहल के तौर पर उभरी है। बिना किसी गारंटी के ऋण देने के अलावा इस योजना ने डिजिटल तरीकों को अपनाने का बढ़ावा दिया है, संस्थागत ऋण तक पहुंचने को बेहतर बनाया है और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को भी बढ़ाया है। वर्ष 2020 में शुरू होने के बाद से अब तक ये 1.12 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल से शहरों और कस्बों में 75 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इस योजना के तहत 17,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऋण दिए गए हैं। इसका असर न सिर्फ सरकारी आंकड़ों में दिखता है, बल्कि उन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजर आता है, जो अपनी आजीविका को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना रहे हैं। किसी भीड़ भाले बाजार में सब्जी बेचने वाला और किसी व्यस्त दफ्तर के बाहर चाय बेचने वाला, ये भारतीय शहरों में आम नजारे हैं। गलियों में घूमकर फल बेचने वाले और सड़क के किनारे फुटपाथ पर जूते ठीक करने वाले भी रोजमर्रा की शहरी जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरी हैं। ये लाखों रेहड़ी पटरी वाले मिलकर हर दिन भारत की शहरी अर्थव्यवस्था को चलाते रहते हैं। वे स्थानीय बाजारों और आस पड़ोस की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखते हुए किफायती सामान और जरूरी सेवाएं देते हैं। हालांकि औपचारिक ऋण तक उनकी पहुंच बहुत कम थी, जिसकी वजह से कई विक्रेताओं को बहुत ज्यादा ब्याज दरों पर अनौपचारिक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। इसी मुश्किल को दूर करने के लिए जून 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई। ये अपनी तरह की पहली सूक्ष्म वित्त माइक्रो क्रेडिट पहल थी, जो रेहड़ी पटरी वालों पर केंद्रित थी और जिसे सरकार की क्रेडिट गारंटी का सहारा मिला हुआ था।

इस योजना का मकसद रेहड़ी पटरी वालों को स्वरोजगार, स्वावलंबन और स्वाभिमान देना था। आज पीएम स्वनिधि सिर्फ एक ऋण देने वाली समान योजना से कहीं आगे बढ़कर एक देशव्यापी आंदोलन बन गई है, जो भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, डिजिटल दुनिया से जोड़ने और सामाजिक सुरक्षा देने का काम कर रही है।

अभी श्रोता सुन रहे थे युववाणी कार्यक्रम FM 102.2 MHz पर, यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। छह बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इससे रामेश्वर

0: और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉ जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में उथल पुथल के बीच राजनीतिक घटनाक्रम तेज हो गया है। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा करते हुए 58 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार 58 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र अध्यक्ष रथेंद्र बोस को सौंपा गया है। इसमें ऋतव्रत बैनर्जी के गुट को वास्तविक तृणमूल कांग्रेस के रूप में मान्यता देने की मांग की गई है। उधर कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और उम्मीद है कि समझौता अगले कुछ सप्ताह में अंतिम रूप ले सकता है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की भारतीय जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। समय रहेगा आज रात 8 बजे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा, जिसमें आज मिट्टी पानी की जांच जरूरी है, साथ ही जल को संरक्षण करें चर्चा करेंगी ममता रानी। वार्ता होगी प्रमुख सब्जियों में पौधे संरक्षण के उपाय। वार्ताकार होंगे डॉक्टर श्याम सिंह। ओबी आधारित भेंट वार्ता होगी बदलते मौसम कृषि प्रबंधन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत और आपसे भेंट करेंगे दीपक गोस्वामी। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्म भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण होगा आज सायं 6:45 पर। शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में ब्रज काव्य सुधा में श्रोता सुनेंगे राम खिलाड़ी स्वदेशी का काव्य पाठ। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहाने प्रसारित किया जाएगा संध्या 7:31 पर। जित पर संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा 9:15। फिल्म संगीत श्रोता सुनेंगे रात 10:00।

देश कान का समय रहेगा अब से कुछ देर बाद संध्या 6:10, रात 8:35। रात 10:30 पर श्रोता सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में आज अजय चक्रवर्ती का ख्याल गायन। हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 4 जून दिन में 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। श्रोताओं, यदि आप टीबी, अस्थमा एवं श्वास से संबंधित समस्या जैसे कोपिड, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, धूलभिट्टी, पालतू जानवर के बालों से एलर्जी, वायरल संक्रमण या फेफड़ों की सूजन, टीबी के कारण सांस की समस्या आदि के समाधान के लिए तो पूछिए सवाल डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 4 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे। सूचना समाप्त हुई। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति पर कृष्णा।

सत्यकाम विद्यालंकर की शब्द रचना अभी आपने सुनी संभे स्वरों में FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ममता रानी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारे राम राम। भैयाओ देखो मौसम तो चोखो है गोए, हाल तो ऐसे बादल आ जामते हैं और ऐसी गर्मी पड़न लगते हैं। तो भैया ये तो मौसम है, परिवर्तन प्रकृति को नियम है, बिल्कुल सही बात है, पर हमें और आपको भी अपनी सोच को बदलना है। कैसे कि जो हमारे किसान भैया हैं और उनको अपनी माटी और पानी की जो खेत के लिए बहुत ज़रूरी है, बाकी लिए आपको कहाँ करना है भैया, थोड़ा सा काम करना है, छोटा सा काम, एक

0: मैं कहते मट्टी के काज है कि जो आपको खेत है ना, वह खेत के चारों कोनन में ते माटी निकाल लेनी है, ठीक है। काय के काज है, जांच के काज है, जांच करवे के काज है आपको, बाको कहाँ भेजना जो बताएंगे भैया। वो पहले वह झोरा में लेके और मट्टी को चारों कोनन में ते 6-6 इंच गहरो गड्ढे में ते निकाल के भर लियो, ठीक है। जब वो भर जाए तो वहां में एक पर्ची लो, पर्ची पे अपनो नाम, अपने पिताजी को नाम, अपनो खेत खसरा खतौनी जो हतकाए गांव को नाम जरूर लिख दियो, और अपनो मोबाइल नंबर हो तो और ही बढ़िया है भैया, और अपने जिले को नाम जरूर लिख दियो। फिर पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके अपनी या मृदा स्वास्थ्य केंद्र पे चले जाओ भैया, और निःशुल्क जांच होते हैं, कछु खर्चा ना करनो, और कौन से तत्व की कमी है जी आपको पूरी पक्की जानकारी देंगे विशेषज्ञ, पक्की जानकारी मिलेगी लिखित में, और आ जाते आपको जी पता चल जाएगी माटी में कौन से तत्व की कमी है, बाकू आप पूरा करियो, विशेषज्ञ सलाह दे देंगे, और वो ही फसल लीजो कम लागत में ज्यादा उत्पादन होएगो भैया। बात रही ना बढ़िया, काम की जरूरी बात है भैया। और देखो जरूरी बात एक और है, आज कल का है मैं कह रही ना मौसम की बात, मौसम बदल रहे हो है। कृषि के क्षेत्र में हूँ, हमें जामे नई नई तकनीक से अगर हम जुड़ेंगे ना है, जानकारी ना रखेंगे तो हमारी खेती चोखी बढ़िया ना होगी। तो जाके लें काय बढ़िया जो विशेषज्ञ हैं, जिनमें है काय जो हमारे विशेषज्ञ हतकाए, जिनने बहुत ज्यादा एक एक चीज पे रिसर्च करो है, जानकारी करी है ना, बिन के पास हम जाएंगे और जानकारी लेंगे। और अब तो ऐसो है भैया, देखो हम बैठे ही बैठे आपको जो कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत जरूर सुनवा देते हैं, तो विशेषज्ञ की ही हम आपको बातचीत सुनवाएंगे। बाको विषय होगा बदलते मौसम में कृषि प्रबंधन, जो अब समय हमारा चल रहे हो कृषि में हम कहाँ कार्य कर लें। तो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, और इनसे बातचीत है दीपक गोस्वामी की, सुनो भैया।
1: किसानी का जो कार्य है यानी खेती को जो कार्य है या कार्य में बहुत ही मेहनत है, लेकिन मेहनत तभी साकार हो गए जब वह मेहनत के पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होए, और संग ही संग हमें अपनी खेत की माटी की जानकारी होए, खेत के पानी की जानकारी हो, और कौन सी फसल हमें कब लगानी है या की जानकारी होए। यही विषय में आज हम आए हैं कृषि विज्ञान केंद्र मथुरा के विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत के पास। डॉक्टर साहब से आज जो हम जानकारी लेना चाहेंगे वो विषय है कि हमारे मथुरा के जो किसान हैं, या समय हमारे मथुरा को जो तापमान है वो बहुत ही ऊंचो है, यानी गर्मी बहुत है। ऐसी गर्मी की देखते भाई आगे खेत की जो हमें तैयारी करनी है, हमारी खेती अच्छी होए, लागत कम लगे, मुनाफा अधिक होए, और हमारी मेहनत कम लगे, ऐसे विषय में हम खेती की प्रबंधन विषय पे यानी खेती की तैयारी जो हमारी आने वाली चुनौती है इनसे कैसे अपने आप को तैयार करें, यह विषय पे हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत। राम राम डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहें कि हमारे मथुरा जनपद के जो किसान हैं वे अपनी खेत की जो आगे आने वाली योजना है वे कैसे तैयार करें, और या गर्म मौसम की चुनौती को खारे पानी की समस्या से कैसे अपने आप को तैयार करें, अपनी खेती में कैसे अधिक उत्पादन ले सकें।
2: जी नमस्कार सभी किसान भाइयों को। देखिए जो आजकल है बदलते मौसम में जो वर्तमान समय में किसान भाई क्या कर सकते हैं, देखिए जो मौसम का आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष एक डिग्री 2 डिग्री तक बढ़ रहा है, और इस तरह से बढ़ रहा है जिससे हमारी फसलों को डायरेक्ट मतलब सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जमीन की सतह पर जो हमारा वाष्पीकरण होता है पानी का वो लगभग लगभग आधा इंच से लेकर 1.5 इंच तक का होता है। जैसा पानी अगर आपको मिल जाए, अगर तालाब की बात करें तो देखा होगा 1 इंच पानी प्रतिदिन उड़ जाता है वाष्पीकरण से। यही हाल हमारे खेतों में होता है। हम एक सिंचाई लगाते हैं और कह देते हैं कि साहब फसलों को हमने सिंचाई दी, लेकिन दिक्कत का अधिक तापमान होने से हमारी जो जमीन में जीवांश मात्रा कम होने के कारण खेत में न तो तापमान सहने की क्षमता है, ना अधिक पानी सहन करने की क्षमता है। अगर कहीं अतिवृष्टि हो गई है, अधिक वर्षा हो गई है, तो फसल के गलने की भी संभावना ज्यादा रहती है।

0: और फसलों में सूखा सहन करने की भी क्षमता कम है। इसी तरह तापमान का अगर ज्यादा झटका आ गया तो फसल तो हमारी 3-4 महीने की है, तो पूरा ये क्या करती है कि सहन शक्ति नहीं है कि दोबारा ये सर्वाइव करे। अगर एक बार डाउन हो गई यानी फसल को नुकसान हो गया तो सर्वाइबिलिटी बहुत कम होती है। तो किसान भाइयों से यही निवेदन है कि देखिए एक कहावत है ना, देसी अगर खाएंगे तो झटके कम लगेंगे, और लेकिन थोड़ा प्रोडक्शन जो होगा वो गुणवत्ता युक्त होगा। नहीं तो आजकल हम रसायन आधारित इतना हो गए हैं, केमिकल आधारित इतना हो गए, फिर चाहे फर्टिलाइजर की बात करें या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हर्बिसाइड बात करें। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर, यानी किसान कहते हैं कि डॉक्टर साहब आलू फुलाने की दवाई बताइए, सिंगाड़ा फुलाने की दवाई बताइए, साहब वो लौकी दिन रात में वृद्धि कर जाए, ककड़ी है साहब 2 दिन में हो जाए 2 फुट की, तो इस तरह से दवाइयां बताइए। तो ये जितने भी ग्रोथ रेगुलेटर हैं डायरेक्ट आप स्प्रे करते हैं जाते हैं और उनसे हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर का भी नुकसान होता है, जिसमें त्वचा संबंधी रोग, आंखों संबंधी रोग, किडनी है, पथरी है, डायबिटीज है, यानी लाइलाज जितनी बीमारियां हैं लगभग उनको कैंसर की श्रेणी में रखा गया है, वो सब होने की संभावना हमारे यानी मानव जीवन में हो जाती है अगर आप अत्यधिक रसायन वाला उपयोग करते हैं। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा जो फर्टिलाइजर की बात करें, देखिए ये फर्टिलाइजर आए थे कि जहां पर पोषक तत्व की कमी है उस तत्व की पूर्ति करके किसान भाई डालें, लेकिन किसान भाई आदि हो गए इस चीज के कि साहब जहां उर्वरक की जरूरत है 2 बैग की, वहां किसान डाल रहा है यूरिया के 7 बैग, डीएपी के डाल रहा है 2.5 गुना, यूरिया डाल रहा है 4.5 गुना अधिक डाल रहा है।
1: यार सर बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो नुकसान के संग संग एक बात और है भाई, लागत भी तो बढ़ रही है।
0: नहीं कई, एक तो हमारी लागत बढ़ रही है, दूसरा सरकार आपको एरिया के हिसाब से ही रिकमेंडेशन के हिसाब से फर्टिलाइजर दे रहा है। अब आप सक्षम किसान हैं, जागरूक किसान हैं, तो आप उस किसान का हिस्सा भी खरीद लाते हैं। जो किसान जागरूक नहीं है, जो अपने खेत में उतनी मात्रा नहीं डाल पाता है, जो गांव का पिछड़ा किसान है, उसको केवल अब वो समझ पाया है डीएपी यूरिया और पोटास, यानी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास समझ पाया है। लेकिन अगर किसी सब्जी वाले किसान से बात करिए तो हमें बराबर की टक्कर देता है कि नहीं साहब ये वाला साल्ट डालिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आपने जब वो अल्फा बीटा गामा लेवल का तक का अगर डाल लिया यानी लास्ट स्टेज का डाल लिया, तो फिर आप उम्मीद करते हो कि उससे कम लेवल का जो इंसेक्टिसाइड है काम करेगा। जी बिल्कुल नहीं।
1: अब डॉक्टर साहब ये मौसम बदल लो, यह मौसम में बहुत ही गर्मी पड़ रही है और यह गर्मी के चलते किसान भी परेशान है, पशु भी परेशान है और हमारी खेती पे भी आपको विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो हम आपसे जो जानना चाहेंगे विशेष रूप से कि या बदलते हुए मौसम में हमारे किसान भाइयों को किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।
0: देखिए इस समय हम खरीफ की फसलों की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जिन किसानों के पास पानी की व्यवस्था है वो अपना धान की तैयारी कर रहा है, जिसके पास पानी की कमी है या खेत ऊंचे पे हैं तो वर्षा का इंतजार कर रहे हैं कि समय पे बुवाई कर दें, और हमारा बाजरा की बुवाई, तो यहाँ पे अधिकतर ये 2 फसलें किसान करता है। और जिन किसानों ने अभी बीच में मूंग की फसल वगैरह करी है, तो एक तो मूंग में समस्या आ रही है हाई टेम्परेचर की वजह से, जिससे फ्लावरिंग नहीं सही से हो पा रही है, यानी फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण दाना यानी फलियां नहीं सही से बन पा रही है, तो वो किसान भाई मजबूरन उसको खत्म कर रहे हैं। तो अगर संभव हो तो उसको फलियां तोड़ने के बाद जो भी हैं उसको हरी खाद के रूप में पलट लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और ये जो टेम्परेचर है एकदम इंक्रीज कर रहा है, जिसमें हमारे और आपके शरीर में भी एकदम अलग से परिवर्तन होता है, तो ये समझ लीजिए पानी की कमी करता है, इसी तरह जानवरों को भी। तो हम और आप हैं, समय पे पानी पीते रहें, एक एक घंटे के 2-2 घंटे पर, और अपने पशुओं को कम से कम 2 बार या 3 बार पानी पिलाएं। इसी तरह फसलें अगर सब्जियों की कर रखी हैं तो आप शाम के टाइम पे पानी लगाएं, ताकि वो रात में अधिक से अधिक पानी पौधा उनको अवशोषित कर सके। तो ये है, क्योंकि मौसम की जो प्रतिकूलता है हाई टेम्परेचर, इसके बाद जो वार्निंग टाइप का जो सन रेज आ रही है वो बहुत प्रभाव डाल रही है। तो आने वाले समय में हमको हाई टेम्परेचर को सहन करने की प्रजातियां भी हैं, वो उनको बोना चाहिए, फसलें हैं उनको बोना चाहिए, और जब जितना हो आच्छादन अधिक से अधिक रखें अपने खेत का, पेड़ पौधे लगाएं, जितना पेड़ पौधे होंगे वहां गर्मी कम से कम रहेगी, यानी टेम्परेचर डाउन रहेगा।
1: अब जैसे डॉक्टर साहब आपने बात की थी कि अगले आने वाले मौसम की जो तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारियों में हमारे किसान भाइयों को क्या

0: विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनकी लागत का जो बिंदु बार बार आता है, सरकार कहती है कि लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा हो, आय में वृद्धि हो।
1: देखिए, इसमें अगर किसान चाहेगा तो 10 से लेकर 20% तक लागत अपने मेहनत से बचा सकता है। जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, यानी बात करें पोषक तत्व प्रबंधन, क्योंकि किसान आधारित है रासायनिक उर्वरकों पे, रासायनिक उर्वरक में जिसका बैग लेके आएंगे उसी की तत्व की पूर्ति होगी, अन्य तत्व नहीं मिल पाएंगे। जबकि फसल की वृद्धि बढ़वार के लिए 17 तत्व चाहिए, तो 17 के 17 तत्व उस एक बैग में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, उसके अलावा है आपके निकेल, कोबाल्ट, सोडियम, वेनेडियम, तो ये पोषक तत्व। अगर आपके खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद वो मिल जाए तो 1 से 1.5 किलोग्राम खाद प्रति वर्ग मीटर सड़ी हुई, गर्म भभकती हुई भूरे से निकालिए, गड्ढे से निकालिए और डाल के और जुताई कर दीजिए। ध्यान रखिए, उस खाद को खेत में डालने समय सूरज नहीं मिलना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। किसान भाई क्या करते हैं, 15 दिन पहले डाल आते हैं, उसमें जो पोषण होता है वो सब उड़ जाता है, उसके बाद सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब मैंने 22 बुग्गी डाल दी है पक्के 1 बीघे में। जी, वो 22 बुग्गी 2 बुग्गी के बराबर काम नहीं करता और उल्टा नुकसान करता है। जहां हम ये खाद बनाते हैं वो खाद बनाने का तरीका भी अलग है, सड़क के किनारे या जहां जगह नहीं है वहां जबरदस्ती कूड़ा डालते हैं, कूड़ा, कचड़ा, जड़, तना, पत्ती, फसल के अवशेष है, जानवरों का गोबर है, पेशाब है, बटोरन है, बिछावन है, नांद का कचड़ा है, यानी जो खेत में पैदा हुआ है तो पशु खाएगा या तो घूरे की खाद बनती है। लेकिन हमारा तरीका क्या है कि अधिक से अधिक सफाई रखो, इसको आग लगा दो, क्योंकि उसमें आग कब लगती है, जब ऊर्जा होती है, ताकत है, एनर्जी है, तभी तो आग लगी है। उस एनर्जी को कन्वर्ट करके पोषण में लेके आइए, उस पोषण को रिसाइकलिंग करिए, यानी खाद बनाइए और खेत में डालिए, ताकि आपकी फसलों के लिए ताकत मिल सके, पोषण मिल सके। इतना अगर आपने कर लिया तो जो रासायनिक उर्वरकों पर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार के पास अंधाधुंध इसका खरीदने की बात करते हैं, सरकार के पास तो है ही नहीं इतना, क्योंकि जो है वो लिमिटेड में, हर चीज की एक लिमिट मात्रा है, जरूरत से ज्यादा खर्च करेंगे तो जाहिर है कि खपत अधिक होगी और उसके भाव भी बढ़ेंगे और अगर आपको मिल भी नहीं पाएगी, क्योंकि जो चीज जितनी आसानी से आपको उपलब्ध है सरकार को उतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर थोड़ी बात कर लें डीएपी की, तो आपको 650-650 रुपए का सरकार सब्सिडी देती है एक बैग पे। इसी तरह यूरिया जितनी की आपको मिल रही उससे 3 गुना तो सरकार पे करती है, आपको मात्र 275 रुपए, या बात कर लें 276-270 रुपए का विद किराया वगैरह बात करें, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि इतने रुपए मिलता है? जी बिल्कुल नहीं, 900 रुपए की सब्सिडी सरकार आपको देती है, तब आपको जाके 300 रुपए का करीब ये बैग मिल पाता है, 275 का। तो निवेदन ये है कि खेत की सेवा आपको करनी, आप किसान हैं, और सेवा के लिए उसके अंदर इंटीग्रेशन करिए, अवशेषों की खाद लगाइए, गोबर की सड़ी खाद लगाइए, सड़ाने के लिए जमीन की सतह से नीचे गड्ढा करिए ताकि बरसात का पानी आए और सब पानी उसमें इकट्ठा हो, सड़े गले और सूक्ष्म जीवों की एक्टिवेशन यानी क्रियाशीलता बढ़े, जो खुद वातावरण से हवा, पानी और प्रकाश से भोजन बनाए, सड़े गले और खेत को ताकत दें। इसके अलावा आपके जड़, तना, पत्ती, फसल के अवशेष जिनको सड़ा रहे हैं उसमें भी तो पोषण है, वो आपके खेत को रिसाइकलिंग होकर मिले। देखिए, इंटीग्रेशन की बात है, हम किसी पे निर्भर हैं? क्योंकि हम भी पेड़ पौधों पे निर्भर हैं। हम क्या खाते हैं? अनाज, फल, सब्जियां, ये कहाँ मिलता है? खेत में उगता है। खेत में हम अपना पोर्शन खाते हैं, पशु अपना पोर्शन खाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अभी देखना धान की फसल होगी तो किसान कहेंगे नहीं साहब आग लगा दो, तो सरकार को इस पे भी बड़ा कदम उठा।
0: और अब तो सर ये एक अपराध है, दंडनीय अपराध है,
1: दंडनीय अपराध है। इसीलिए अपराध है क्योंकि हम सूक्ष्म जीव मारते हैं, पोषण को खत्म कर रहे हैं बेवजह। ताकत है उसमें, ऊर्जा है, जहां से बनी है वहीं वहीं चली जाती है। अगर आप 1 क्विंटल अनाज में आग लगाएंगे तो जमीन को 1 से 1.5 किलो राख मिलेगी, क्योंकि वो पृथ्वी से गई है। बाद बाकी जो आंच के रूप में गया है वो सूरज की किरणों से, जो गैस के रूप में गया है वो हवा से आया, उसमें जो नमी थी वो पानी से आया, यानी पांच, अगर हम देसी भाषा में बात कर लें, हमारे पूर्वज भी पुराने वैज्ञानिक थे तो कहते हैं कि पंच तत्व मिल बना शरीरा, फिर चाहे हमारा हो या जिस चीज का हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत आभार।
2: तो भैया आपने इतनी अच्छी जो बातचीत जानकारी ली ना, बिल्कुल बढ़िया बात कह रही हूँ मैं आपसे, बदलते मौसम में कृषि प्रबंधन, हाँ जो तकनीक है डॉक्टर साहब ने, हमारे विशेषज्ञ ने जो बताया।

तो बिल्कुल सही सटीक बताई, अकेले भैया आपको कछु ना करना। और बातचीत कर रहे हते दीपक गोस्वामी डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत थे। तो भैया ऐसी जानकारी आपको बहुत ज्यादा है काय लाभ तो मिले आपको। पर पता है आजकल जी मल को महीना चल लो ना पुरुषोत्तम मास, जामे भैया ऐसो लगे ठाकुर जी ने तो अपने भक्तन के काजे कछु ऐसो मैसेज संदेश ऐसी चिट्ठी भेज दिए, दौड़ी चले आम रहे पावन में पनिया उनाए। तो पता है ऐसो ही सुन लेते लोकगीत पुष्पलता शर्मा को गायो भैया, चिट्ठी भेजू तार भेजू।

0: गायो भयो सुनो ना ये लोकगीत, तो भैया हर बात को ध्यान रखो, हर सूचना को, हर जानकारी को। तो अब पतो है अब समय का है, समय ऐसो जागरूकता को, हमारे जो पेड़ पौधाएं उनको हमें संरक्षण करना और उपाय करना है, और कैसे करना है, विशेषज्ञ की जानकारी से चले हम। तो अब आपको जानकारी दिलवाएंगे प्रमुख सब्जी में पौध संरक्षण के उपाय, डॉक्टर श्याम सिंह से लियो ये जानकारी।
1: भाइयों, नई उन्नतशील प्रजातियों के विकास से पिछले कुछ वर्षों में सब्जियों के उत्पादन में असातीत वृद्धि हुई है। अधिक उत्पादन वाली संकर प्रजातियों के साथ साथ अच्छी शस्य तकनीकी व अन्य कारकों का सघन उपयोग सब्जियों के हानिकारक कीट व रोग कारकों के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कुछ कीटों अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर नई सब्जियों में हानि पहुंचाने लगे हैं जो पहले हानि नहीं पहुंचाते थे। साथ ही कुछ कीट रसायनों के प्रति अवरोधी भी हो गए हैं। नए कीटों में प्रमुख रूप से पर्णसुरंगक कीट संकर टमाटर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसी प्रकार बैंगन की फसल में गाल मिर्च, गोभी में शीर्ष बेधक, भिंडी में लाल माइट और मिर्च में थ्रिप्स व पीली माइट की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। गोभी वर्गीय सब्जियों में हीरक पृष्ठ कीट, जिसे डायमंड बैक मोथ भी कहते हैं, ने बहुत से रसायनों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। साथ ही कीट रसायनों के लगातार प्रयोग से इनके प्राकृतिक शत्रु जो किसानों के मित्र कीट हैं उनकी संख्या में कमी हो जाने से इनकी भयावहता बढ़ रही है। अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से सब्जियों में अवशेष रसायन अधिक मात्रा में पाए जाने से मनुष्य के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वातावरण प्रदूषित होने के कारण भी मानव जीवन में तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। किसान भाइयों, सब्जियों की लगातार फसलों की पौध तैयार की जाती है। अधिकतर इन सब्जियों में इनकी पौध में नाजुक पौधों में रोग व कीट व्याधि लगने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए सफल खेती के लिए सब्जियों की फसलों की देखभाल इनकी नर्सरी अवस्था से ही करनी चाहिए। नर्सरी में मृदा जनित रोगों के फैलाव से बचाव के लिए, विशेषकर डैम्पिंग ऑफ बीमारी है, मिट्टी को धुनक जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, स्टीम, आंसू गैस और कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग करके हम मिट्टी को निर्जीवीकृत कर सकते हैं। इसके निर्जीवीकरण के लिए फॉर्मेल्डिहाइड के 1% घोल से 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक की मिट्टी को गीला करके मिट्टी का निर्जीवीकरण हो जाता है। घोल को डालने के बाद मिट्टी को टाट या पन्नी से 1-2 दिन के लिए ढक देना चाहिए, जिससे मिट्टी में मौजूद कवक व कीटों की मौत हो जाती है और हमारी मिट्टी निर्जीवीकृत हो जाती है। फसलों को उठी हुई मेड़ों पर लगाने से भी डंपिंग ऑफ बीमारी नियंत्रित की जा सकती है। इसी प्रकार बीज जनित रोगों से बचाव के लिए सब्जियों के बीजों को बुआई से पहले 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड वाले किसी भी फंजीसाइड से उपचारित करना चाहिए, जैसे बावस्टीन है, थाइराम है, जायराम है या कार्बेंडाजिम है। सब्जियों को लगने वाले प्रमुख कीटों से बचाव हेतु हमें कुछ शस्य क्रियाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। शस्य क्रियाओं द्वारा हानिकारक कीटों की संख्या को कम किया जा सकता है। शस्य क्रियाओं की योजना बनाते समय ऐसी क्रियाओं का चयन करें जिनसे नाशी कीटों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव व मित्र कीटों पर अनुकूल प्रभाव पड़े। इसके अंतर्गत सही किस्मों का चयन, बुवाई व रोपाई का समय व तरीका, इसमें परिवर्तन, अंतः फसलों का सही चुनाव आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अवरोधी व सहनशील किस्मों का चुनाव भी किसान भाई कर सकते हैं। लगभग प्रत्येक सब्जी वाली फसल की कीट व रोगरोधी प्रजातियां बाजार में उपलब्ध हैं। इनका चयन रोग कीट नियंत्रण का सबसे सरल, सस्ता और दुष्प्रभाव रहित तरीका है। बुवाई व रोपाई के समय में परिवर्तित करके लाल भृंग कीट, फल मक्खी, तना व फल भेदक कीट के प्रकोप को कम किया जा सकता है। जबकि करेले में अक्टूबर से पहले बुवाई, फूलने वाली प्रजातियों का चयन कर फल मक्खी से बचाया जा सकता है। जून के दूसरे सप्ताह में भिंडी की बुवाई करने पर फल भेदक कीट कम लगता है। इस प्रकार स्थानीय और पुराने अनुभव के आधार पर फसलों की बुआई या रोपाई ऐसे समय पर करें जिससे पौधों की नाजुक अवस्थाएं, जिन अवस्थाओं में ज्यादा नुकसान होता है कीड़े व बीमारियों से, और कीटनाशी की निष्क्रियता, जिस समय कीट हमारे जो कीट है और जो बीमारियों के रोगाणु है उनकी निष्क्रियता समय एक साथ पड़े। इस प्रकार से हमें बिना खर्चे के अपने खेतों

0: बुवाई और रोपाई के समय में को आगे पीछे करके कीट व बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। इसी प्रकार किसान भाइयों, गर्मी की जुताई से गहरी जुताई करने से जहां हानिकारक कीटों को नष्ट किया जा सकता है, वहीं हानिकारक रोग कारकों को भी नष्ट किया जा सकता है। इससे प्रमुखतः सब्जियों में लगने वाली फल मक्खी, कद्दू का लाल भृंग और कटुआ कीट के जीवन चक्र को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि गर्मी मई और जून के महीने में हम गहरी जुताई करके अपनी मिट्टी को सुरक्षित कीड़ों के संपर्क में लाएंगे तो इन कीड़ों के जो जैसे फल मक्खी है, कद्दू का लाल भृंग है, वो कटुआ कीट है, इनके जो फसल जीवन चक्र है उसके अंडाणु हों, लार्वा हों, ये सब तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से कीड़ों को आकर्षित करने के लिए दूसरी फसलों को भी हम अपनी मुख्य फसल को बचाने के लिए लगा सकते हैं। ये फसलें कीड़ों को ज़्यादा पसंद आती हैं और वो जाल में फंस करके हमारी नई फसल को, जो हमारी मुख्य फसल है, उसको कम नुकसान पहुंचाते हैं और इन फसलों से इन कीड़ों को इकट्ठा करके आसानी से नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए जैसे हम पत्ता गोभी और फूल गोभी में हरी सूंडी और पर्णदालक कीटों के नियंत्रण हेतु सरसों की फसल के कुछ लाइनें बीच बीच में डाल सकते हैं, जिन पर इन ये कीड़े या सूढ़ियाँ जो हैं आकर्षित होकर सरसों की फसल पर आएंगी, जहाँ पर इनका नियंत्रण आसान होगा और हमारी गोभी की फसल सुरक्षित बनी रहेगी।
1: प्रमुख सब्जियों में पौध संरक्षण के उपाय। डॉक्टर श्याम सिंह भैया दे रहे आपको जानकारी, तो भैया ये जानकारी तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, आपकी जो पौध है और वा को कैसे संरक्षण करें। तो भैया अब आपको जानकारी पता कहाँ गए? अरे भैया जे जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जहाँ में दान पुण्य को बड़ा महत्व है और जल, यानी जल तो जीवन है, गामन में जो तालाब हैं, पोखर हैं और आपके कहे हो जाए आसपास जो है कहे तलैया है, बिन की साफ सफाई सामूहिक रूप से करो भैया, श्रमदान भी है जाएगो, जल को कार्य भी है जाएगो और जो वर्षा को जल है वाको संचय भी है जाएगो, गाम को पानी गांव में रह जाएगा और खेती के लिए बड़ा उपयोगी है और निशुल्क आपकी सिंचाई है का है जाएगी। तो भैया बात तो काम की रही ना। हाँ, और पता है एक काम की बात और है, वो है मौसम की। अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस की संभावना। और भैया अगले घंटा में जो है का है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, तेज हवा के संग जो है का है आंधी आएवे क्यों संभावना बताई गई है। तो भैया हम तो आपसे ये कहें मौसम को विशेष ध्यान रखें, क्योंकि खेती को कार्य मौसम से बहुत ज़्यादा जुड़ो हुआ है, प्रभावित है। तो भैया यही के साथ हम घड़ी की सुई को पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो आज को ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब यहीं पे हुए हैं संपन्न। कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया ममता रानी ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

अभिजीत और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म थी देव, बोल निदा फासली के थे, धुन तैयार की थी आदेश श्रीवास्तव ने।

गंगा की लहरें इस फिल्म की भक्ति रचना भी आपने सुनी लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल मजरू के थे, संगीत दिया था चित्रगुप्त ने।

मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म थी घराना, शब्द रचना शकील बदायूं ने की थी, संगीत दिया था रफ़ी ने।

0: अनुराधा पौडवाल को अभी आपने सुना, फिल्म थी संत ज्ञानेश्वर, शब्द रचना पंडित किरण मिश्रा की थी, धुन तैयार की थी नंदू हूनप ने। इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम में आज ब्रज काव्य सुधा में सुनते हैं राम खिलाड़ी स्वदेशी का काव्य पाठ।
1: भैया आओ, जब ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में मैं ब्रजभाषा की कछु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हूँ। पहले मंगलाचरण में मैं दो छंद प्रस्तुत कर रहा हूँ कि राधा राधा रटत मिटत भव बाधा सब, राधा के सहारे सुख धाम मिल जाएंगे। ओ हम ब्रजवासी अभिलाषी राधा चरणों के, राधा नाम रटे आठों याम मिल जाएंगे। कि नित्य उठ वंदनी बाब्र सुभान नंदनी को, प्रेम से भजोगे रोम रोम खिल जाएंगे। ओ राधा रानी रटत स्वदेशी तोय, राधिका के ही ये बैठे श्याम मिल जाएंगे। राधिका के ही ये बैठे श्याम मिल जाएंगे। और एक क्षण देखें, गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोपाल भजे, गोविंद गोपाल भजे गोविंद गोपाल हैं। राधे भजे राधे भजे राधे राधे राधे भजे, राधे को भजोगे तो जे जीवन निहाल है। टेढ़ी टांग वारो रखवारो तेरे जीवन को, ही हमें बसाए जाए देवकी को लाल है। राधा नाम जाप करो जीवन के पाप हरो, राधा नाम जाप करो जीवन के पाप हरो। राधा राधा कहोगे रहोगे खुशहाल है, राधा राधा कहोगे रहोगे खुशहाल है। के शीश पे सोहत मोर पखा मुरली हरि के अधुरान धरी, मकुराकृति कुंडल कानन में गल में बन मार।

प्रभु के परी। एक पीरी कछोटी कछी कट में लकुटी कर कारी लई कमरी। लख रूप स्वदेशी निरूपम को जग दिखे नहीं बस दिखे हरी। जग दिखे नहीं बस दिखे हरी। जिन नैनन में नद लाल बसे तिन नैनन और बसे गो कहा। ओ मनुआ मन मोहन मोह फस्यो कऊ और के मोह फसे गो कहा। जाकी पति श्रीपति राखत है जग देख के ताए हसे गो कहा। हरे नाम की फेंट स्वदेशी कसी कऊ और की फेंट कसे गो कहा। कऊ और की फेंट कसे गो कहा। ये तो भैया मंगलाचरण मेरो। और अब मैं एक क्षण गर्मी के ऊपर पढ़ रहे हूँ, जो आजकल गर्मी अपने पूरे तांडव पे है। पंक्ति सुने आप कि ग्रीष्म की भीषण तापसों तप्यो है तन। जा ग्रीष्म की भीषण तापसों तप्यो है तन। भोरसोई भानु जे भूवर सी डारी है। जा ग्रीष्म की तापसों जा ग्रीष्म की भीषण तापसों तप्यो है तन। भोरसोई भानु ने जे भूवर सी डारी है। ताल और पोखरन कौ जल सूख गयो। पशु और पक्षी न की हालत बिगारी है। कोसन चले जाओ कऊ दी के छा नहीं। हरियाली की कैसी छटा आए अब उजारी है। हरियाली की कैसी छटा आए अब उजारी है। जा गर्मी की गजा गर्मी की व्याकुलता रात दिन बढ़ी जाते। लू की लपेटन ने कनपटी पजारी है। लू की लपेटन ने कनपटी पजारी है। जी हालत है जा गर्मी की। और भैया अब मैं मुख्य अपने विषय पे आऊँ। एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ अभी। हमारे पाकिस्तान से दो दो हाथ भये। बाकी एक स्थिति आपके सामने रख रहे हूँ, देखें। गरज सीमा पे राफेल गरजो सीमा पे राफेल। पाक तू घुस के मारो ए घुस के मारो ए पाक तो घुस के मारेंगे। गरजो सीमा पे राफेल पाक तू घुस के मारो ए घुस के मारो ए के तेरो भूत उतारो ए। गरजो सीमा पे राफेल पाक तू घुस के मारो है। पहलगाम में तेने मनुजता शर्मसार कर डारी। पहलगाम में तेने मनुजता शर्मसार कर डारी। और पूछ पूछ के धर्म अधर्मी तेने गोली मारी। और पूछ पूछ के धर्म अधर्मी तेने गोली मारी। तो कूनेक भई ना धैल पाक तो घुस के मारेंगे। घुस के मारेंगे पाक तू घुस के मारो ए तो कूनेक भई ना धैल पाक तू घुस के मारो है। और पंक्ति सुने आप। S400 के देखे जौहर खाने तेने। S400 के देखे जौहर खाने। और ध्वस्त कर दे तेरे हमने सभी ठोर ठिकाने। ध्वस्त करे आतंकी तेरे सबरे ठोर ठिकाने। तेरी डारी नाक नकेल पाक तू घुस के मारो है। घुस के मारो है पाक फिर घुस के मारेंगे। हो घुस के मारो है पाक फिर घुस के मारेंगे। तेरी देख डारी नाक नकेल पाक तो घुस के मारेंगे। तुर्की और चीन ते तेने डॉन मिसाइल लीने। तुर्की और चीन ते तेने डॉन मिसाइल लीने। सबई मार दिए है धरती पर हमने डारे दीने। सबई मार दिए धरती पर हमने डारन दीने। तेरी तेरी भई योजना फेल पाक तो घुस के मारेंगे। घुस के मारेंगे पाक तो घुस के मारेंगे। घुस के मारेंगे पाक तो घुस के मारेंगे। गरजे सीमा पे गरजे सीमा पे राफेल पाक तो घुस के मारेंगे।

0: ए दुनिया ने जे देख ली है तेरी धोखेबाजी, दुनिया ने जे देख ली है तेरी धोखेबाजी, और तू राजी को यार नहीं मने माने राजी बाजी, तू राजी को यार कहाँ तू माने राजी मान राजी बाजी, तेरी डारे नाक नकेल पाक तोय घुसके मारेंगे, घुस के मारेंगे पाक फिर घुस के मारेंगे, वो घुस के मारेंगे पाक फिर घुस के मारेंगे, गरजे सीमा पे राफेल पाक तो घुस के मारेंगे। और एक छोटा सा गीत और पढ़ रहा हूँ और वो चेतावनी दे रहा हूँ। करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, भूचाल धरा पे आवे रे तेरा काल धरा पे आवे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, शांत अहिंसा धर्म हमारो, शांत अहिंसा धर्म हमारो कायरता मत जाने, शांत अहिंसा धर्म हमारो कायरता मत जाने, मात भारती को जे लोहा विश्व समूचो माने, मात भारती को लोहा ये विश्व समूचो माने, तेरे चांद सितारे भुजलेंगे जब भान उदय है जावे, तेरे चांद सितारे भुजलेंगे जब भान उदय है जावे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, भूचाल धरा पे आवे तेरो काल धरा पे आवे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, वीर प्रसूता भारत मा के सूर वीर रणवंका, हम वीर प्रसूता भारत माँ के सूर वीर रणवंका, हम लड़वे ते कब डर पे नाय करें काल की शंका, हम लड़वे ते कब डर पे नाय करें काल की शंका, जब रण करवे कु मचलेंगे हाँ हम जब रण करवे कु मचलेंगे, तेरा काल धरा पे आवे, तेरा काल धरा पे आवे रे भूचाल धरा पे आवे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे। और कहा एक गौरी मिसाल है बाकी धौस दिखावे, कहा गौरी की धौस दिखावे, कहा गौरी की धौस दिखावे दंड पेल रे भोला, कहा गौरी की हमारे पास भोला है, कहा गौरी की दंड धौस दिखावे दंड पेल रे भोला, तोप तमंचा धरे रहे जब परे गजब को गोला, फिर तुम चना मटर से भुंज लेंगे भूचाल धरा पे आवे, भूचाल धरा पे आवे तेरो काल धरा पे आवे रे, भूचाल धरा पे आवे तेरो काल धरा पे आवे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, बहुत तेरो समझायो हमने एक बात नहीं मानी, बहुत तेरो समझायो हमने एक बात नहीं मानी, और अब के ऐसो मारेंगे नहीं मांग पावे गो पानी, और अब के ऐसो मारेंगे नहीं मांगे गो पानी, अग्नि शब्द स्वदेशी उगलेंगे भूचाल धरा पे आवे, अग्नि शब्द स्वदेशी उगलेंगे भूचाल धरा पे आवे, भूचाल धरा पे आवे रे तेरो काल धरा पे आवे, करवट शेर बबर जब बदलेंगे भूचाल धरा पे आवे, भूचाल धरा पे आवे।
1: ब्रज काव्य सुधा में अभी श्रोता सुन रहे थे राम खिलाड़ी स्वदेशी का काव्य पाठ। इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनते हैं। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार 4 जून दिन में 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर लव गुप्ता, सलाहकार पल्मोनोलॉजिस्ट, अस्थमा टीबी फेफड़ा एवं श्वास रोग विशेषज्ञ। सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम

हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में टीबी, अस्थमा एवं श्वास संबंधी रोग, कारण एवं निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। थोड़ी देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
3: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
2: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और

0: केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
1: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5,041 करोड़ रुपीज का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
2: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
3: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है।

0: नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1 करोड़ 25 लाख घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
2: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं जो कि बड़ी संख्या में भेजे गए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म थी लोफर, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा था सादुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश कुमार राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान, ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, गांव टू क्या जिला बालातोरा राजस्थान से कृष्णा कुमारी डाबी, भूपत कुमार, राधा डाबी, विक्रम, अर्चना और साक्षी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप,

मजनू कटीला दिल्ली से, कमल मालूजा मधु बालूजा सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरबिंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश, पायल जोशी, बेबी वैदेही और इनके सभी परिवारिक जन, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद प्रदीप यमेकर, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, आप हैं रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हेना हर्षिता और खुशी गोस्वामी, नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी टिंकर डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और देशा गोस्वामी, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण विक्रमजीत, अनमोल परमजीत ग्रोवर, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप, पारजू जाजोरिया, तेलीपाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा, आयुष विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया, बटेडा रोड मरडी डब्बावली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, लकी तानिया नारंग, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंग्ले, सोपान आशीष मोहरकर, सौंगाभागर रोड छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश चंदन, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा, पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और ती गौरी ओम कुमार सुरलकर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, गांव कुम्भार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना मोहम्मद कैफ अंसारी, डोरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबिये, बोटसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या, कीर्ति कुमार और डीकेश साहू ने। और ये अब सुनते हैं एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू की शब्द रचना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, फिल्म है पेइंग गेस्ट।

मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म थी पेइंग गेस्ट, गीत मजरू का था, संगीत दिया था एस डी बर्मन ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए भिलाई छत्तीसगढ़ से, मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता केशु, रिधान खुराना, गांव कोपी की नगरिया से मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नगलापोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर, जयशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके मम्मी पापा, गांव कुमोदवन से रमेश, सुनील, रचना और इनके परिवारीजन, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से अनीता, अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके मम्मी पापा, ब्रजोद्यो, श्वेता मित्र, चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया कंदौली आगरा, यात्राम जी उस फार मथुरा, पीरेन सिंह मंडी चौराहा मथुरा, नेतपाल सिंह नगला विजयी राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतेंद्र संचौलिया जिला जालौन और पंचम लाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी, सोंगा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से कोमल सेन, तोषण, विनायक सेन, बुलठाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोधवड़े, अनीता गाठोड़े, रमेश राव गाठोड़े, छत्रपति जी शिवाजी नगर खंडवा से राजीव

सेन, सुरेखा, शुभम, अक्षय सेन, दुर्गा कॉलोनी हांसी हरियाणा से राजू मिकलानी, बबीता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, कल्याण मुंबई से किशोर हेवराले, सुजाता प्रतीक हेवराले, भाभी नीमगांव महाराष्ट्र से श्रीराम कांथाली, उषा कोंथाली, वैष्णवी पूनम, युवराज व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, राजधराना राजनगर बिहार से भाई नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, छोटी चुलबुल रानी, कपलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलियर रानी और इनके सभी परिवारिकजन, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, देशानी और निमित आहूजा, पोसौरी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, ज्योति, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोया सिक्का, डगू, भविका, मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा, 7:15 पीए संदेश, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, सोनू, पप्पी भाटिया, नसवल चौक मलकापुर से संजय पाटिल, निवृत्ति क्षीरसागर संजय कुमार चौहान, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहाउद्दीन, फजान फरहान, सामेरा आप हैं, मधुबनी एक्सटेंशन से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, घनश्याम हीरा, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती, शोभा गुप्ता और समस्त परिवार, पहाड़गंज मुल्तानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म थी गाइड, गीत शैलेंद्र का था, धुन तैयार की थी एस डी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा था दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद गुलाम साबिर मेरा जहां, राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रार, रुचिका और रामेकर परिवार। ग्राम कृष्णा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता कुणाली प्रणाली, पार्थ और समस्त हागोड़े परिवार। श्री गणेश अविकार्ट श्रीरामपुर से डी अशोक कुम्भार, अभिका सानू, अर्चना पुनावली से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और साइशा सोनवने। नांदेड़ महाराष्ट्र से के हिवराले, साधना हिवराले, प्रतीक हिवराले। ताजपुर बोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीना, कारी पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट।

निखिल कांगड़ा, तन्वी बूट, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, बसंतरा भोजने, पीएस नवानकर, भटेना पाठन, जलातुर छत्तीसगढ़ से बालकर्ण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश प्रमिला पंचोर, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता जैन।

श्री बडनो रकुला से और ना बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, कुली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार साई गायकवाड़, कोटा कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत मयंक भाटिया, उच्चू भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू गोस्वामी, करताल जरा रंगा रेड्डी तेलंगाना से कनकुला गोपाल माहेश्वरी, प्रवलिका विश्ववर्धन, विघ्नेश छत्रपति जी संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि श्रीमती शीतल राजेश, हिंदराज रेडियो श्रोता संघ तालुका निवासा कपट्टी महाराष्ट्र से बंडू चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपड़गढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छड्डू लाल श्रीवास, अनीता पुष्पा, अंजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, पद्मा टाकिस नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि शाह, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल और निशा ने। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार।

0: आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है, उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी अभी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो काम किया,
1: जैसे भी शरद जी ने
0: बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं, कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है। और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
1: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स विद मोर देन 25 करोड़ पीपल exiting multi-dimensional poverty and entering the new middle class. How big an achievement do you think that is of the government, of the Modi government, Sharad ji?
2: I think it's a huge achievement, because 25 crore may be a very easy number to speak. Yes. But this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the world. Aur dekhiye, hua kya ke poverty index ki jo definition badla gaya. You know, we've changed the definition because aap poverty ko pehle kaise define karte the, itne rupaye roz ka. आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीइंग, यू नो, सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो, जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड एंड लिव अ लाइफ स्टाइल विच एनी अदर नॉर्मल मिडिल क्लास लिव्स, सो आई थिंक दैट हैज बीन द पैराडाइम शिफ्ट इन द वे वी लुक एट पॉवर्टी, बिकॉज दोज पीपल financially fine, they may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably been enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
1: The facilities that are very basic facilities. Absolutely. Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of time. And today they feel that these were basic amenities which I was lacking, and it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana. You know, the whole sanitation program which has been done. You know, Arba, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst, the biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analyst, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle down effect. That has impact हर वर्ग को समाज के उसने फायदा पहुंचाया और मिडिल क्लास तो उसमें आती आती, क्योंकि इससे नौकरियां बनी हैं, इससे लोगों की इनकम। और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं जो टंडन साहब मेरी बात से अग्री करेंगे कि मुझसे जब लोग पूछते हैं, क्योंकि होता क्या जब आपकी जिंदगी में ये सब घटनाएं घटती रहती हैं वेलफेयर स्कीम, तो यू टेक इट इन योर स्टेड, आपको लगता है ठीक है ये तो होना ही था भाई, ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेम्बर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 ईयर्स फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 ईयर्स वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल

0: स्टेबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय पीपल लाइक अस. सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे.
1: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत में कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी. तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की है, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
2: मैं आपकी बात पर आने से पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूं. मुझे लगता है कि समाज में स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है. और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए जैसे अभी बताया गया था, और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं. आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात की. वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है. और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर. लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया. मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूं तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है
1: जी.
2: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है. तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं.
1: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के जो के लिए, जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अनुभव. देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी. आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं.
1: बिल्कुल.
0: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट. तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट. टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था मुझे याद है 2016 की ये बात है. And I think a lot of people said that Startup India, you know, people have been doing businesses here for times immemorial. So what is new? Yes, there was something new because startup focused on innovation, startup focused on new ideas. And that is where the youth of the country or the youth intellect of the country got activated. And a lot of youngsters, and today just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here government became an angel. Right. And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today I'm telling you, when from being job seekers to being job creators, when I talk to a cross section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubhav, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana, which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a

0: what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems, Mr. Kohli?
1: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
1: Absolutely. Jandhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so on. So today, all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
1: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that example.
0: Absolutely.
1: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch
2: kehna chahiye? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Jandhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. Aur iske saath saath jo 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया गया. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ.
0: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पर हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ कर
0: डिजिटल डिवाइड, इसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीज पीपल इन द विलेज अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे when I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead, is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. Prime Minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ki likhai band ho jani thi agar ye connectivity nahi hoti. Bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
1: जो किया, उसका किया है, हमें उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
0: अशोक जी, आप कुछ कहेंगे?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ होना है.
0: We have seen in the last 12 years since 2014 when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything, for example highways, any middle class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal

0: mile earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubhav, over the last few years. I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue with that commuter does. And Udaan, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak. Well, a plane journey used to be a dream for people. Ke hum sari umar mein sochta tha, kab main hawaii jahaj mein baithungi, baithunga. Aaj mujhe lagta hai, aap agar kisi bhi hawaii yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai. Chote-chote airports ko banakar, unko connect kar dena. Aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana, jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga, Rajdhani aur Shatabdi. Akeli trains hua karti thi, jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke, aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort mein pahunch rahe hain, which is of international level. The things we used to watch internationally, ke its train mein TV bhi hota hai, isme reclining seats hoti hain, aaj wo mujhe lagta hai aam aadmi ki pahunch mein. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
1: And you know, that brings me to my next question, kyunki aap jise baat kar rahe ki infrastructure mein jo improvement hua hai, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, jo expansion hua hai, to humne dekha hai ki hawai yatra mein, jaise bhi aapne kaha ki bahut tezi se badhotri hui hai, Vande Bharat jaise hamare paas world class trains hain, jahan 2014 mein sirf 74 airport the, ab wo badh ke 160 ho chuke hain, 225 tak. Jo metro rail ka network hai, wo 26 shaharon mein phail chuka hai. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
1: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
0: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिपेक्ष में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हैं, कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे, अनुभव, फ्रॉम वेयर वी वर।
1: यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट द मिडिल क्लास नाउ, वन सेगमेंट ऑफ द मिडिल क्लास दैट आई थिंक वी हैव टू टॉक अबाउट एंड वी शुड मेंशन इज द वुमेन। Women, you know, are the backbone of any middle class family. What, in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar

0: हम देखेंगे तो फायदा तो उससे हर वर्ग को हुआ है, लेकिन विशेष तौर से महिलाओं और किसानों और युवाओं से जुड़े हुए जो हैं। अब आप देखिए, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
1: बिल्कुल
0: की, तो जो गरीब परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी मिली, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है।
1: जी
0: इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है,
1: बिल्कुल
0: तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजनाएं, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा, इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट
1: जी
0: कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा, जैसे वेमेन सिक्योरिटी है,
1: जी जी
0: सो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुमा नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहां पर महिलाएं इकट्ठी होकर कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है जहां से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहां दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से, महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी, पहले उनके नाम किए गए हैं।
1: बिल्कुल,
2: आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
0: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहां तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली तीन हिस्सों में बांटता हूं, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything,

0: I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
0: It was a pleasure.
2: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.

अभी श्रोता सुन रहे थे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति पर प्रश्न है।

संवेद सुर में अभी श्रोता देशकांत सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर दी एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इंपैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप

0: द्वीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
1: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है, फिशिंग हो, धान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं, जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलॉन्ग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से उड़ीसा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बैनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बाकी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटक नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डी के शिव कुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधु ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

0: भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमरीका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
2: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
3: दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
1: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले दो दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के

0: आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी।

0: पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 70 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet approves 10,000 crore rupee ATF price stabilization fund to support Indian Airlines. Also gives nod to National Capital Region Planning Board for old trucks and buses replacement in Delhi NCR area. Expelled TMC MLA Ritubrata Banerjee appointed as leader of opposition in West Bengal Legislative Assembly. Congress leader D.K. Shivakumar sworn in as 25th Chief Minister of Karnataka. Dr. G. Parmeshwar becomes Deputy Chief Minister while 12 legislators also take oath as Cabinet Ministers. Massive fire in Malviya Nagar in Delhi claims 21 lives. Police file FIR under charges of culpable homicide. Met Department warns of very heavy rainfall in Kerala and Mahe tomorrow. And in badminton, India's Ayush Shetty enters second round of Indonesia Open Super 1000 after defeating China's Wang Hongyang. The Union Cabinet has approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide aviation turbine fuel ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. The support will be provided to companies to facilitate stable ATF pricing for airlines during the ongoing period of exceptional fuel price volatility arising from the West Asia crisis. Briefing media in New Delhi today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said this is a self-sustaining revolving fund which will help to stabilize ATF prices for scheduled Indian carriers.
3: ATF price stabilization fund mein
4: a self sustaining revolving fund has been established under the ATF price stabilization fund. Airline carriers who want to participate in this will be provided aviation turbine fuel at a stable price during the current crisis. This is expected to significantly reduce the adverse impact on the aviation sector, where over 70 lakh jobs had started to be affected by the ongoing stress in the industry.
3: Because of the stress in the sector, wo isse significantly mitigate hoga.
2: The Union Cabinet has also approved a scheme for support to the National Capital Region Planning Board for replacement of old trucks and buses in Delhi NCR area. The scheme, with a total financial outlay of 9,585 crore rupees, seeks to incentivize owners of trucks and buses registered in the Delhi NCR region that comply with BS4 or earlier emission norms to replace them with BS6 or electric vehicles. Mr. Vaishnav also informed that the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the construction of a new coastal highway from Rameshwar to Paradip in Odisha.
3: उड़ीसा में कोस्टल हाईवे जिसका फेज वन आज अप्रूव हुआ है.
4: इन ओडिशा द फेज वन ऑफ द कोस्टल हाईवे वॉज अप्रूव टूडे. इट विल एक्सटेंड फ्रॉम रामेश्वर थ्रू कोनार अप टू पारादीप, कवरिंग द स्ट्रेच फ्रॉम द सदर्न टिप ऑफ ओडिशा टू इट्स सेंट्रल रीजन रीचिंग पारादीप. एडिशनली अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन बिहार, दैट इज द फोर लेनिंग ऑफ द रोड बिटवीन खगड़िया एंड पूर्णिया.
3: खगड़िया से पूर्णिया के बीच में फोर लेनिंग

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी जहरीले इंसान, गीत मजरू का था, संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

जावेद अख्तर की शब्द रचना भी आपने सुनी। अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में फिल्म थी चलते चलते। संगीत दिया था जतिन ललित ने।

0: आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब तपती धरती की दरारें आसमान की ओर उम्मीद से देखती हैं, जब किसान की निगाहें खेत से ज्यादा क्षितिज पर टिक जाती हैं, जब गांव की चौपाल से लेकर देश के बाजार तक एक ही सवाल गूंजने लगता है, मॉनसून कब आएगा? तब ये सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं होता, ये इंतजार होता है नई फसल का, नए अवसरों का, नई उम्मीदों का। भारत में मॉनसून महज बारिश नहीं है, ये खेतों की धड़कन है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है और करोड़ों लोगों के सपनों का आधार है। इसकी चाल तय करती है कि खेतों में कितनी हरियाली होगी, गांव में कितनी खुशहाली होगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार कितनी तेज होगी। यही वजह है कि मॉनसून का हर पूर्वानुमान केवल मौसम विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि कृषि, ग्रामीण विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, मॉनसून का पूर्वानुमान, कृषि, ग्रामीण विकास और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। हमारे साथ हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव और प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस वर्ष का मानसून क्या संदेश लेकर आ रहा है, किसानों के लिए इसमें क्या संभावनाएं हैं और ग्रामीण भारत और अर्थव्यवस्था पर इसके क्या दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अखिल जी आपके साथ, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस साल मौसम विभाग ने जो मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया है उसमें डायनेमिक और सांख्यिकीय मॉडल के क्या संकेत हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमारी पूर्वानुमान तकनीक भी बदली है और उसमें बहुत ज्यादा एफिशिएंसी भी देखने को मिली है।
2: जो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो नॉर्मल फोरकास्ट को हम बोलते हैं, जो मॉनसून की वर्षा के लिए फोरकास्ट जारी करता है, इसके लिए अब भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है पिछले कुछ वर्षों से एक डायनेमिक जो है मॉडल का उपयोग कर रहा है, जिसमें स्टैटिस्टिकल यानी कि सांख्यिकी से संबंधित जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ साथ जो डायनेमिकल मॉडल्स होते हैं क्लाइमेट के वो भी रन किए जाते हैं। फिर उन दोनों को आधार बना करके जो वर्षा का क्या रेंज रह सकता है आने वाले मानसून के सीजन के दौरान, ऋतु के दौरान, उसको वह फिर जारी किया जाता है। तो अभी अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से अगर आप उसके डेटा को भी देखेंगे तो जो ये मॉनसून का जो पूर्वानुमान जा रहा है यानी कि फोरकास्ट में जो एक्यूरेसी है उसमें भी काफी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफी बेहतर हुई।
1: जी डॉक्टर डबास, चूंकि आप कृषि वैज्ञानिक हैं और जब आप बोलते हैं तो भारत के किसान बहुत गौर से सुनते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान को देखते हुए इस खरीफ के मौसम में किसानों को किस तरह की फसल योजना अपनानी चाहिए? क्या कम पानी वाली या जल्दी पकने वाली किस्मों पर ध्यान देना उन्हें चाहिए?
3: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बार हमें उम्मीद है कि थोड़ी वर्षा कम है, 10% के करीब कम।

0: करा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, क्योंकि फसल जो है पानी से ज्यादा जरूरी तो कौन कौन से स्टेज पे उसको कोई सूखा ना पड़े, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक हमारी कृषि विज्ञान का सवाल है, इस समय हमारे पास 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र है, लगभग 80 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं और ISR इंस्टीट्यूट है, जो कि किसानों को गाइड करने के लिए और भारत सरकार की तरफ से किसान कॉल सेंटर 24 आवर काम कर रहा है। हमारे पास ऐसी किस्में हैं जो कम पानी में तैयार हो जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिसमें कम पानी लगता है और पैदावार अच्छी मिलती है, और साथ साथ में हमारे जो किसान है उसको हमें शिक्षित करना है कि जो भी पानी जमीन पे गिरे उसमें कम से कम रन ऑफ से मतलब फ्लड के तौर में बहे, ज्यादा से ज्यादा पानी हमारी जमीन मिट्टी के अंदर जाए और उसका सदुपयोग कर पाए। और पानी की जब फसल को होता है उसके साथ साथ में उससे बहुत फसलों के बहुत सारे दुश्मन है जो उस पानी को चुराने की कोशिश करते हैं, इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है खरपतवारों का। तो अगर हम हमारी जो कृषि क्रिया ऐसे करेंगे जिससे कि पानी की भी बचत हो, खरपतवार का नियंत्रण हो, तो ये जो 10% पानी की जो वर्षा इस बार हमें कम पूर्वानुमान है, इसके बावजूद भी हम खरीफ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि बीज के साथ साथ हमें एक तो जितने भी हमारे पास देसी खाद हैं, खासकर चाहे कुरडी का खाद हो, चाहे हमारे पास वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे बायोगैस की सलरी हो, अगर बायोगैस की सलरी और वर्मी कंपोस्ट है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खाद न केवल हमारी फसलों को पोषण देते हैं बल्कि हमारी जमीन की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। और साथ साथ में बरसात से पहले ही हमें अपने खेतों की जुताई भी करनी है, और जुताई करने के साथ साथ में उसकी मेड़बंदी को मजबूत करना है कि जो भी बूंद गिरे वो या तो हमारे खेत में मिट्टी में नीचे जाए, जमीन के अंदर जाए, या हमारी फसल को मिले, और कम से कम जो पानी का ह्रास जो है वो रनऑफ के तौर पर हो या खरपतवार ले पाए, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात होती है, जो भी हम फसल लेते हैं उसमें कुछ क्रिटिकल अवस्थाएं होती हैं जिसमें हमारे किसानों को जो भी बरसात का पानी होता है वो इकट्ठा करके उसमें अगर हम प्रयोग कर पाते हैं तो उसके बावजूद भी हम अपना फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा जो कृषि विज्ञान तंत्र है और साथ साथ में जो हमारा मौसम विभाग है, ये जब दोनों मिलके क्योंकि काम कर रहे हैं, इस समय मौसम विभाग की तरफ से हर ISR इंस्टीट्यूट को, हर कृषि विज्ञान केंद्रों को काफी सूचना जाती है कि हफ्ते में के 2 दिन बारे मंगलवार को शुक्रवार को कि
1: जी
0: नेक्स्ट 5 डे कैसा मौसम रहने वाला है, क्या पूर्वानुमान है, उसी के आधार पे हमारे कृषि वैज्ञानिक हर एक सब्जेक्ट के बैठते हैं और वो बताते हैं कि हमारे किसानों को कौन सा बीज बोना है, कब बोना है, कैसे बोना है, बीज की वो किसान ट्रीटमेंट किससे करना, उपचार कैसे करना है, और हमें इस हालात से निपटने के लिए हमारे साथ में हमारा जो प्रसार तंत्र है, खासकर हमारा दूरदर्शन मास मीडिया है और हमारे ऑल इंडिया रेडियो है और साथ में दूसरी जो चीजें हैं वो भी किसानों को एजुकेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: मुझे उम्मीद है कि हम इसका लाभ उठाएंगे, हम इससे किसी तरह हराश नहीं होने देंगे और इस विपरीत परिस्थिति को भी हम एक अपॉर्चुनिटी में बदलने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़े, उत्पाद की गुणवत्ता भी बेटर हो, हम कीड़े मकोड़े बीमारियों का भी ठीक से प्रबंध कर पाए और साथ साथ में हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हुए हर बूंद का सदुपयोग करके अधिक से अधिक अन्न सब्जी फल और सभी फूल और सभी चीजें उगाएं।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे ये समझना चाहेंगे कि अक्सर देखा जाता है कि देश में सामान्य मानसून का औसत तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ राज्यों में सूखा और कुछ में बाढ़ आ जाती है। इस बार वर्षा के जो स्थानिक वितरण को लेकर मौसम विभाग का क्या आकलन है?
2: मानसून जो है वो हर साल एक नई तरह की परिस्थिति को लेकर के आता है, तो इस वर्ष भी जो मानसून में जो वर्षा है पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार वो करीब करीब 90% रहने की संभावना है, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यानी दीर्घावधि औसत का, जिसमें प्लस माइनस 4% की त्रुटि भी हो सकती है। अब ये जो वर्षा का पूर्वानुमान किया गया है ये अगले 4 महीनों के लिए जो है वो किया गया है, यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक का। अब इसमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि जैसे आपने अभी बताया कि कुछ राज्यों में जो मानसून की वर्षा है वो कम हो सकती है, कुछ राज्यों में ज्यादा हो सकती है। इसमें अभी तक का जो स्थानिक जो हमारा प्रण है पूर्वानुमान का, उसमें ये है कि जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, वहां पर जो वर्षा है वो करीब करीब सामान्य रहने की संभावना है उत्तर पूर्व भारत में, यानी कि जो लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी कि दीर्घावधि औसत का 94 से 106% तक की रेंज में वर्षा हो सकती है। वही मध्य भारत में और दक्षिण वैली भारत में 94% जो है दीर्घावधि औसत का उससे कम वर्षा रहने की संभावना है, उत्तर पश्चिम भारत में 92% यानी कि 92% से कम वर्षा रहने की संभावना है, यानी कि वर्षा जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है। हालांकि इसमें ये भी जरूरत समझने की बात है कि ये जो वर्षा है ये ये बहुत ही इवन तरीके से चारों

0: महीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है, कभी किसी समय में ज्यादा वर्षा मिल जाती है, इसके बाद कई बार फ्लड की सिचुएशन भी देखने को मिलती है, कई बार मौसम ब्रेक कंडीशन भी आती है जब वर्षा काफी घट जाती है। तो इसके लिए भारत मौसम विभाग लगातार पूर्वानुमान देता रहता है। इसमें जैसे कृषि के लिए अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2 बार जो अगले 5 दिनों का विवरण दिया जाता है। इसके साथ साथ हर बृहस्पतिवार को बारिश से संबंधित जो है एक्सटेंडेड रेन फोरकास्ट जारी किया जाता है। इसमें अगले 4 हफ्तों के लिए सप्ताहवार यानी कि हर सप्ताह में कैसा वर्षा रह सकती है उसका भी पूर्वानुमान जारी किया जाता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारा मुख्य रूप से जो मॉनसून कोर जोन है
1: जी
0: यानी कि वो क्षेत्र जो कि ज्यादातर मौसमी वर्षा पर जो निर्भर करता है कृषि के लिए, वहां पर जो है वर्षा का पूर्वानुमान भी जो हमारे अभी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है उसमें सामान्य से कम वर्षा की संभावना जो है वो दर्शाई गई है। तो जिसको देखते हुए जो मौसम की जो पूर्वानुमान किए जा रहे हैं स्थानिक स्तर पर भी और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए यानी कि जो हर दिन दैनिक रूप में पूर्वानुमान किए जाते हैं, इसके साथ साथ में जो एक्सटेंडेड रेंज यानी कि विस्तारित रेंज का जो पूर्वानुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग करता है उसका भी बहुत अच्छे से उपयोग होना बहुत जरूरी है ताकि बहुत कुशल रूप से जो ये प्रिपरेटरी चीजें हैं उनको मैनेज किया सके, एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजों को मैनेज किया जा सके।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर डबास, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जहाँ पर कम बारिश होने की आशंका जताई जा रही है वहाँ किसान किस तरीके से अपनी फसल का ध्यान रखें, और जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव बता रहे हैं कि कुछ राज्यों में ज़्यादा बारिश की भी संभावना है, यदि मानसून के दौरान अचानक बहुत भारी बारिश होती है तो जल भराव से फसलों को बचाने के लिए किसानों को कौन से बुनियादी वैज्ञानिक उपाय पहले से कर लेने चाहिए?
2: हमारे जो किसान है वो हमें क्षेत्र वाइज हम उसको बांट सकते हैं। जैसे राजस्थान पूरा एरिया है, इसमें हम लोगों ने बहुत किसानों को आगाह किया हुआ है तो उन्होंने खेतों पे टैंक बना रखे, तालाब बना रखे हैं। उनकी कोशिश होती जो भी ज्यादा बारिश हो उसको टैंक में जाए। और इसी तरह से हमारे पूरे देश में सभी नदियों पर बांध बने हुए हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि अपने आवश्यकता के अनुसार पानी को इकट्ठा रखें और पानी को पूरा कितना हमारे पास पानी है, कितने आगे बारिश होने वाली है, कितना भी छोड़ना है तो ये बैराज से हम लोग नियंत्रण करने की कोशिश सरकार करती है। और इसी का फायदा उठा के किसानों को भी हम गाइड करते हैं कि जिन क्षेत्रों में अधिक बारिश होने वाली है वहां पे हम धान की फसल या जो फसलें ज्यादा पानी चाहिए उसका रिकमेंड करते हैं। और ये भी हम किसान को आगाह करते हैं कि जो पानी खेत से निकालना है, क्योंकि जल निकासी भी बहुत जरूरी है। अगर हमें फसल अच्छी लेनी है और बरसात ज्यादा है तो वहां पे जल निकासी का भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन जब जल निकासी किसान करे तो इस आधार पे करे कि उसकी जो उपजाऊ मिट्टी भी ना जाए, फसल को नुकसान ना हो और मौसम विभाग को ध्यान में रखते हुए इन बातों के, क्योंकि किसान की जितनी भी कृषि क्रियाएं आगे जो पूरे 4 मानसून के जो महीने रहेंगे वो हम लोग हर वीक में 2 बार बताते हैं किसानों को। और सभी कृषि विज्ञान केंद्र भी और सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हम ये बताना चाहते हैं अगर बरसात की संभावना है तो उसमें किसान को क्या करना है, क्या नहीं करना है और कौन सी विधि अपनानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा धान का ही।
1: जी
2: अगर धान की सब क्षेत्र नीचे है जिसमें पानी खड़ा होता है तो हमारे पास धान के अलग अलग किस्में हैं जो अलग अलग उसको ऊंचाई में भी और पानी को भी सहन कर सकती हैं। और अगर बरसात कम हो रही है लेकिन हमें धान फिर भी पैदा करना है, खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट में जहाँ के, क्योंकि बासमती का हमारा एक्सपोर्ट लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का है और इसमें हमें लगातार भी पैसा मिलता है और हमारा देश बासमती के नाम से काफी जाना भी जाता है। तो बासमती के में भी हमें एक तो डायरेक्ट सीडिंग के लिए बहुत सारी नई किस्में निकालनी है जिसमें कि 35% पानी बचता है। इसी तरह से एसआरआई विधि से भी अगर हम बासमती के चावल की खेती करते हैं तो 30 से 35% पानी बचता है और साथ में फसल भी अच्छी होती है, कीड़े बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी हम किसान को पहले से एजुकेट करके रखें जिससे कि किसान अपनी बचत करते हुए और जहाँ पानी की संभावना बहुत कम है तो वहां हम किसानों को कहेंगे धान जैसी फसल ना लगा के या तो मक्का लगाएं या मोटे अनाज लगाएं या दलहनी फसल लगाएं, लेकिन जो भी फसल लगाएं उनमें खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई ये एक विशेष योगदान है, इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्योंकि खरपतवार तो पानी के साथ साथ में न्यूट्रिएंट भी चुराई करते हैं, मतलब किसान से फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो निराई गुड़ाई है वो एक फसल की जड़ों को एक ऐसा एटमोसफियर प्रदान करती है जिससे कि पौधे की जड़ें काफी ग्रोथ करती हैं और वो दूर तक के पानी के खींच लेती है और पानी एकदम से सीधा वाष्पीकरण से उड़ता नहीं है बल्कि जमीन में बना रहता है। और कुछ क्रिटिकल अवस्थाओं पर हम किसानों को बार बार ध्यान देते हैं कि इस समय हमें पानी की वो विधि अडॉप्ट करनी है जैसे ड्रिप सिंचाई है या स्प्रिंकलर विधि है जहाँ पे हम कम पानी से भी ज्यादा लाभ उठा पाए। खासकर जब आपने दक्षिण भारत की बात किया, मध्य भारत की बात की, जहाँ पे इस बार बारिश की थोड़ी संभावना कम लग रही है तो वहाँ पे हम किसानों को उस किस्म की सलाह देते हैं। तो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक वो भी तैयार है, साथ साथ में भारत सरकार ने अभी लास्ट तो लगभग 1 हफ्ता पहले ही एक मीटिंग ली है जिसमें सभी राज्यों के कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी थे साथ साथ में हमारी क्या योजना होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी चीजों के कितने सीड हैं और किसान को सही समय पर सीड भी मिले साथ साथ में उसके पास हमारे उर्वरक भी पहुंचे और किसान को सब सुविधाएं मिले।

0: उसके लिए सरकार पहले से तत्पर होके ऑलरेडी कार्य योजना बना रही है। और इस समय जो हमारी कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो है, ये पूरे देश में इस महीने को किसानों को एजुकेट करने के लिए यूज कर रही है,
1: जी
0: और कृषि वैज्ञानिक गांव में जा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं। तो हमारी तैयारी पूरी है, और तो वो हमारे प्रयास रहेगी किसानों को हम किस तरह से लागत को कम करने में मदद करें, कैसे पानी के संरक्षण में मदद करें, कैसे किसानों को तालाब और सब चीजों में गाइड करें। मल्चिंग इसमें एक बहुत बड़ा योगदान
1: जी
0: करती है,
1: बिल्कुल
0: खासकर
1: डबास जी,
0: सब्जी और
1: बिल्कुल सही
0: फलों
1: कह
0: में,
1: रहे हैं आप
0: तो उन सब चीजों को हम काफी जोर दे रहे हैं। और
1: जी।
0: मुझे लगता है कि हमारा देश जो है तकनीकी के तौर पे और उसमें हमारा सक्षम है, और आप लोगों के सहयोग से हम बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में अल नीनो और ला नीना के जो संकेतक हैं वो तेजी से बदल रहे हैं, दो छोटे छोटे सवाल। पहले तो हमारे श्रोताओं के लिए अल नीनो और ला नीना को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर दें, और साथ ही उसी से जुड़ा एक सवाल ये है कि इस साल के मानसून पर इनका क्या और कितना असर देखने को मिल सकता है।
0: अगर हम एल नीनो को बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन होती है, ये इस तरह का सिचुएशन डेवलप होता है जो कि काफी दूर से ही भारतवर्ष के जो मौसम को प्रभावित कर सकता है। भारतवर्ष के कहे या मुख्य, अगर इसको और बृहद रूप में समझे तो ये पूरे ग्लोबल जो वेदर सिस्टम्स है, जो वेदर के इवेंट्स हो रहे होते हैं, प्रभावित करता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम एल नीनो की बात करते हैं तो जो प्रशांत महासागर, जो भूमध्य रेखा के पास का प्रशांत महासागर है, वहां पर जो समुद्र की सतह है उसमें जो टेम्परेचर है, उसका तापमान जो है, उसका धीरे धीरे वो बढ़ जाता है, यानी कि वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। जब प्रशांत महासागर का, जो भूमध्य रेखा के पास समुद्र सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो। और जब ये समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं ला नीना। तो ये जो दो इवेंट है ये एक तरह से प्राकृतिक इवेंट है जो कुछ सालों के बाद जो हमें देखने को मिलते रहते हैं। जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि जो हवाएं हैं, जो हवा की जो एक नेचुरल जो डायरेक्शन होता है उसमें उनका जो रुख होता है, ये उसको बदलने का काम करता है। हवा जो भारत में जो मानसून को खींच कर लाने वाली हवाएं हैं, ये उनको कमजोर करने का एक तरह से कार्य करता है। इसलिए एल नीनो का बहुत असर जो है काफी हद तक भारत के मानसून पर देखा जाता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो जब भी अल नीनो कंडीशंस होती हैं तो भारत में जो वर्षा है उसमें जो कमी देखी जाती है। हालांकि कुछ वर्ष ऐसे भी देखे गए हैं जब एल नीनो के बावजूद भी काफी अच्छी वर्षा भारतवर्ष में देखने को मिली है। इसमें हमें ये भी समझने की जरूरत है कि जब ला नीना कंडीशंस होती हैं तब भारतवर्ष में जो वर्षा है उसका जनरल ट्रेंड अगर हम देखें, एक अगर जनरली हम बात करें उसके बारे में, तो वो वर्षा के लिए सहायक सिद्ध होता है। जबकि एल नीनो कंडीशन यानी कि जो समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से गर्म हो जाता है तो वो वर्षा के लिए निगेटिवली काम करता है, नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित करता है। लेकिन जो मॉनसून सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बृहद सिस्टम है। इसमें सिर्फ एक फैक्टर का जो है, यानी कि एक जो इवेंट है जैसे एल नीनो, सिर्फ इसका ही असर नहीं होता है, बहुत सारे अन्य कारक हैं जो भारत के मॉनसून को प्रभावित करते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन डायपोल, यानी कि जो हमारा जो हिंद महासागर में जो डायपोल स्थिति बनती है उसका भी असर होता है कई बार। तो सिर्फ एक कारक से भारत के मॉनसून का जो है डायरेक्शन तय नहीं होता है, लेकिन एलिनो को इन जनरल देखा जाता है तो ये एक काफी ज्यादा जो है प्रभाव डालता है भारत के मॉनसून के ऊपर। अगर हम बात करें 2026 की, यानी कि जो आने वाले जो अभी मॉनसून का सीजन हमारा शुरू ही हो गया है लगभग, इसमें तो अभी जो एलिनो की कंडीशंस है वो अभी न्यूट्रल कंडीशंस से एलिनो की वीक कंडीशंस की ओर जो है ट्रांजिशन चल रहा है, यानी कि मॉनसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है डेवलप करने के गाइडेंस जो है वो सारे मॉडल्स दिखा रहे हैं, और यही पूर्वानुमान भी दिया गया है। यानी कि मानसून के दौरान एलिनो कंडीशंस जो है वो डेवलप हो सकती है। प्रशांत महासागर में समुद्र के जो सतह तापमान है वो असामान्य रूप से गर्म होगा जो कि हवाओं के रुख को निर्धारित तौर पर प्रभावित करेगा, और हम इसका असर भी मौसम की जो मानसून की जो वर्षा है इसमें भी हमें देखने को मिल सकता है। और इसी को देखते हुए ये भी कारक रहा है कि जो वर्षा का पूर्वानुमान है वो बिलो नॉर्मल यानी कि सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
1: जी डॉक्टर डबास, उन किसानों के लिए आप क्या कहेंगे जहां पर जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई और वर्षा जल संचयन को लेकर कुछ किसान काफी सजग रहते हैं, उन किसानों को किन व्यावहारिक उपायों पर ध्यान देना चाहिए?
0: ये जो हमारे किसान हैं जिनके पास में जल सिंचाई की बहुत अच्छी विधियां हैं और साथ साथ में सजग हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले तो एक अच्छी किस्म का चुनाव करना है बीज का,

0: इस समय से प्रबंध करना है। प्रबंध करने के बाद में हमारे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ पोषक तत्व तो वैसे होते हैं जो हमारी फसल को सूखे से लड़ने की भी ताकत देते हैं और उसकी जड़ों के विकास को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे कि उनको फायदा होता है। तो एक संतुलित मात्रा में खाद का उपयोग करना है, उसमें केवल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ही नहीं करने, साथ साथ में फॉस्फोरस पोटास और दूसरी चीजों का भी देख करना है। और जो सरकार ने हमें एक योजना दी है सॉयल टेस्टिंग की, उसके आधार पर अगर खाद का प्रयोग करते तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद आती है कि हमें किस्म का चुनाव, क्योंकि इस समय हमें उस किस्म का चुनाव करना है जो जल्दी पक्के तैयार हो, जिसका अनाज भी अच्छा हो, साथ साथ में कम पानी ले। हमें विधि भी वो चुननी है कि उसका प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन हो। कई बार हम जब बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन पौधे काफी सघन हो जाते हैं, तो हमें अगर पौधों की संख्या सही रखेंगे तो कम पानी में हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। और साथ साथ में खरपतवारों का प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है, क्योंकि खरपतवार काफी मात्रा में बीमार भी फैलाते हैं, कीड़े भी फैलाते हैं, साथ साथ में पानी का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो अगर हम खरपतवार का प्रबंध कर लेते हैं उससे भी बहुत बड़े पानी की बचत होती है और साथ साथ में हमारी मिट्टी का वो अच्छा रहता है। और निराई गुड़ाई समय पर होना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ में हमें जो पानी हमारे पास है वो सही टाइम है, मोस्टली अगर आपके पास अपनी इरिगेशन फैसिलिटी है तो पानी का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। और क्रिटिकल स्टेजेस पे विशेष ध्यान देने की जो जरूरत है, जैसे कि बाली निकलनी है, बाली आने वाली है, उग रहा है या फुटाव चल रहा है। और कई बार कुछ किसान भाई ज्यादा खेत में पानी खड़ा रखते हैं, उससे नुकसान भी होता है, खासकर धान की फसल में। तो अगर हम पानी सूखने दें और फिर पानी लगाएं तो उससे लगभग 30 से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी आती है, कीट और बीमारी का प्रकोप भी कम होता है। तो मैं उन किसानों को ये कहना चाहूंगा कि उसका उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से मक्का की फसल में भी कुछ खास क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उसका तो विशेष ध्यान रखना है, खासकर जब उसमें फुटाव हो, जब टेसल बने, उसमें फ्लावरिंग आए, तो उस समय पानी की कमी ना हो तो बहुत अच्छा रहता है। और खरपतवार प्रबंधन यहाँ भी करना है और साथ साथ में मक्का के में कीट प्रबंधन पे भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक फॉल्स आर्मी वार्म आ रहा है जो काफी नुकसान करता है। तो उसको हम समय से पहले अगर टैकल कर लेंगे तो हम ज्यादा पैदावार ले पाएंगे। साथ साथ में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक लगातार संपर्क में बने रहें और जितना भी अधिक से अधिक मात्रा में देसी खाद का प्रयोग करेंगे उससे
1: जी
0: मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और साथ साथ में मिट्टी का जब उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तो हमारी फसल अच्छी पैदा होगी। तो वह हमें विशेष ध्यान रखना है और संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करें, किसी भी हालत में घबराएं नहीं। और हमें अपने किसान पर पूरा विश्वास है कि किसान हमारा बहुत सक्षम है, सरकार की योजनाएं अच्छी हैं और आपका जो विस्तार तंत्र है, खासकर मास मीडिया है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: जबाज
0: साथ
1: जी,
0: में जो हमारा मौसम विभाग का जो सहयोग है, तो इसके सहयोग का, हम इसकी सूचनाओं का, जानकारी का उपयोग करते हुए मुझे लगता है कि हम स्थिति में बहुत अच्छी तरह से उभर के आएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे।
1: जी डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और बड़ा बदलाव ये दिख रहा है कि अब कम दिनों में बहुत भारी बारिश, जिसे एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स कहते हैं, वो हो जाती है, और शुष्क दिन यानी ड्राई स्पेल्स बढ़ रहे हैं। मौसम विज्ञान इस नए पैटर्न को कैसे देख रहा है?
0: तो इसमें हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे धरती का एटमॉस्फेयर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके जो मॉइस्चर को होल्ड करने की, यानी कि ये कितनी अपने अंदर पानी को हवा के अंदर ऐसा वेपर या नमी को अपने अंदर रख सकता है, वो भी बढ़ जाता है। हर एक डिग्री राइज पर लेते ह्यूमिडिटी है तो रिटेन करने की कैपेसिटी करीब करीब 7% जो है बढ़ जाती है। यानी कि अभी जो एटमोसफेयर है उसमें जो अवेलेबिलिटी है पानी की, वाटर वेपर की, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इस तरह के जो गर्म एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है, ये लगातार कन्वेक्टिव एक्टिविटीज को, जो कि सडनली गर्मी की वजह से एकदम से क्लाउड डेवलपमेंट को और एसोसिएटेड उसके साथ में बहुत ही इंटेंस बारिश को जो है काफी ज्यादा सहायक होता है। और क्योंकि ऑलरेडी इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है एटमोसफेयर में, तो इस तरह की जो घटनाएं हैं जहां पर बहुत सारी वर्षा एक बहुत ही सीमित समय में हो जाती है और उसके बाद में काफी कई दिनों तक फिर ड्राई स्पेल देखने को मिलता है, इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही है। तो जैसे कि ये सब मौसम बदलाव हो रहे हैं, इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए ताकि जो भी ये वर्षा है, एक तो ये इकट्ठा इतनी वर्षा हो रही है, ये जो पानी जो हमें मिल रहा है इसका ये रन ऑफ के जरिए इसका थोड़ा वेस्टेज ना हो और इसको हम सदुपयोग कर सके, तो इसका एकत्रित करने के लिए भी
1: जी डॉक्टर डबास, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छा मॉनसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को कैसे बढ़ाता है और इसका असर ट्रैक्टर, एफएमसीजी और अन्य उद्योगों पर कैसे पड़ता है।
0: जैसे ही किसान की आमदनी बढ़ती है, किसान को अच्छी फसल मिलती है, किसान पहले से तत्पर होता है क्योंकि उसको और आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ना है,

0: सपने देखता है, तो सपने वो चाहता है कि उसके पास अच्छी मशीनरी होनी चाहिए, अच्छी तकनीकियां होनी चाहिए और आगे के मौसम को रक्षा करने के लिए उसके पास सभी संसाधन होने चाहिए, तो वो पैसा जो है बाजार में लगाता है, बाकी चीजें बाजार में नहीं लगती हैं। तो जब भी कृषि का उत्पादन बढ़ता है, किसान को पैसे ज्यादा जाते हैं, तो आपके जितने भी ट्रैक्टर हैं या मशीनरी है या फार्म इक्विपमेंट है या सीड है या दूसरी चीजें हैं, और इसके साथ साथ में हमारे जो उपभोक्ता को भी अच्छी किस्म का भोजन मिलता है और जब हमारी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो देश का नाम होता है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कोई कम से कम 20 साल से हमारी एक्सपोर्ट धान बासमती धान में हम आप पूरे वर्ल्ड में एक बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं और इससे और भी अच्छा करने की संभावना है। क्योंकि किसान हमारा सक्षम है, हमारी खेती में भी जान है और गवर्नमेंट भी चाहती है, गवर्नमेंट ने काफी अच्छी परिस्थितियां बनाई है जिससे कि किसान एक्सपोर्ट कर सके। जो हमारे भारतीय किसान संगठन बने हैं, किसान उत्पादक संगठन बने हैं, वो भी इस तरफ काफी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार ने पहले से डिसाइड कर रखा है कि कौन से जिले से कौन सा प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, कैसे हम उसको जिले वो सक्षम कर सकते हैं। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान की मेहनत है और जो भी किसान का उत्पादन बढ़ता है वो सारा का सारा बाजार में आता है। जब बाजार में आता है तो पूरे देश में रौनक आती है। तो एक किसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो भी पैसा गवर्नमेंट अलॉट करती है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा होता है। ये हमारे जितने भी अर्थशास्त्री कृषि अर्थशास्त्री हैं उन्हें काफी प्रेजेंट किया गया, अगर हम कृषि में 1 रुपया खर्च करते हैं तो हमारी आमदनी और बाकी क्षेत्रों से कहीं ज्यादा होती है। तो इसको देखते हुए मैं कहूंगा कि कृषि के क्षेत्र में सरकार को और अधिक ध्यान देने की जरूरत है और किसान को और अधिक सक्षम बनाने की जरूरत है। और साथ साथ में हमें ये देखना मंडी में भाव क्रैश ना करें। जब किसान कई बार मेहनत करता है, अच्छा उत्पादन लेता है, तो जब भाव क्रैश कर जाता है तो किसान टूट जाता है। तो सरकार को जब भाव अधिक होते हैं तो उसको तो कम करने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार को ये भी कोशिश करनी है कि किसान को उत्पादन लागत से अधिक पैसा मिले। और ये खाली हमारी वो नहीं मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली फसलें ही नहीं, बल्कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, क्योंकि देश को हर चीज की जरूरत पड़ती है, तो हमें सरकार को उस तरफ भी थोड़ा सजग होने की जरूरत है।
1: डॉक्टर श्रीवास्तव, दुनिया भर की तकनीकों पर चर्चा होती है। जब कोई भी नए गैजेट्स मार्केट में आते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि अमेरिका में ये चल रहा है, यूरोप में ये चल रहा है, दुनिया के दूसरे देशों में ये चल रहा है। मौसम पूर्वानुमान के क्षेत्र में आपसे समझना चाहेंगे कि दुनिया के अलग-अलग देशों में किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और भारत ने पिछले 1 दशक में पूर्वानुमान की तकनीकों में किस तरह का बदलाव किया है और उसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, बहुत संक्षेप में।
2: जी है, देखिए पहले तो भारत मौसम में अगर हम पूरे वैश्विक पर बात करें तो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो हो रहा है वो ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में हो रहा है। अभी जितने भी तरह तरह के मैकेनिज्म है जो मौसम को ऑब्जर्व करने के, उसमें काफी ज्यादा जो है वृद्धि हो रही है। इसको साथ साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है एटमोस्फेरिक प्रोसेस को लेकर के वातावरण में एटमोस्फेयर में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे न्यूमेरिकल मॉडल्स हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स पर रन करते हैं और हमें गाइडेंस मिलता है जिसके बेसिस पर हम लोग फोरकास्ट इशू करते हैं, तो इसमें भी काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। जहां तक बात है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, तो पिछले 10 वर्षों में आप देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जर्विंग नेटवर्क है, ऑब्जर्वेशन नेटवर्क है, बहुत ज्यादा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। जो हमारे सैटेलाइट सिस्टम्स हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, बहुत उन्नत हुए हैं। साथ साथ में जो रडार है उसका कवरेज भी काफी बढ़ गया है। उसके वजह से जो ये अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे जो काफी इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी को, उसको भी ट्रैक करने में काफी ज्यादा रियल टाइम में मदद मिलती है। इसके साथ साथ जो मॉडल्स हैं, जो न्यूमेरिकल मॉडल्स हम लोग यहाँ रन कर रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग में भी, और साथ साथ में जो अन्य संस्थान है भारत सरकार के वहां पर भी वो जो मॉडल्स रन किए जा रहे हैं उसमें काफी ज्यादा रिजोल्यूशन में परिवर्तन हुए, इम्प्रूवमेंट हुआ है, और काफी हाई रेजोल्यूशन मॉडल जो फ्रेमवर्क है वो डेवलप किए गए हैं और उनके बेसिस पे जो गाइडेंस मिल रही है उसको उपयोग करके
1: जी
2: पूर्वानुमान दिया जा रहा है।
1: जी
2: इसके साथ साथ में एआई का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल अब शुरू हो गया है, और एआई एमएल को यूज करके यानी कि जो कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है ये, इसका भी काफी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि पूर्वानुमान को और अधिक सटीक बनाया जा सके।
1: जी हाँ बिल्कुल। मानसून भारत के लिए केवल एक मौसम नहीं बल्कि जीवन, जीविका और विकास का आधार है। इसकी हर बूंद खेतों में अन्न, गांव में अवसर और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा लेकर आती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि मानसून का पूर्वानुमान केवल बारिश का अनुमान नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, ग्रामीण रोजगार, बाजार की मांग और देश की आर्थिक गति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संकेतक है। साथ ही बदलती जलवायु परिस्थितियों में वैज्ञानिक पूर्वानुमान, आधुनिक कृषि तकनीकों और जल संरक्षण के उपायों का महत्व

0: पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर डबास आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे मॉनसून पूर्वानुमान, कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं और चुनौतियों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग में वरिष्ठ वैज्ञानिक।

0: ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है।
2: FM 102.2 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म थी मैंने प्यार किया। गीत असद भोपाली का था, संगीतिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

समीर की शब्द रचना भी आपने सुनी कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। फिल्म थी अजनबी, संगीत दिया था अन्नू मलिक ने। फिल्म संगीत इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में गुलजार की शब्द रचना भी आपने सुनी। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म थी मौसम।

का जो था सौर अलका याग्निक को अभी अपना सुना। फिल्म थी घात, गीत समीर का था, संगीत दिया था अनु मलिक ने।

0: सुनो, जहाँ मैं जाना चाहती हूँ तुम ले चलोगे?
1: अजी कह के तो देखो।
0: जहाँ भीगा भीगा मौसम हो, हम हो और तुम हो,

0: तीर तुमने चलाया, घायल हम हुए।
1: प्यार तुमसे हुआ, पागल हम हुए।
2: नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल के गाए भावी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं अजय चक्रवर्ती का गाया राग चंद्रकोस में गाया ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है। बोल है नागर से भेंट भई।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे अजय चक्रवर्ती का गायन। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों

0: ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिए में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।